अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आपने सुना सुश्री रश्मि दत्त का राग अहिर भैरव में सितार वादन।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति

0: मिलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will arrive this morning on a 3-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Mr. Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The visiting dignitary will also meet President Draupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. More from our correspondent.
2: Earlier, in February this year, the

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता श्री कृष्ण, नीति, राजनीति और अध्यात्म का समन्वय। आलेख है डॉक्टर पूनम सिंह का और वाचन स्वर जसबीर कौर सेखों का। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के एक ऐसे महान चरित्र हैं जिनका व्यक्तित्व ब्रह्मांड की तरह व्यापक है। वे अलौकिक पुरुष होते हुए भी लौकिक जीवन से गहन जुड़ाव रखते हैं। वे श्रीमद् भागवत के चंचल बालक, सम्मोहक बांसुरी बजाने वाले किशोर गोप हैं, तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजाने वाले योद्धा रणनीतिज्ञ। भगवत गीता श्री कृष्ण की रणनीतिक, राजनीतिक और अध्यात्म के समन्वयवादी सोच को प्रकट करती है। गीता में निहित श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जीवन को प्रभावित करने का ऐसा आलोक पुंज है जो जीवन महासमर में विजयी होने का दिशा बोध कराते हैं। श्री कृष्ण ने कूटनीति और राजनीति के लिए ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो किसी भी राष्ट्र को कल्याणकारी राष्ट्र बना सकते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भागीदारी उनके असाधारण रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित करती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को केवल आध्यात्मिक सलाह ही नहीं

0: होते थे। वे नैतिक और राजनीतिक दुविधाओं से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि भी देते हैं, जिसमें उन्होंने कर्तव्य, नैतिकता और रणनीतिक दूरदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। भगवद गीता में धर्म एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र है। इसी धर्म रक्षण के लिए श्री कृष्ण मनुज रूप में अवतरित होने का संकल्प दोहराते हैं। श्री कृष्ण की नीति राजनीति इसी धर्म की व्यवहारिक पाठशाला है। गीता का कर्मयोग हमारी महत्वाकांक्षाओं को सत्कर्मों की ओर निर्देशित करता है। कृष्ण अविकल प्रेम के प्रतीक हैं। उनका साम्य भाव, जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश, सम विषम सभी में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। कृष्ण नीति हमें सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश होने से बचाती है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। वे आतताई राजसत्ता के लिए एक चेतावनी है। कृष्ण नीति का अनुपालन अंधी दलगत राजनीति से देश को उबारने का महामंत्र है। श्री कृष्ण नीति के चार सूत्र आज के वैश्विक राजनीति के लिए अति प्रासंगिक हैं। पहला सूत्र, राजनीति में ऐसी उच्च नैतिकता जिसे अपनाने से मात्र पराजय मिले और वह अधर्म का कारण बने तो उसे त्याग देना बेहतर है। दूसरा सूत्र, जब युद्ध धर्म शांति मर्यादा संरक्षण और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए हो तो युद्ध उचित है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह सीख देते हैं कि अति सहिष्णुता अन्याय को प्रोत्साहित करती है। कूटनीति का प्रयोग सही समय अवसर पर करना चाहिए। तीसरा सूत्र है, सभी के प्रति समदृष्टि रखना। राजा को प्रत्येक सैनिक को राजा के समान महत्वपूर्ण मानकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। चौथा सूत्र है, देशकाल की परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। ऐसे में नीति निर्धारण अवसर अनुरूप और लोक कल्याण प्रेरित हो। श्री कृष्ण के अनुसार कुल या कुटुंब से बढ़कर राष्ट्र है, राष्ट्र से बढ़कर धर्म। यह धर्म का अर्थ जड़ नियमों के विरुद्ध संघर्ष है। श्री कृष्ण की सम्यक दृष्टि एक संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। उनका चरित्र हमें ऐसे युग बोध की याद दिलाता है कि हर युग द्वापर युग जैसा ही है। जीवन की चुनौतियां हर देश काल में होती हैं। उनका सामना करना अनिवार्य है। सत्य अपराजेय रहे, इसलिए श्री कृष्ण नीति राजनीति प्रकाश स्तंभ की तरह है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। आइए सुनते हैं अयोध्या कांड भाग 69।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमंत्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्य शासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूस देशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य संबंधः अतीव उत्तमः आसीत्। सः अवदत् यत् भारत रसिया संबंधाः परंपरया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिक संबंधः आर्थिक संबंधः च ततः परं विस्तृतः। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य परमाणुः अंतरिक्षस्य च घटकाः सन्ति अपि च व्यापारस्य निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्सपटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। पीबी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
0: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व संधेः पंचम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 अन्तपर्यन्तं व्यापार संधिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य राज्यानां कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठ प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां 17वें निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97,800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत

से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और पूरी 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुकीर्ति सेन द्वारा गाए भजनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा, जो बात करूँगी आपसे कुछ मनोरंजन की और साथ में सुनवाऊँगी आपको अच्छे अच्छे गाने।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की तो भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि। दोस्तों एक बात बताइए, इस समय आप कहाँ हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ लोग तो अभी बिस्तर में पड़े होंगे, कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे होंगे, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करके अपने घर वापस लौट रहे होंगे, और कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे, क्योंकि सबके डेली के अपने अपने काम हैं, कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से, क्या इन सबके बीच आपको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं? मतलब काम अपनी जगह है, पर हमारी ज़िंदगी क्या है? काम के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं या सिर्फ बस काम ही कर रहे हैं? तो आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो तब तक सुन लेते हैं एक और गीत, और इसके बाद हम इस ही विषय पर थोड़ी

हम इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हैं रात दिन, पर क्या ये हमारी जिंदगी है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, आरजे की लाइफ में, 14 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी जीने के लिए कोई किताब नहीं है, पर कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। एक सबसे पहले होता है कि हमें तुलना बंद करना, मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको ऊपर वाले को शुक्रिया करना और किसी दूसरे से अपनी तुलना बंद करना। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो कभी कभी हमारे मन में आता है ये हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो बस वही होता है ना कि कभी कभी इन सब बातों को जब हम देखते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं अगर, तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाती हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है और रोज़ सुबह उठकर सिर्फ ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है और ये बोलना है कि ऊपर वाले ने हमें अच्छी एक दिन दिया है, हमें चाय गर्म दी है, हमारे पास कोई है जो हमारी बातों को सुन सकता है, हमारी सांसें चल रही हैं। इतना सोचने के बाद आप सभी देखना कि हमें लगेगा कि हाँ सच में आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, कि कल की फिक्र करना। तो कल की फिक्र नहीं करनी है, आज का जिक्र करना है। तो हमें कल के लिए रोना नहीं है, आने वाले कल के लिए डरना नहीं है। जो है ज़िंदगी जैसी चल रही है, ज़िंदगी कभी कल में नहीं होती है, वो हमेशा अभी है, इसी पल में है। इसलिए सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो भी दिन है वो आज है, इसलिए आपको जो दिन मिला है उसको भरपूर जियो, खुशी से जियो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो और जो आपके आसपास हैं उनको खुश रखो और उनके साथ खुश रखो।

आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम ऐसे कैसे नियम अपनाएं जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो एक बात ज़रूर है कि सेल्फिश बनना गलत नहीं है, पर सेल्फ सेंटर्ड बनना गलत है। दिन में एक बार किसी एक अनजान को बिना मतलब के हेल्प करके देखो, किसी को लिफ्ट दे के देखो या किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा कर देखो। जो सुकून मिलता है ना, वो किसी कैफे की कॉफ़ी में नहीं मिलेगा। इस बात पर एक शायरी याद आई है कि कुछ देर तो जी लेने दो, कुछ देर तो जी लेने दो इस शाम को ये ज़िंदगी, फिर कल तो आना ही है हिसाब लेने के लिए, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपने ज़िंदगी में आप लोग अपनाएं। और एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी हम आपको बताना चाहते हैं कि एक आदमी था, वो रोज़ भगवान से कहता था, भगवान मुझे खुशी दे दो, भगवान मुझे खुशी दे दो। भगवान रोज़ कहता, खुशी के पास नहीं, तेरे पास है, बस तूने अलमारी में कहीं छुपा रखी है, उसको निकाल लो तो दोस्तों आपकी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं बल्कि आपकी ही जेब में है। तो अपना ध्यान रखें और हर पल को जीना सीखें।

दोस्तों, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसमें ट्रैफिक होगा, बिल होंगे, दिल टूटेगा, लोग छोड़ कर जाएंगे, पर इसी टूटी फूटी इन परफेक्ट ज़िंदगी में ही तो असली सुंदरता है। तो आज से एक वादा करो कि खुद से रोज़ हंसना है, खुल के रोज़ थोड़ा रो भी लेना है अगर मन करे तो, और रोज़ किसी एक पल को बिना फ़ोटो खींचे सिर्फ आँखों से जी लेना है। तो मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी कल अपने प्रोग्राम में। इसके साथ ही इस गाने के साथ ख़त्म करती हूँ अपना प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग को। तो एंजॉय कीजिए ये वाला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानोल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
5: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
6: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
5: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीई

0: पीए पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगी। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
1: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
3: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में अपने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा, हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद स्विस प्रेसिडेंट गी पामेला इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल कार्गो वॉयज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम दिस मॉर्निंग। IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Parmelin. More from our correspondent.
3: Earlier in February this year, the Swiss President visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi.

0: congratulated Indian athletes for their outstanding performances at the Asian Games 2026, especially the women athletes who have delivered impressive results. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Anuja. Taking India's reform journey forward, GST 2.0 reforms set for rollout this week, writes Hindustan Times. Financial Express adds faster refunds, wider ITC, no arrests. External Affairs Minister in his address to Munich leaders meeting reiterates Russia's long-standing support for India along with stronger ties among emerging powers, adding, the US has chosen to become a lonelier power, states the Times of India. The Pioneer headline writes on the Omani co-pilot accused of attempting to seize the Fly Dubai airline mid-air. It says Hamami probe widens in Australia with social media posts reportedly linked to the pilot draw scrutiny as investigators reconstruct the history. Final airline audit this week ahead of US checks on safety covering all Indian airlines, another headline in the Hindustan Times. And finally, dazzling light, musical show mark end of Asian Games as India finishes fourth. Qatar to host next edition, says the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमेलिन के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह असम में डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलाक्वामी माल बरदार बहरी जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इक्तसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए पांचवें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। इत्तलात में कहा गया है कि फ्लाई दुबई परवाज के ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट ने हवाई जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम होने के बाद इसे सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में गिराने की कोशिश की थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश की पेशगोई की है और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमेलिन आज नई दिल्ली में दोतरफा मुज़ाकरात करेंगे। सदर परमेलिन भारत के तीन रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। उनके हमराह सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ्द भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर परमेलिन मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में की गई पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, नकल व हमल, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान रबते भी शामिल हैं। दोनों रहनुमा कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। सदर परमेलिन आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि यह सदर परमेलिन का भारत का पहला सरकारी दौरा है। वो इस साल दूसरी बार भारत आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: स्विस सदर इससे पहले फरवरी में नई दिल्ली में एआई के असरात से मुतालिक सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत आए थे। उनका ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि वो इस महीने की 7 तारीख को मुनक्किद होने वाली दूसरी इंडिया एफ्टा खुशहाली सरबरा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया एफ्टा तजारती और इकतसादी माहदे पर अमल दरामद को 1 साल पूरा होने के मौके पर मुनक्किद की जा रही

0: है। एफ्टा मुल्कों में स्विट्जरलैंड सरमायाकारी और तिजारत में भारत का सबसे बड़ा शराकत दार है। दोनों मुल्कों के तवील अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी, लगातार आला सतह के तबादलों में इजाफा होगा और बाहमी मफाद के नए शोबों में तआवुन में वसत पैदा हो सकेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज आसाम के शहर डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलाक्वामी माल बरदार जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा भी बोगीबील टर्मिनल पर मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज इस जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ही डिब्रूगढ़ की आज़ादी से पहले की विरासत बहाल हो जाएगी। डिब्रूगढ़ की विरासत अंदरून मुल्क के साबी गुजरगाह के तिजारती मरकज के तौर पर है। पिछले 8 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत में ऐसा पहली बार है कि एक बैन अलाक्वामी माल बरदार जहाज बराह रास्त आसाम से किसी गैर मुल्की बंदरगाह पहुंचेगा। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल इस जहाज को आज सुबह 11 बजे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जहाज के इस पहले दौरे में 1,080 टन मेथनॉल पहुँचाया जाएगा। यह मेथनॉल नाम रूप में आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। 2 माल बरदार जहाज जिनकी जदीदकारी की गई है, ये सामान बांग्लादेश के शहर ढाका में पनगांव बंदरगाह लेकर जाएंगे। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: मगरबी बंगाल सरकार फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने के समत बड़ा कदम उठाने वाली है। रियासत में 4 नए हवाई अड्डों की तामीर के लिए रियासती सरकार आज मरकज के साथ एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: इलाकाई राबतों की मरकज की स्कीम के तहत ये मुजवजा हवाई अड्डे परोलिया में चारा, पश्चिम मिदनीपुर में कलाईकुंडा, जनूबी दिनाजपुर में बालूर घाट और अलीपुर द्वार में हसीमारा के मकाम पर तामीर किए जाएंगे। आज कोलकाता में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदों की मौजूदगी में मस्कुरा समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। कोलकाता से संदीपन दास रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजूर अफराद, खासतौर पर रियासत के बस्तर डिवीजन में IED धमाकों से मुतासिरा लोगों को मस्नूई आज़ा और मुतालिका आलात फराहम करने के लिए खसूसी इकदामात किए हैं। इस मकसद के लिए आज से फ्री कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन कई दहाइयों तक बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के मसले से मुतासिर रहा है। इस अरसे के दौरान माओ नवाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए खत्ते के अंदरूनी और दूर दराज के इलाकों में बड़ी तादाद में देसी साख्त के धमाका खेज हरबे नस्ब कर रखे थे। इनकी जद में आने से बस्तर में कई बेकसूर गाँव वालों और कबायली अफराद या तो मारे गए या उन्हें माजूरी का सामना करना पड़ा। अब खित्ते से बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन अफराद को मस्नूई आज़ा और मुतालिका आलात फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है जो इन धमाकों में जिस्म के अहम आज़ा से महरूम हो गए थे। इस मकसद के लिए जगदलपुर और दांतेवाड़ा में फ्री कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज में आज हम अपने आइजोल के नामा निगार की एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जो मरकज की एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के बारे में है।
2: मिजोरम के लुंगलई जिले में केले के काश्तकार मरकज की एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के तहत केले से बनाई गई मसनुआत से तकरीबन 3 करोड़ 78 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। ये जानकारी अफसरान ने दी है।

0: केले को इस जिले की ODOP प्रोडक्ट के तौर पर चुना गया है। रियासती सरकार केले की काश्त को फरोग दे रही है, जिसके लिए इसे चिप्स, रस और दीगर खुर्दनी अशिया जैसी मसनूआत में बदला जाता है। लुंगलई के डिप्टी कमिश्नर नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को बागबानी के महकमे के साथ सलाह मशवरे के बाद चुना गया है, क्योंकि ये इस इलाके में तेजी से उगता है। केले की काश्त फिलहाल लुंगलई जिले के तकरीबन 17 गांवों में की जा रही है, जिससे 300 से 400 घर वाबस्ता हैं। आइजोल से इजाक जोरम संगा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकत दारी के अपने मुजवजा माहदे सीपा के बारे में पांचवें दौर के मुजाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती माहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरात कारों की क्यादत में ये पांच रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़श्ता दौर की बातचीत में नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान एक कतई माहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीपा मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मादनियात के शोबों में दोतरफा तालमेल में गहराई लाने से भी इत्तेफाक किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि रूस ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे कई मौकों पर भारत का साथ दिया है जब भारत की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को खतरा लायक था। नई दिल्ली में 62 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि एक ऐसे वक्त कि जब दुनिया के बेशतर मुल्कों ने भारत के पड़ोस में फौजी सरकार की हिमायत करने को तरजीह दी, रूस ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भारत का मौकिफ बहुत वाजह रहा है और वो इस टकराव के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इसके लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। इटली के एक अखबार कोरियर देला सेरा ने इसराइल की सुराग रसा रोसानी का हवाला देते हुए बताया है कि फ्लाई दुबई की परवाज के ओमानी साथी पायलट ने जहाज अगवा करने की कोशिश को नाकाम बनाए जाने के बाद सऊदी सहरा में इस जहाज को तबाह करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि साथी पायलट हम्माम अल हम्मामी ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमला किया और तैयारे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इल्जाम है कि उसने इसराइल के तेल अबीब शहर में तैयारे को एक इमारत से टकराने का मंसूबा बनाया था। अखबार के मुताबिक हम्मामी ने महसूस किया कि उसका असल मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा, लिहाजा उसने इस तैयारे को सहरा में तबाह करने का फैसला किया। उसने ऑटो पायलट निज़ाम को बंद कर दिया और कंट्रोल स्टिक को दबा दिया। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये तैयारा 16,000 फुट नीचे आ गया और ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। अल हम्मामी ने तैयारे के कंट्रोल निज़ाम को भी तबाह करने की कोशिश की, जिसके बाद मुसाफिरों ने इसे दबोच लिया। एक मुसाफिर यानी हयून ने कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींच लिया और तैयारे को तबाह होने से बचाने में मदद की। दो पायलट्स जो ड्यूटी पर नहीं थे उन्होंने बाद में तैयारे को कंट्रोल किया और इसे हिफाजत के साथ ज़मीन पर उतार लिया। कैप्टन स्मिथ मच्छर को अस्पताल ले जाया गया और हम्मामी को सऊदी हुकाम के हवाले कर दिया गया। इसराइल ने इस वाकये को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया है और वो इस बात की तहकीक कर रहा है कि किस तरह ओमान के इस पायलट को तेल अबीब जाने वाली परवाज के लिए मंजूरी दी गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की पेशगोई की है। इधर अगले दो दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बेशतर हिस्सों और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड, तेलंगाना, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और लक्षद्वीप में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज इसी तरह का मौसम का इम्कान है। जापान के आईची नगोया शहर में 2026 के एशियाई खेल कल इख्तिताम पज़ीर हो गए। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और ख्वातीन की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में ख्वातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में ख्वातीन की टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान की 34 के मुकाबले 40

0: से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय खवातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इस तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में खवातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। मर्दों की टीम ने मलेशिया को 1-5 से हराकर फिर से टाइटल हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने वजारत खारजा की मुशावरती कमेटी के इनेकाद से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। अखबार ने वजीर खारजा एस जय शंकर के इस तबसरे को नुमाया किया है कि भारत बैरूनी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये किया है। गुज़श्ता हफ्ते घरेलू थोक अजनास के बाजारों में चीनी और चावल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इस खबर को रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत कई दिगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। जापान के आईची नागोया शहर में 20वें एशियाई खेलों के एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर होने से मुतालिक खबरों को आज के अखबारात ने नुमाया तौर पर पेश किया है।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गाई परमलिन के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह असम में डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलावामी माल बरदार बहरी जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इकतसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए 5वें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। इत्तलात में कहा गया है कि फ्लाई दुबई परवाज के ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट ने हवाई जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाए जाने के बाद इसे सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में गिराने की कोशिश की थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश की पेशगोई की है। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे हासिल किए। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ममता त्रिपाठी द्वारा ध्रुपद गायन राग रहेगा कोमल ऋषभ आसावरी।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असीं सुणांगे अज दी सिक्ख्या ते नवीं पीढ़ी च आ रहे बदलाव विषय ते रिटायर्ड प्रिंसीपल डॉक्टर सविता सियाल दे नाल कीती गलबात ते इस तो इलावा कुछ शब्द भी सरवण करवाए जाणगे। पर इस तो पहलां गल करांगे वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व आवास दिवस दी। ये दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मकसद लोगों को साफ सुथरे ते टिकाऊ आवास की महत्ता बारे जागरूक करना है। मकान सिर्फ इट्टां वट्टियां नाल बनाई हुई इमारत नहीं होंदी बल्कि इस च इंसान दियां सदरां पालदियां ने ते घर इंसान की बुनियादी जरूरत भी है। इस दे नाल ही घर सुरक्षा सन्मान अते बेहतर जीवन का आधार भी है। ये संयुक्त राष्ट्र के वलों ऐलानी विश्व पदरी पहल है जिसका उद्देश आवास के महत्व को दर्शाना है। जे इंसान का रहन सहन वधिया होगा तो उत्थे सिक्ख्या मैडिकल सुविधावां ते हर सहूलत मिलेगी तो फिर खुशियां खेड़े आप मुहारे ही उत्थे आ जाएंगे क्योंकि विद्या नूं मनुख दा तीजा नेत्र मन्निया जांदा है ते अध्यापक बच्चों च विद्या के ज्ञान नूं वंडदे ने। तो अज कौमांतरी अध्यापक दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दुनिया भर के अध्यापकों च सिक्ख्या च योगदान अते उन्हां दी महत्वपूर्ण भूमिका नूं सन्मान देने दे लई मनाया जाता है। ये दिन हर साल 5 अक्तूबर नूं मनाया जाता है। यूनेस्को ने साल 1994 च 5 अक्तूबर नूं विश्व अध्यापक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। जिस तरह दुनियावी सिक्ख्या के लिए सानू अध्यापकों की लोड़ पैंदी है उस तरह ही रूहानियत बारे जानने के लिए सानू गुरु की जरूरत पैंदी है। क्या भी जाता है गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं। तो अज जगत गुरु गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत दिवस भी मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश नाल पूरी दुनिया नूं तारिया सी। उन्होंने ना सिर्फ अपनी रूहानियत के ज्ञान नाल भुले भटके मनुखां नूं सीधे राह पाया उन्होंने अपनियां उदासियां दे दौरान लोगों नूं सही रस्ता दिखाया ते वहमां भरमां चों कढ़िया। उन्हां दी बाणी अज भी साडा मार्गदर्शन करदी है। ते आओ फिर सरवण करदे हां भाई साहब भाई मनिंदर सिंह रागी ते साथियां पासों शब्द मोहन कर आवो करूं जो दड़ियां। बाणी है गुरु अर्जन देव जी दी।

0: थोड़ा दूर भी चला गया, तुसी अग्गे जाके उन्हों गले लगा लो, तुसी बुला लो, उन्हां नाल कोई प्रेस्टेज इशू ना रखो कि नहीं ये हुण इहदी ड्यूटी है सानू वेखना। नहीं, माँ बाप नू भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी,
1: जी
0: अपनी सोच खुली रखनी पड़ेगी। हाँ, जिथे बच्चा गलत कह रहा है उन्हों थोड़ा समझाना पड़ेगा, मानो या उन्हों गाइड करना पड़ेगा। यही टीचर्स का रोल है कि स्कूल विच मॉरल एजुकेशन भी होनी चाहिए है।
1: नैतिक शिक्षा।
0: नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। जो तो याद होए कि तुहाडे टाइम विच भी जदों तुसी और असी स्टूडेंट सी, एक एक क्लास एदी हुंदी सी नैतिक शिक्षा की, और पंचतंत्र दी कहानियां नाल और ओदे ओदे माध्यम नाल भी सानू, हाँ, सानू शिक्षा दित्ती जांदी सी, बड़ी सिक्ख्या दित्ती जांदी सी अच्छी भी ऐ करना चाहिदा ऐ नहीं करना चाहिदा। और एक होर भी है, अजकल जिहड़ा साडा फैमिली सिस्टम है ओ हुण जिन्हों न्यूकलीयर फैमिलीज ज़्यादा हो गईयां ने, जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, नहीं तो पहले जॉइंट फैमिली च रह के बच्चे दादा दादी कोलों एवं जी कहानियां सुनते सी। मैं तुहानूं सच्ची दसा, जिहड़े मेरे दादा जी ने मैनू कहानियां सुनाईयां ने गर्मी दी छुट्टियां जदों असी दादे दादी कोल जांदे सी रहिंदे सी, ओह हुण तक मैनू याद ने, ओहदा प्रभाव अज तक हैगा। ते हुण बच्चियां नूं ऐ सब नहीं मिलदा, हुण ते
1: गूगल ही दादा नानी बने होए ने,
0: गूगल दादा नाली, और बस कहानियां अगर सुनते भी ने तो कार्टून देखते ने टीवी पे। ते वो जेड़ा आपस च गलबात विच एक जिन्हों कहते ना अटैचमेंट हुंदी सी, आत्मीयता नाल बच्चे जुड़दे सीगे, वो जुड़ाव लगाव घट हो जा रहा है। ते इहदे लई टीचर्स नूं पेरेंट्स नूं कोशिश करते रहना चाहिए।
1: जमाना हुण आ गया AI दा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा, ओहदे उपर वी तुहानूं गलबात करांगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों लिए किवें फायदेमंद हो सकती है ते किवें नुकसानदायक हो सकती है?
0: बिल्कुल जी, चारों ओर AI दा शोर हैगा ये कि हुण बहुत से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, मशीनी बुद्धिमत्ता जिन्हों कहंदे ने। देखो वैसे तो कहंदे ने कि इहदे नाल काम बड़ा जल्दी होया करेगा और एक्यूरेट भी हो सकता है, मशीन नू जो इंस्ट्रक्शन दिती जाएगी वो ओहदे अकॉर्डिंग काम करेगी, लेकिन ऐ वे कि मशीन तुहानू संस्कार नहीं दे सकती, बच्चियां नू गलत और सही नहीं समझा सकती, वो तो जो तुसी उन्हें एक बार इंस्ट्रक्शन दे दोगे ओहदे ते ही चलती रहेगी, ओहदे च वो भावना नाल नहीं जुड़ी होएगी, किसी का दुख सुख नहीं वंड सकती। इसलिए जिथे जरूरी है उथे AI नू यूज करना चाहिए, क्योंकि जिहड़ी मानवता हैगी है, जिहड़ी ह्यूमैनिटी हैगी है, वो सानू नहीं छड़नी चाहिए। जे असी ह्यूमैनिटी छड़ देंगे तो असी भी मशीन ही बन जावांगे
1: जी। सविता सियाल जी, तुसी अध्यापक दे तौर ते सानू बहुत सोहणियां सोहणियां सारे नाल गल्लां कीतियां, सारे आउण वाली पीढ़ी नूं सही राह ते चलन दा एक संदेश दित्ता। जांदे जांदे तुसी साडे सुनण वाले नूं श्रोतियां नूं की संदेश दे के जाओगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगी सुनने वालों कि साड़ी भारतीय संस्कृति बहुत ही जिन्हों कही देना वधिया हैगी है, बहुत अच्छी है, पूरे विश्व विच इहदा डंका हैगा है, विदेशी साढ़े इत्थे पढ़न आते ने, क्योंकि जिन्नी साड़ी संस्कृति विच जिन्नियां अच्छियां चीज़ां हैगियां ने उन्हां तो दूर ना जाए साड़ी युवा पीढ़ी, बिल्कुल नवी तकनीक नाल जुड़े, उहदा नॉलेज भी लए, उहदा जिथे जरूरी है उत्थे प्रयोग भी करे, लेकिन जिन्नी जरूरी है उन्नी ही नवी तकनीक नू इस्तेमाल करन, मानवता और मानव मूल्यां नू भी महत्व देन। और मैं यह कहनी हाँ अपनी युवा पीढ़ी नू कि दिलों में गीता का संदेश गति नवयुग पे जारी है, ये मैं कविता लिखी सीगी अपने देश लई, अपने देश के युवा लई, कि साडे युवा सच्ची बहुत सारे युवा ने जिन्हां दे दिलां विच गीता का उपदेश है, वो अपने पुराने जिहड़े जीवन मूल्य ने, जिहड़ी साडी संस्कृति है, साडे जिहड़े बहुत जीवन मूल्य ने, वड्डियां दा आशीर्वाद लेना, उन्हां दे आशीर्वाद नाल दिन शुरू करना, आए अतिथि का सम्मान करना, और यह सब चीज़ां नू भी अपने दिल च रखन और नवी तकनीक दा भी फायदा उठान, ओदी सहायता नाल जीवन विच अग्गे वधदे जान। और जे असी स्वर्णिम भारत दा सपना देख रहे हां ते सानू युवा पीढ़ी नाल, युवा पीढ़ी नू साडे अनुभव नाल ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1: ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: इंडिया एंड रशिया हैव हिस्टोरिकली वेरी गुड रिलेशंस।
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त निधि वर्मा और लेकर आई हूँ बहुत सारे किस्से और आगे सुनवाऊंगी आपको बहुत अच्छे अच्छे गीतों को और करूंगी आपके संदेशों को शामिल। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और मैं आपको आज सुलाने नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको बचपन में ले जाने आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बचपन के किस्सों पर, वो किस्से जहाँ चोट लगने पर मम्मी का फूंक मारना हर मर्ज की दवा बन जाता था, जहाँ 1 रुपए वाली टॉफी सबसे बड़ी दौलत होती थी, जहाँ हम एग्जाम से ज़्यादा क्रिकेट खो खो खेलने में ध्यान लगाते थे। तो आप सभी लोग अगर अपने बचपन के किस्से, आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है बचपन में, तो हमारे साथ शामिल ज़रूर करिए और हमें लिख भीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है ip radio delhi@gmail.com पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि। तो आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें भेजा है रविंद्र मोहन दास ने। ये कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। ये बात सच है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, चाहे हमें लगे कुछ भी हो लेकिन हम अपने आप में खुश रहते हैं। इन्होंने कहा है कोई भी गीत सुनवा दें। किशनगंज बिहार से लिखते हैं रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। ये जो हमें संदेश भेजा है ये कहते हैं प्रशासक जी के सेवा में प्रणाम और हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये लिखा है सदानंद नाथ मधुकर जी ने। और ये संदेश हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू ने। और इन्होंने कहा है कि हमें जीत फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए। और ये संदेश हमें भेजा है सतीश अनेजा जी ने। ये लिखते हैं नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो जितना दूर होता है नज़रों से उतना ही वो दिल के पास होता है, क्या बात है। मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही ज़िंदगी में सबसे खास होता है, क्या बात है। आप तो शायर निकले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे जो ये संदेश लिखा है ये लिखा है चंदू कुलकर्णी ने। ये लिखते हैं नमस्ते जी, हमारे संदेश को शामिल कीजिए। और आपका संदेश शामिल हो गया है। ये संदेश हमें भेजा है बबलेश पनवार ने। ये लिखते हैं कि आपकी पसंद प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार। और ये कि इन्होंने लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बाबरी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान। और ये जो संदेश हमें लिखा है ये लिखा है सफरुद्दीन अंसारी ने। ये लिखते हैं आदाब, किसी भी गीत को शामिल करें। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी।

हरिंदर सिंह भाटिया जी लिखते हैं कि निधि वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपका प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हमेशा खुश रहें और पूरे परिवार के साथ हम ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और उस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। भाड़गल मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन जी लिखते हैं, उषा मोहन, टिल्लो नायक, मधु नायक, और इनका कहना है कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। संदीप मकर ने लिखा है कि फिल्म मोहरा का ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं। ये लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और हमें ये गीत सुनवा दें, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपका ये गीत सुनवा दें। और हमें आपका गीत मिल गया है, तो सबसे पहले आप सुनिए ये वाला गीत।

आज हम बात कर रहे हैं अपने बचपन की, और आपकी जिंदगी में भी बचपन में बहुत सारे किस्से आपके साथ हुए होंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर शामिल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ip.radiodelhi@gmail.com पर। आपको याद है ना कि आपने भी शायद ऐसा किया हो कि वो पोषम्पा भाई पोषम्पा खेलना, वो शक्तिमान देखने के लिए लड़ना और उसके जैसे गोल गोल घूमना, वो 10 रुपये में मिलने वाला चूरन, संतरे की गोली और वो पेप्सी जो हमारे दांतों को तोड़ देती थी। सच बताऊं तो बचपन में हमारे पास कुछ नहीं था पर सब कुछ था। आज सब कुछ है पर वो सुकून कहीं खो गया है। इसी बात पर एक शायरी याद आती है, काश फिर से मिल जाए वो बचपन, काश फिर से मिल जाए वो बचपन की गलियां, जहां ना कोई ख्वाहिश थी ना कोई सवाल था। एक साइकिल थी, कुछ दोस्त थे और एक शाम होते ही घर आने का एहसास था। तो इस शायरी के साथ आप लोगों के कुछ संदेश भी शामिल कर लेते हैं। तो ये जो संदेश हमें भेजा है, ये भेजा है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन है। ये लिखते हैं, निधि जी हम भी आपका कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी शानदार प्रस्तुति मन मोह रही है। हमने भी आपको अब मेल भेजा है, कृपया हमारा संदेश भी शामिल कर लीजिए। तो देख लीजिए आपका संदेश भी शामिल हो गया है। और इनके साथ लिखते हैं कौशल्या देवगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। ये संदेश हमें लिख के भेजा है बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। अगला संदेश हमें भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी ने। ये लिखते हैं कि निधि वर्मा जी नमस्कार, कमाल है आपको हमारा एक मेल भी नज़र नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, इतने सारे मेल आ जाते हैं कि स्क्रॉल करते करते मेल इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपका मेल शामिल नहीं करना चाहते हैं, और देख लीजिए कि आपका मेल भी शामिल हो गया है। और ये लिखा है मोहम्मद सईद अब्बासी ने, निगहत परवीन अब्बासी, सहानवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अब्बासी और अब्बासी परिवार ने। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं। ये हमें लिख भेजा है धर्मेंद्र छिबा ने। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम आपकी पसंद, आदरणीय मैडम निधि जी नमस्कार, बेहद बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रही हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये लिखते हैं कपिल छिब्बा, ईशान छिब्बा और पूजा परिहार। अगला संदेश जो हमें भेजा है वो भेजा है हमें दिलावर खान ने। ये लिखते हैं आदाब जी, किसी मधुर गीत में हमें भी याद कर लीजिए, और आपकी आवाज हमें अच्छी लग रही है और आपका प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हम आपकी पसंद का कोई ना कोई गीत ज़रूर सुनवा देंगे।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। तो इतने सारे संदेश आ गए हैं तो कुछ संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। और ये संदेश हमें भेजा है देवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी ने। ये लिखते हैं, निधि जी सादर नमस्कार। आपने बचपन की जिंदगी की क्या जिंदगी थी ना, ना कोई गम था ना कोई चिंता, काश वो लौट कर आ पाता। निधि जी, बचपन में हम पेट दर्द के झूठे मुठे बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। फिर अम्मा जी कई प्रकार खाने का सामान देते जिन्हें खा करके पेट दर्द ठीक हो जाता था। आज आपने हमें वो दिन याद दिला दिए। इस संदेश से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया और मैं अपना किस्सा शामिल करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। मैं और मेरी बहन स्कूल में जब पढ़ते थे तो साथ में पढ़ते थे। वो बड़ी क्लास में थी और हम छोटी क्लास में थे। तो जब क्लास चेंज हुई तो वो दूसरे स्कूल में चली गई और हम उसी स्कूल में रह गए। तो जब वो स्कूल से गई तो उसके बाद हमारे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, बहुत बुरा लगता था स्कूल में। तो जब जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर से कोई ना कोई बहाना करके कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा है, ये प्रॉब्लम, ऐसे कर करके जाने के बाद घर वापस आ जाते थे। तो जब आज ये संदेश मैंने पढ़ा तो मुझे अपना दिन याद आ गया कि बचपन में हम कैसे कैसे काम करते थे। जब वो आज किससे याद करते हैं तो खुशी भी होती है, हंसी भी आती है, बट वो मासूम दिन बड़े याद आते हैं। अगला संदेश जो हमें भेजा है वो भेजा है रमेश चौहान ने। ये लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी, बेबी बॉय और हिमाक्ष। और ये जो हमें संदेश लिखा है दिलावर खान ने। ये लिखते हैं नमस्कार जी, नाम के साथ आप जगह का नाम भी बोल देते थे तो थोड़ा हमारा चेहरा नूरानी हो जाता। किसी मधुर गीत के साथ हमें भी याद कर लीजिए। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू। तो आपके शहर का नाम भी शामिल हो गया है। और ये जो हमें अगला संदेश भेजा है हरजिंदर साहिन शिंदा ने। ये लिखते हैं गांव नथाना से पंजाब हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, शीता और गीता। और इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। और अगला संदेश जो हमें भेजा है वो भेजा है मंसूर हसन ने। ये लिखते हैं कि आप हमें हमारे लिए कोई भी गीत शामिल कर दीजिए। और ये अगला जो संदेश लिखा है वो लिखा है नितो मल्होत्रा ने।

लिखते हैं, नमस्कार जी, आप अपने प्रोग्राम में हमारा कोई भी गीत शामिल कर दीजिए। ये लिखते हैं, खेल बाजारा पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से।

संदेशों को और हम शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें भेजा है मारवा दरवाजा एटा से नवी हसन ने। ये लिखते हैं, निधि वर्मा जी, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर लें और आपका नाम शामिल हो गया है। ये लिखते हैं, नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी और अवासी परिवार। ये जो संदेश हमें भेजा है वो भेजा है अनिल जैन ने, और ये लिखते हैं, मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जैन परिवार। अगला जो संदेश हमें भेजा है वो भेजा है कमल मरावी ने। ये लिखते हैं, निधि वर्मा जी नमस्कार, 10 बजे से ईमेल भेज रहे हैं, आप हमारा नाम शामिल करें और कोई भी गीत शामिल कर दें। तो आपका नाम शामिल हो चुका है। और ये लिख रहे हैं, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। अगला जो संदेश हमें लिखा है वो लिखा है अहमद फूल वाले ने। ये लिखते हैं कि होस्ट निधि वर्मा बहन जी को नमस्कार, आप खुश रहें और सभी खुश रहें। और ये लिखते हैं कि कोई भी गीत हमें शामिल कर लीजिए और आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सुनते हैं एक और गीत।

कार्यक्रम से चलते चलते कुछ मेल को और हम शामिल कर लेते हैं। तो ये मेल जो हमें लिख भेजा है, ये लिखा है साहिल दर ने, और ये लिखते हैं कि निधि जी आदाब, श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान। ये लिखते हैं कि बचपन का समय जीवन का सबसे बेफिक्र और खुशनुमा दौर होता है। उस समय छोटी छोटी शरारतों में भी बड़ी खुशी मिलती थी। कभी दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलना, कभी किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाना, तो कभी बिना बताए आम या बेर तोड़ने निकल जाना। ये सब शरारतें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कभी स्कूल में होमवर्क ना करने के बहाने बनाना, तो दोस्तों की पेंसिल छिपा देना, या शिक्षक से डांट खाने के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना भी बचपन का हिस्सा था। गर्मियों की छुट्टी में पेड़ पर चढ़ना, बारिश में भीगना और मिट्टी में खेलना तो जैसे रोज की दिनचर्या थी। आज जिम्मेदारियों ने जीवन का गंभीर बना दिया है, लेकिन बचपन की वे नटखट यादें दिल में हमेशा ताजा रहती हैं। सच कहा जाए तो बचपन की शरारतें ही जीवन में सबसे प्यारी और अनमोल यादों में से एक है। जी हाँ साहिल डार जी, आपने ये बहुत सही बात की है, और आपने इस मेल में अपनी अपने के साथ साथ जितने भी लोगों ने ये संदेश सुना होगा उनको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि आपने सबको शामिल कर दिया है। तो कार्यक्रम में अगला संदेश ले लेते हैं। ये लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। आदरणीय प्रशासक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब, आप हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए। और अगला जो संदेश आया है वो लिखा है स्वर्ण सिंह ने, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज

सिंह, और उन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत आप हमें अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, तो समय के अभाव के कारण हम और मेल शामिल नहीं कर सकते, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का, अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत, और आपकी पसंद कार्यक्रम से अपने दोस्त और होस्ट को कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वे आज

शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में भी होता है। कुछ लोग अपने काम को शुरू करने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ लोग काम को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आलस से धीरे धीरे हमारी आदत और जीवन शैली बन सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आलस्य के इस प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए और अपने समय, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आलस्य के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उसके विषय में भी आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, लोगों के आलसी होने और हर काम को हमेशा कल पर टालने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे अपने जीवन में बहुत ही अधिक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें कोई बदलाव हो। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जो काम आप हमेशा करते आए हैं वही करना आसान होता है, लेकिन इससे आपको वह विकास नहीं मिल पाता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विकास के लिए आवश्यकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन कार्य को करने का प्रयास करें। आलस्य हमारे जीवन में बहुत सी कमियों को लेकर आती है। आलस्य हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालती है। शारीरिक जीवन के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। यदि मनुष्य आलसी है तो उसे अपने जीवन में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक धनी व्यक्ति था और ये धनी व्यक्ति बहुत ही आलसी था। उसने हर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था और आराम करता था, खाता पीता था और सोता था। शारीरिक मेहनत ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और खाता है, पीता है, सोता है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि यह धनी व्यक्ति अपने उन नौकरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि यह व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है और उस सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर होने का उपाय पूछा। मित्र बहुत समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर पाओगे या नहीं। सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बस मुझे उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। अगले दिन यह धनी व्यक्ति सुबह उठता है और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दिन उसे वह सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ा और उस पक्षी को खोजने लगा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और बाहर जाने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई, क्योंकि अब उसके नौकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे थे। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने जो कहा था कि वह सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, मैं कई दिनों से रोज उसको देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है और तुम्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। प्रिय मित्रों, आपका आरामदायक क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आरामदायक क्षेत्र एक सुंदर स्थान है लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं होता। आरामदायक क्षेत्र आपको सुरक्षित तो महसूस करा सकता है लेकिन वह आपकी प्रगति को रोक देता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं तो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक विकास हमेशा सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से जन्म लेता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त महसूस करता है। यहां कोई बड़ा जोखिम नहीं होता और सब कुछ परिचित होता है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक हो। एक कर्मचारी नए जिम्मेदारियों को लेने से डरता है, एक व्यापारी नए काम को शुरू करने से डरता है। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह रहा होता है। लेकिन ये आरामदायक स्थिति हमारा शत्रु कैसे है? ये हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं। जब हम केवल आसान कार्य करते हैं तो हमारी वास्तविक क्षमता कभी सामने नहीं आती। ये हमें परिवर्तन से डरना सिखाती है। नई परिस्थितियां हमें असहज महसूस कराती है, इसलिए हम पुराने तरीकों को भी अपनाए रखते हैं, जबकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह आलस्य और टालमटोल को बढ़ावा देता है। जब सब कुछ आरामदायक लगता है तो हम कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। नई बातें सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन आरामदायक स्थिति हमें गलतियों से बचाता है, लेकिन उसी के साथ सीखने के अवसर भी छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास कहाँ होता है? वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नया कौशल सीखना, लोगों के सामने बोलना, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना, कठिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, असफल होने के डर के बावजूद प्रयास करते रहना और ईश्वर पर विश्वास रखना। शुरुआत में ये सब कठिन लगते हैं,

0: आत्मिक और सामाजिक रूप से भी पीछे रह सकता है। परंतु परीक्षमी हाथ समृद्धि लाते हैं। परीक्षमी व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, लगन और समय पर पूरा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और ईश्वर की दी हुई योग्यताओं का सही उपयोग करता है। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि सम्मान, सफलता, स्थिरता और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशीषें हैं जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। इस पूरे अंश में हम इस बात को देखते हैं कि आलसी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और कहावत है और उसमें कहा गया है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। वास्तव में वो एक बहाना बना रहा है। हो सकता है कि मार्ग में कोई सिंह ना हो, लेकिन आलसी व्यक्ति काम पर जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काल्पनिक खतरों का बहाना बनाने लगता है। आज के समय में ऐसे बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, अगर मैं असफल हो गया तो कल से शुरू करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आलस से अक्सर डर या बहानों के पीछे छिपा होता है। लेकिन आलस्य से बचने के लिए हम अपने जीवन में क्या करें? सबसे पहली चीज, बहाने बनाने की बजाय हम पहला कदम उठाएं। छोटे छोटे कार्यों को भी समय पर पूरा करने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर समझिए, रुकावट नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अनुशासन, परिश्रम और विश्वास योग्यता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। नए अवसरों के लिए हाँ कहना सीखें। याद रखिए, असुविधा अक्सर विकास की शुरुआत होती है। जहाँ सुविधा प्राप्त होती है वहीं से विकास आरंभ होता है। विश्वास आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आराम कभी नहीं ले जा सकता। जब हम अपने जीवन में उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं, तभी हमारा चरित्र, विश्वास और क्षमता विकसित होती है। प्रिय श्रोताओं, आलस्य को दूर करने का तरीका तभी समझ आ सकता है जब पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं, तो किस प्रकार से हम उन आदतों को बदल सकते हैं और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। पहली चीज, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शुरुआत में एक या दो छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उसी प्रकार से धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जीवन में सफल लोग हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। कई बार उनका भी मन काम करने का नहीं होता है, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे दृढ़ता कहा जा सकता है, अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहें। इसे विकसित करने के लिए अपने काम में रुचि खोजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। जब हम किसी अच्छे काम को नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाता है। और अंतिम चीज, अपने समय और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास समय तो सीमित है, लेकिन हमारी ऊर्जा भी सीमित है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और आराम, नींद, व्यायाम और सही भोजन को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोडक्टिव यानी अच्छा और प्रभावी जीवन जीने के लिए केवल समय का प्रबंध करना पर्याप्त नहीं होता है, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से हम अपने जीवन में आलस्य को दूर कर सकते हैं और एक अलग ही एनर्जी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है,
2: कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955। 9999।

0: पांच पांच।
1: तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीता पंत का गाया हुआ ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आपने सुना संगीता पंत का गाया हुआ गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संघ मित्रा चक्रवर्ती का गायन राग वृंदावनी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संघमित्रा चक्रवर्ती का गायन राग वृंदावनी सारंग, विलंबित एक ताल, मध्यलय तीन ताल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामलां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामलां के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामलां को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामलां ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामलां के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding bilateral discussions with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. During the talks, they will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. The visiting dignitary was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi welcomed the Swiss president. He was given a tri-services guard of honour. Talking to reporters after the ceremonial welcome, Mr. Parmelin said the visit is an excellent opportunity to emphasize the importance that both Switzerland and India attach to this relationship.
6: The visit is an excellent opportunity to emphasize the importance that both Switzerland and India attach to this relationship. The relationship between our two countries is built on shared democratic values as well as on trust and mutual respect. My visit is a stepping stone towards a further growth, deepening and strengthening of our close, broad and long-standing partnership.
5: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the US-India trade deal negotiations are still ongoing and are yet to be finalized. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said both sides have reached a plateau. She described the agreement under discussion as a hard and rigorously negotiated one. The minister said the trade balance is very much in India's favour. She said that negotiations used to be the only platform through which countries could highlight their discrepancies.
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
5: The finance minister has hailed India-European Union free trade deal, saying it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said the deal, aptly described as the mother of all deals, covers economies representing around 2 billion people and about one-fourth of global GDP. The finance minister said the agreement provides for complementary market access while ensuring that competitiveness remains unaffected. She said India has opened up 92.5% of its tariff lines under the agreement, accounting for around 97% in terms of trade value. The US military has said it attacked a boat suspected of being involved in drug smuggling in the Caribbean Sea, killing four people. The strike was carried out yesterday as the Trump administration continues its campaign against alleged drug traffickers in Latin America. According to the US Southern Command, the vessel was targeted along a known smuggling route. However, the military did not provide evidence that the boat was carrying drugs. The latest attacks takes the reported death toll from the U.S. military boat strikes to at least 235 in 70 operations since September last year. India concluded its campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze, finishing fourth in the overall standings. India's campaign produced a series of landmark achievements across disciplines. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in the forenoon session today. The Sensex rose 175 points to 72,085, while the Nifty added 50 points to 22,472 when reports last came in. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbha. And with that, we end this news bulletin.

आंगन। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। घर आंगन, घर जहां रिश्तों की गर्माहट है, आंगन जहां यादों की खुशबू है और परिवार जहां हर पीढ़ी की अपनी ही एक खूबसूरत कहानी है। और आज के घर आंगन में, आज के विषयों में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। और जिंदगी ही तो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। वक्त के साथ साथ ये आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और ये आत्मविश्वास करना हमें सिखाते हैं हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। आज है विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि आपकी जिंदगी में वो कौन शिक्षक है जिसकी दी हुई शिक्षा आपको आज भी याद है, और वो क्या शिक्षा है अगर आप हमें बताना चाहें तो, आपके जीवन में बहुत काम आई वो शिक्षा वो हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, श्री 420।

प्यार से शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम ये सारी जिंदगी हमें याद रहता है अगर हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है। तो आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का ये प्रश्न है कि ऐसा कौन है और कौन से गुरु हैं और आपको ऐसी क्या शिक्षा मिली जो आपको जिंदगी भर याद रही या अभी तक याद है, तो आप हमें बताइए fmgold@gmail.com पर। हम करें आपकी ईमेल्स का इंतजार। और आज सोशल मीडिया के दौर में आपस में तुलना बहुत बढ़ गई है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी अच्छी नौकरी है, किसी के बच्चे बहुत सफल हैं, कोई विदेश में घूम रहा है, कोई भारत में ही घूम रहा है। तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर हम ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति की जिंदगी के सिर्फ अच्छे हिस्से से करते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के दूसरे पहलू को नहीं जानते, क्योंकि मेहनत उसने भी की है। सफलता मेहनत से ही मिलती है। तो इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। इसलिए तुलना करने की बजाय अपने कल से अपने आज की तुलना कीजिए। मैं आज अपने बीते कल से कितना आगे बढ़ चुका हूं, मैंने क्या नया नया सीखा है, मैंने अपने लिए क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, यही तो असली प्रगति है।

गीत आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, एफएम गोल्ड और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है और हमें ईमेल्स मिलने शुरू हो गई हैं। लिखते नवीन भाटिया मोती नगर नई दिल्ली से कि ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनकी शिक्षा याद रही कि जिंदगी अगर मगर में नहीं बीतती, आज का दिन ही बेस्ट है। जी हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज में जीना चाहिए, बीते पलों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ये आया है उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं कि नमस्ते मैडम जी, हमारे शिक्षक हैं हमारे माताजी पिताजी और इसके बाद हमारे टीचर्स। ये तो सबसे अच्छी बात कही आपने, क्योंकि माता पिता ही सबसे प्रथम गुरु होते हैं जो आपको हर चीज़ सिखाते हैं। ईमेल्स मिलने शुरू हो गई हैं। अब ये हैं राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी चौधरी वास, ये लिखते हैं कि हमारे शिक्षक प्राइमरी में सीताराम जी थे, 20 की आवाज़ का 2, 30 की आवाज़ का 3, पन पन की आवाज़ की 5, छठ की आवाज़ के 6 प्रकार, इस प्रकार की गिनती याद करवाते थे। और ये जो अभी गाना चला, मैं चली, ये इनको बहुत पसंद है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो गिनती हो या पहाड़े हो, वो इस तरीके से याद करवाते हैं कि लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाती हैं वो चीज़ें, तो वो भी याद रहता है। और बहुत अच्छी बात है, हमारे सब श्रोता लिख रहे हैं। आप भी बताइए हमें कि कौन से शिक्षक की कौन सी बात आपको आज तक याद है। हमें ईमेल कीजिए fmgoldj@gmail.com पर। और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल, जिनका सामना हम कभी ना कभी करते हैं। अब हम हमेशा इस डर के साथ क्यों जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छी नौकरी हो तो लोग पूछेंगे शादी कब होगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे कब होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी करियर की चिंता, हर उम्र में समाज की अपेक्षाएं क्यों, और खासकर महिलाओं पर तो ये दबाव कई बार और ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, जो रास्ता किसी दूसरे के लिए सही है जरूरी नहीं वो सबके लिए सही हो। अगर मैं आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हूँ या आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, वो सब पर लागू नहीं होता है। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपने जीवन का निर्णय जो है वो सोच समझ कर कीजिए।

महबूब की मेहंदी, इस फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर को सुना। परिवार जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन परिवार की उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना जो होता है वो बेहद जरूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए। कई बार माता पिता बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं, कभी बच्चे अपने माता पिता के सपने पूरे करने में अपनी पसंद भूल जाते हैं। इसी तरह महिलाएं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी इच्छाएं पीछे छोड़ देती हैं। परिवार का सम्मान करना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है, लेकिन परिवार का सम्मान करते हुए अपनी इच्छा को भी महत्व देना चाहिए। परिवार की अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, मगर अपनी इच्छाएं, अपने सपने दबाना सही नहीं है। सपनों को नई उड़ान दीजिए। घर में रहकर या जो परिवार चाहता है उसके साथ साथ भी आप अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनी खुशी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। परिवार सर्वोपरि है, ठीक है, मगर साथ साथ अपने दिल की खुशी भी तो जरूरी है। अपनी खुशी के बारे में सोचना भी जरूरी है।

और हम भी अपना वादा निभा रहे हैं ईमेल्स पढ़ के जो हमारे श्रोता भेज रहे हैं। बहरहाल ये गाना हमने लिया था फिल्म जॉनी मेरा नाम से, किशोर कुमार आशा भोसले की थी आवाजें। और अब हमें ईमेल मिल गई है हमारे श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि आपको सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। बच्चों का सबसे पहला और बड़ा शिक्षक होता है उसकी माता, उसके पिता। हमारे माता पिता की शिक्षा हमेशा HHH रही, यानी ऑनेस्ट अम्बल एंड हेल्पफुल। क्या बात है, आप आज का सोमवार की शुभकामनाएं भी दी हैं इन्होंने, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात, ये HHH का फंडा तो बहुत अच्छा लगा। और अब लिखते हैं राजेश शर्मा गाजियाबाद से। मुझे याद है जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैं उसे अपने क्लास में पढ़ने वाले में सबसे अच्छा बच्चा था। इस बात का शायद मुझे थोड़ा घमंड था, अहंकार था। मेरे पूजनीय गुरुजी स्वर्गीय पंडित श्रीराम परीक्षा शर्मा ने मुझे समझाया था, कहा था ईश्वर तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर बनाए, परंतु तुम एक बात याद रखना, कभी भी तुम अहंकार मत करना। बहुत अच्छी बात आपके गुरुजी ने आपको बताई। और आप लिखते हैं कि उनकी यही बात आज तक मैं नहीं भूला हूं, वो हमेशा मेरी यादों में रहते हैं, मैं हृदय से उनके आभार और उनकी पूजा करता हूँ। ये मेल हमने पढ़ी राजेश शर्मा की गाजियाबाद से। और ये लिखते हैं, अगली मेल हमें मिली है गौरी शंकर जी की नांगलोई से। ये लिखते हैं, राधा बेटा राम राम। 1970 की बात है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, हिसार हरियाणा में। हमारे मास्टर जी का नाम था काका राम। वो क्लास के बाद में हमें एक कहानी सुनाते थे, बड़े ध्यान से हम कहानी सुनते थे। वो कहानी भी शिक्षा प्रद होती थी। वो कहते थे जैसे तुम कहानी ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे ही ध्यान पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। आज भी मास्टर जी का नाम याद आता है, उनकी दी हुई शिक्षा भी याद आती है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी नांगलोई से, जो आप लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी। क्योंकि हम शिक्षक जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई कहानी हमें बताते हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रेरित करती है। तो हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अपने श्रोताओं से। और आज लेकर आ रहे हैं श्रोता वो बातें जो उन्होंने शिक्षा ली अपने गुरुओं से। किसी भी शिक्षा शिक्षक ने जो भी आपको शिक्षा दी वो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं fmgolja@gmail.com पर। क्योंकि सफलता का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। क्या बड़ी नौकरी सफलता है, या बड़ा घर सफलता है, या बहुत सारा पैसा कमाना सफलता है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। किसी महिला के लिए अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना सफलता हो सकती है। किसी बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन भी सफलता हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए छोटा सा व्यवसाय सफलता हो सकता है। इसलिए दूसरों के पैमाने से अपनी सफलता को मत नापिए। जिंदगी में आपका संतोष और आत्मसम्मान आपको मिलता रहे वो सफलता है।

बहारों के सपने। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और हम अपने श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं एक ईमेल के जरिए। जी हाँ, आप ईमेल हमें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि जिंदगी में किस शिक्षक ने आपको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जो आपके बड़े काम आई, और हमें भी तो पता चले, और हमें भी तो वो शिक्षा पता होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। अब हमें पुनीत जी दिलशाद कॉलोनी से एक मैसेज मिला है कि विनोद सर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए। जी हाँ, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कभी ये नहीं करनी चाहिए वो ड्राइविंग तेज करता है तो मैं भी करूंगा, या वो गलत आदतों में है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब वासु लिखते हैं कि खुश रहना बहुत जरूरी है जो भी हालात हों। इनके शिक्षक इन्हें बताते हैं, इनकी गरिमा मैडम ने इन्हें बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर हालात में खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अब एक बात और है जो हम आज के कार्यक्रम में आपसे करेंगे कि कई बार कोई व्यक्ति सफल ना हो पाए, असफल हो जाता है, तो क्या पूरी जिंदगी असफल हो जाती है? नौकरी नहीं मिली तो हम असफल हो गए, व्यवसाय में नुकसान हुआ तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, किसी परीक्षा में अगर कम अंक आ गए, रैंक कम आ गई तो लगता है आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, अनुभव का एक पड़ाव है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अनुभव, एक ठोकर मिली जिसमें आपको अनुभव भी मिला। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अनुभव मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि कई बार परिणाम के आधार पर बच्चों को आंका जाता है, वो भी ठीक नहीं है। कोशिश अच्छी थी, अगली बार और बेहतर करेंगे, ये बात सब पर लागू होती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। ये मतलब है कि परिवार और समाज की बिल्कुल ना सुने, इसका अर्थ है सबकी सुनिए, विचार कीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। जिंदगी में कई रास्ते हैं, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कभी रास्ते में सफलता मिलेगी, कभी आलोचना मिलेगी, लेकिन अगर हमें अपने निर्णय पर विश्वास है ना, और हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ता धीरे धीरे बनता चला जाता है। इसलिए हमारा आज का ये संदेश है कि दूसरों की बनाई हुई जिंदगी मत जिए, अपनी परिस्थिति को समझिए और अपना रास्ता बनाइए, और देखिएगा मेहनत और ईमानदारी से सफलता जरूर मिलेगी।

अनपढ़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और बातें चल रही थी जिंदगी की। अब कुछ बदलते मौसम की बात हो जाए। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों वायरल संक्रमण या फ्लू की समस्या देखी जा रही है। सुबह शाम की ठंड और दिन के समय में गर्मी महसूस कराने वाला ये मौसम हमारी सेहत के लिए बहुत प्रतिकूल है। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण ये मौसम खुशनुमा भी लगता है, और कई बार जब शाम को ठंड हो जाती है तो भी अच्छा लगता है। दिन में गर्मी हो जाती है, लगता है गर्मी होने लगी। मगर कुछ लोगों के लिए, विशेषकर एलर्जी की जिन्हें समस्या है ना, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि दिवाली के समय में लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं। अब जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आएंगे लोग घर की साफ सफाई करेंगे, तो जिन्हें एलर्जी है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मौसमी परिवर्तन में वातावरण में पोलन संक्रमण यानी पराग का स्तर बुखार के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ये पराग सूक्ष्म होते हैं और हवा के साथ साथ सीधे फेफड़ों में जाते हैं। चूंकि ये बाहरी तत्व है तो शरीर इन्हें स्वीकार नहीं करता और इससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। इसलिए शरीर में तेज प्रतिक्रिया होती है, बार बार छींकें आती हैं, गले में खराश होती है, नाक बहती है जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है सावधानी, मास्क लगाएं, बाहर का खाना ना खाएं, साबुन से हाथ धोने की आदत बनाएं ताकि संक्रमण बढ़ ना जाए। ग्रीन टी लें, अंजीर अदरक जैसी एंटीऑक्सीडेंट चीजें लें, शरीर को आराम दें, हाइड्रेट रहें, पानी के साथ साथ नारियल पानी छाछ लें और फ्लू से बचे रहें। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के गरारे किए जा सकते हैं। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ की चाय या काढ़ा पीजिए। कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। सेहत रहेगी तभी तो आप खुश रह पाएंगे।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और जब सेहत की बात चली ही है तो कुछ सलाद हम आपको आज बताना चाहेंगे, क्लासिक कुकुम्बर सलाद। जी हाँ, दो मध्यम प्याज ले लीजिए, दो मध्यम टमाटर ले लीजिए, दो मध्यम खीरे ले लीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नमक, सब्जियों को बारीक काट कर सब मसाले मिला दीजिए। अब देखिए, एक आपको बताते हैं सलाद जो आपको लगे कि रशियन सैलड जिसे बोलते हैं, शाकाहारी, बिल्कुल जी हाँ। एक कप उबली हुई मिश्रित सब्जियां ले लीजिए, गाजर, मटर, आलू और बीन्स। एक छोटा सेब ले लीजिए कटा हुआ मिठास के लिए। चौथाई कप उबला अनानास ले लीजिए। आधा कप मेयोनीज ले लीजिए। दो चम्मच फ्रेश क्रीम और आधा चम्मच छोटी चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको मिला दीजिए। देखिए रशियन सैलेड बन जाते हैं जब मेयोनीज और फ्रेश क्रीम इन सब्जियों में लिपटेगी और आप खाएंगे ना तो आपको बहुत स्वाद आएगा। कॉर्न और शिमला मिर्च की सलाद बना सकते हैं। आधा कप उबला स्वीट कॉर्न, आधा कप कटी शिमला मिर्च, लाल, पीली, हरी, सब तरह के ले लीजिए, क्योंकि रंगीन खाना लगेगा तो आपको खाने में भी लजीज लगेगा। आधा कप कटा प्याज, दो बड़े चम्मच जैतून का तेल, डेढ़ बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, इन सबको मिला दीजिए। और सब्जियां इस तरह से काटिए ना, स्क्वायर स्क्वायर के देखने में बड़ी खूबसूरत लगे। ये तीन तरह की सैलेड मैंने आपको बताई। देखते हैं अब कौन कौन श्रोता ये सैलेड बनाकर खाते हैं और हमें मेल करते हैं कि सैलेड इनको कैसी लगी। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

प्रश्न हमने अपने श्रोताओं से पूछा, एक मैसेज और आया है लवली जैन का रोहिणी से। वो लिखते हैं, उन्हें शिक्षा दी थी इनके जो गुरुजी हैं बचपन में, कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहो और छात्र बने रहो। शिक्षा वो जो कहीं से भी मिल जाए ले लीजिए, इंसान हर पल सीखता है। बिल्कुल सही लिखा है लवली जैन जी ने, और उनके शिक्षक ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। और सभी उन श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमें मेल्स भेजी, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुना। और ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर के आवाज में, और इस कार्यक्रम से यानी कि घर आंगन से राधा को दीजिए विदा। लेकिन ध्यान रही रखिए कि इस खूबसूरत विचार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने लिए समय निकालिए, मुस्कुराते रहिए। फिर कभी फिर से मुलाकात होगी। राधा को फिलहाल इस कार्यक्रम से आज्ञा दे, सुनते रहिए ये गीत।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रोग्राम एक ही फिल्म से आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सफर में लेके चलूंगी और वो समय होगा 1970 का, एक ऐसी फिल्म की ओर जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है, संगीत भी है, और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे दुनिया उसकी असली पहचान से नहीं बल्कि एक नाम से याद करने लगती है। फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और इस फिल्म के साथ जुड़े जो गीत हैं वो आज भी हमारे दिल में वही कसक पैदा करते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको इस फिल्म का सबसे सुपरहिट जो गीत है, जो इस फिल्म की पहचान है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप भी इस सफर में हमारे साथ सफर बन सकते हैं। इस फिल्म से कोई जुड़ी खास बात आपके पास है, जानकारी है, कोई याद है, तो वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेल के जरिए। अपने संदेश भेजिए हमारे इस मेल आईडी पर, mail@radiodehli.com, और इस सुनहरे सफर में बन जाइए हमारे हम सफर।
1: तुम मुझे

यहाँ जब भी 1970 की बात चलेगी तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत ने और मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। फिल्म के निर्माता अजीत चक्रवर्ती थे और संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। गीत के बोल जो आप इतने खूबसूरत से सुन रहे हैं ये लिखे थे हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के चार प्रमुख कलाकार, जैसा कि हमने आपको बताया, शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। इससे पहले 1966 की लोकप्रिय हिट फिल्म तीसरी मंजिल में एक साथ नजर आ चुके थे। पगला कहीं का, इसमें दर्शकों को एक बार फिर से इस लोकप्रिय टीम को देखने का मौका मिला था। ये फिल्म जो है, इसकी कहानी का जो केंद्र है वो है सुजीत, जिसका किरदार निभाया शमी कपूर ने। आशा पारेख डॉक्टर शालिनी यानी कि शालू बनी थी, हेलेन ने जैनी का किरदार निभाया था और प्रेम चोपड़ा श्याम के किरदार में थे। तो बात करते हैं थोड़ी सी इस फिल्म की कहानी की, जिसका केंद्र था सुजीत, जिसका बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता है। बचपन की एक घटना उसके जीवन पर गहरा असर डालती है और आगे चलकर उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और वो समाज की नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है जो सामान्य जीवन से अलग है। फिर उसकी मुलाकात होती है श्याम से, जो उसे गाते हुए सुनता है और उसकी गायकी को पहचान कर उसे एक नाइट क्लब में गाने का मौका देता है। यही उसकी मुलाकात होती है जैनी से। प्यार, गलतफहमियां, परिस्थितियां और सुजीत की जिंदगी की पुरानी परेशानियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। फिर क्या होता है वो भी बताएंगे, उसके पहले ये गीत खूबसूरत सा रफी साहब की आवाज में।

0: जी हाँ, पगला कहीं का। कहानी थोड़ी बहुत आपको बता दी। बाद में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि सुजीत को मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं उसकी जिंदगी में डॉक्टर शालिनी यानी शालू की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है और यही वो जगह है जहां फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती बल्कि इंसान और समाज के नज़रिए की कहानी भी बन जाती है। पगला कहीं का की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं आप क्या है? इसका संगीत जो आप सुन रहे हैं, शंकर जयकिशन की धुनें और हसरत जयपुरी के गीतों ने फिल्म को यादगार बनाया। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों की आवाज़ सुनाई दी। एक से एक बढ़कर गीत हैं और ये गीत फिल्म की अलग अलग भावनाओं को सामने लाते हैं। कहीं दर्द है, कहीं मस्ती है और कहीं जिंदगी के संवाद भी हैं। आपको जो हमने पहला गीत सुनवाया था वो गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जानते हैं ये गीत शम्मी कपूर साहब को इतना पसंद था कि उनके जीवन के बाद के वर्षों में ये गीत उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन तक बन गया था। तो चलिए आप सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में खूबसूरत सा गीत मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा,
1: क्यों मारा, क्यों मारा।

आत्मक और मानसिक संघर्ष से गुजरता किरदार निभाया। ये उनके सामान्य रोमांटिक अंदाज से काफी अलग था और शायद यही वजह है कि आज भी ये फिल्म शमी कपूर की फिल्मोग्राफी में एक अलग रंग लेकर खड़ी दिखाई देती है। कभी कभी कोई गीत किसी किरदार की पूरी जिंदगी की आवाज बन जाता है। तो मुझे यूं भुला ना पाओगे भी कुछ ऐसा ही गीत था। इसके शब्दों में जैसे किसी ऐसे इंसान की पुकार है जो कह रहा हो कि तुम मुझे भुला देना शायद आसान नहीं होगा ये, क्योंकि मेरी यादें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। और यही भाव इस गीत को फिल्म से बाहर निकाल कर श्रोताओं के दिल तक पहुंचाता है। ये गीत रफ़ी साहब के साथ ही लता जी की आवाज़ में भी है। कुछ देर बाद वो गीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आशा जी की आवाज़ में सुनवाते हैं ये एक और खूबसूरत सा गीत है।

रणबीर कपूर साहब को हम अक्सर उनकी चुलबुली, रोमांटिक और बेहद ऊर्जावान स्क्रीन इमेज के लिए याद करते हैं, लेकिन पगला कहीं का में उन्होंने सुजीत जैसा भावना

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म 1970 की पगला कहीं का। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अब मैं आपको सुनवा रही हूं वो खूबसूरत सा गीत जो इस फिल्म की जान है, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुन चुके हैं और लता जी की आवाज़ में अब आपको सुनवाती हूं। आपके ढेर सारे संदेश भी मेरे पास पहुंच गए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा और उसके बाद आपके संदेश हम शामिल करेंगे।

तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीति हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल प्रिया हैं। सुल्ताननगर उत्तर प्रदेश से यशमीत निरंजन, सौम्या अविरल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्कान पोस्ट गालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत जगुताई और संचित जी हमारे साथ हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से शिवा गोप्रेम, कपिल शिवांश और संगीता जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमणी वर्मा दतरेंगी भाटा पारा से हमारे साथ हैं और लिख रहे हैं कि यह जो प्रोग्राम है इसमें गीत और जानकारी हमें पसंद आ रही है, शुक्रिया आपका। बटिंगकेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस, पिंकी लवली आरती जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस जी हमारे साथ हैं। गांव हांडी खेड़ा से जिला सिरसा से राधेश्याम और इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ हैं। और ये लिख रहे हैं कि एक ही फिल्म कार्यक्रम के बारे में मैं लाइव सुन रही हूं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया आपका। मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंड और गंगेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान और पूजा जी ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जस्सी के साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिम

हिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं गांव फरासी जिला हिसार से। राजकुमार डूडी जी का एक और संदेश पहुंच गया है हमारे पास। अगला संदेश जो हमारे पास है वो पहुंचा है मुकेश कासलेकर जी का, जो कि तहसील वरोड जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत सी जानकारी भेजी है। लिख रहे हैं कि बचपन में अपने पिता को मानसिक चिकित्सालय में देखने के बाद सुजीत के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। ये कहानी इन्होंने और बहुत सारी जानकारी भी हमसे शेयर करी है। शुक्रिया आपका। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास अजीत भापसर जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से आया हुआ है। और ढेर सारी जानकारी फिल्म से जुड़ी हुई आपने भी हमसे शेयर करी है। हमेशा की तरह जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन, ऊषा और टीलू नायक जी हमारे साथ हैं। भवरपुर बसना से राधेश्याम, चंपा जगदीश देवानगन जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। और रामशरण विश्वकर्मा साहिल जी ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद रोशन देवानगन जी हमारे साथ कौशल्य और हेमलता जी के साथ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से, गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हैं, नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सफर में आप हम सफर बने हैं। और भी बहुत सारे संदेश हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और आपको हम निराश नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ। असलम खान जी हमारे साथ हैं। मसरूर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है और मैं आप सबको निराश नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी जल्दी आपके संदेश ले रही हूँ। बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी मधु जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश आशा सरवा जी हमें सुन रहे हैं। और अब जाते जाते इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूं। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार, तो आपको जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर में ही आपको वापस आना है क्योंकि आज के जो सितारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके ऊपर फिल्माए गीत भी लाजवाब हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम से यानी एक ही फिल्म से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति की पामला ने आज नवी दिल्ली विच दवल्ली गलबात कीती। वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करदे कहा कि यह व्यापार समझौतियां ते गलबात करन लई भारत की पहुंच नूं दर्शाउंदा है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले ट्रांसफर मामले दी केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो CBI जांच दे हुकम दित्ते ने। भारत अते कैनेडा अज ओटवा विच तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गलबात दा पंजवां दौर शुरू करनगे। मिस्र, सुडान, एरिट्रिया अते सोमालिया ने देशां दी प्रभुसत्ता नाल समुंदर दे शासन अते पानी दे अधिकारां दी महत्ता ते जोर दित्ता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति की पैमला नाल दवल्ली गलबात की थी। गलबात विच व्यापार अते निवेश, विज्ञान, तकनालोजी अते नवीनता, आवाजाई, सभ्याचार अते लोकां तो लोकां दे संपर्क समेत वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा की गई। दोवें नेता बहुपक्षी मंचां विच सहयोग अते खेतरी तालमेल विकास ते चर्चा की थी। गलबात तों बाद अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ते स्विट्जरलैंड आलमी शांति ते स्थिरता लई रल के काम करदे रहणगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: यूरोपियन आजाद व्यापार समझौता एसोसिएशन देशों दरमियान समझौते बारे श्री मोदी ने कहा,
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: पहला स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अज भारत के 3 दिन दौरे से नवी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने नाल सीनियर अधिकारियों से व्यापारक आगुओं समेत एक उच्च पदरी वफद भी आया है। उन्होंने हवाई अड्डे से सड़क आवाजाई और शाहराह बारे राजमंत्री अजय थमटा ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन विखे मेहमानों का रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने तिना सेवाओं के गार्ड ऑफ ऑनर नाल सम्मानित किया गया। रस्मी स्वागत तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदे श्री पैमला ने कहा कि यह दौरा इस भाईवाली की महत्ता उजागर करन दा एक वधिया मौका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोवां देशां विचकार संबंध सांझियां लोकतंत्री कदरां कीमतां दे नाल नाल विश्वास अते आपसी सत्कार ते आधारित ने। राष्ट्रपति पैमला ने कहा कि उन्हां दा दौरा नजदीकी व्यापक अते लंबे समय तो चली आ रही भाईवाली नूं होर मजबूत डूंगा करन वल एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी अज राष्ट्रपति पैमला नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच डॉ जयशंकर ने भारत EFTA आजाद व्यापार समझौते समेत भारत स्विट्जरलैंड भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे राष्ट्रपति पैमला दे दृष्टिकोण की शलाघा की थी। उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि प्रधानमंत्री मोदी नाल श्री पैमला की मुलाकात वख-वख खेत्रां विच सहयोग नूं होर अग्गे वधाएगी। राष्ट्रपति पैमला अज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात करेंगे। शाम नूं राष्ट्रपति मुर्मू श्री पैमला दे सम्मान विच एक अधिकारित दावत दी मेज़बानी भी करेंगे। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया कि अमरीका भारत व्यापार समझौते ते गलबात चल रही है अते अजे तक इस नो अंतम रूप नहीं दिता गया है। आज नवी दिल्ली में जर्मन नेतावा नाल मुलाकात करदियां श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोवें धिरां एक अजिहे बिंदु ते पहुंच गईयां ने जिथे गलबात रुक गई है। उन्हां कहा कि विचार अधीन समझौता मुश्किल अते गहन गलबात तो बाद होया है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: खजाना मंत्री ने भारत यू आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करदिया कहा कि ए व्यापार समझौतिया ते गलबात करन अते उन्हां नूं अंतम रूप देण लई भारत दी पहुंच नूं दर्शांदा है। अज नवी दिल्ली विच म्यूनिख आगुआं दी मीटिंग विच बोलदिया श्रीमती सीतारमन ने इस नूं सारे समझौतिया दी जननी दस्या। उन्हां कहा कि यह समझौता करीब 2 अरब लोकां अते आर्थिकतावां नूं कवर करदा जो विश्व GDP दे कोई 1/4 हिस्से की नुमाइंदगी करदिया ने। खजाना मंत्री ने कहा कि यह समझौता मुकाबलेबाजी नूं प्रभावित किते बिना पूरक बाजारा तक पहुंच प्रदान करता है।

0: कहा कि भारत के समझौते तहत अपनी 92.5% टैरिफ लाइन खोलिया ने जो कि व्यापार मुल का करीब 97% है। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा एक्स हैंडल @AIRRN जलंधर। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार ते नकदी बदले ट्रांसफर मामले दी केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो CBI जांच दे हुकम दित्ते ने। अदालत ने फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वल्लों मुख्यमंत्री दे विशेष ड्यूटी अधिकारी नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार ते उच्च प्रोफाइल नकदी ते दावियां तों बाद लिया है। इस तों पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कथित तौर ते पंजाब दे पुलिस डायरेक्टर जनरल नूं 3 पत्र भेजे सन जिन्हां विच FIR दर्ज करन दी मांग कीती गई सी, पर राज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस दौरान साबका केंद्रीय राजमंत्री ते सीनियर भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया है कि हाईकोर्ट वल्लों भ्रष्टाचार के मामले नूं CBI नूं सौंपना साबित करदा है कि राज मशीनरी जानबुझ के अपने आप नूं बचा रही सी। उन्होंने कहा कि जदों ED दे 3 अलर्ट पंजाब पुलिस ने लुका दिते तां अदालत नूं दखल देना पिया। सीनियर कांग्रेस आगू और विधानसभा विच विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि CBI एक निरपक्ष और समाबद्ध जांच करेगी। भारत ते कैनेडा अज ओटवा विच तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गलबात दा पंजवां दौर शुरू करनगे। दोवे देश दिसंबर तक व्यापार समझौते नूं अंतिम रूप देण दा टीचा रखते ने। 5 दिना गलबात 9 अक्तूबर तक जारी रहेगी। चौथे दौर दी गलबात 18 सितंबर नूं नवी दिल्ली विच होई। इस साल मार्च विच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अते कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिसंबर तक समझौते नूं अंतिम रूप देण दा टीचा रख्या सी। अज सवेरे जलंधर नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहरा ते हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस पलट जाने कारण 4 व्यक्तियों की मौत हो गई अते 15 तो वध जख्मी हो गए। मरण वाले विच फगवाड़ा विखे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU दी एक विद्यार्थन शामिल है अते एक होर मृतक अमृतसर तो है। मृतकों विचों 2 की पछाण अजे तक नहीं हो सकी है। जख्मियों विचों ज्यादातर LPU दी विद्यार्थन ने। पुलिस हल्कियां मुताबिक अमृतसर जाने वाली बस मनाली तो आ रही सी जदों ए एक पुल तो पलट गई। मिस्र सुडान एरिट्रिया अते सोमालिया ने देशां दी प्रभुसत्ता लाल समुंदर दे शासन अते पानी दे अधिकारां दी महत्ता ते जोर दित्ता है। नेतावां ने कल मिस्र दे न्यू अलामीन विच एक 4-3 सलाहकार सम्मेलन तों बाद एल अलामीन सांझा ऐलाननामा पत्र जारी कीता। उन्होंने किसे भी बहाने खेतरी देशां दे अंदरूनी मामलियां विच दखल अंदाजी नूं रद्द कीता है। अज गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अज इस मौके गुरु नानक देव जी नूं श्रद्धांजलि भेंट की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच बिरला ने कहा कि अपने जीवन राही गुरु नानक देव जी ने दुनिया नूं सच्चाई दया मनुखता ते सद्भावना दा संदेश दिता। उन्होंने समाज विच प्रचलित अंधविश्वास वितकरे ते जात आधारित ऊंच नीच जिहियां समाजिक बुराईयां खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठाई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्यार दया सेवा सच भाईचारे ते आपसी सत्कार ते आधारित गुरु नानक देव जी का संदेश अज भी उन्ना ही प्रसंगिक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी गुरु साहब नूं उन्हां दे ज्योति जोत दिवस ते नमन कीता है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पामला ने अज नवी दिल्ली विच दवल्ली गलबात कीती। वख-वख खेतरां विच दवल्ली सहयोग विच प्रगति की समीक्षा की गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत यू आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करते कहा है कि व्यापार समझौतों ते गलबात करने लई भारत की पहुंच नूं दर्शाउंदा है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले ट्रांसफर मामले की केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो जांच दे हुकम दित्ते ने। इस नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गी पमेलों के साथ दोतरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तिजारत सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल भरोसा सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ मौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद तिजारती माहदे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे तिजारती माहदे से मुतालिक बातचीत और उन्हें कतई शक्ल देने के भारतीय तरीकेकार की अक्कासी होती है। अमरीकी फौज ने कहा है कि कैरेबियाई समंदर में मुबैना ड्रग स्मगलिंग से वाबस्ता एक

0: कश्ती पर ताजा हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं और भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे को फरोग देने और इनमें इश्तराक के सिलसिले में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए। स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के दरमियान दिलचस्पी के एक खत पर भी दस्तखत किए गए। इन मुआहदों पर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पामेलों के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। एक मुश्तरका प्रेस मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तहत स्विट्जरलैंड के सदर गी पामेलों के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता अक्टूबर में यूरोपीय आज़ाद तिजारती अंजुमन के साथ तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे का नफाज तारीखी रहा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए बाजार तक रसाई को बढ़ाने और सरमायाकारी में मजीद सहूलत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इसी वक्त में भारत बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और खुराक को डिब्बाबंद करने जैसे अहम शोबों में स्विट्जरलैंड की जानिब से नई सरमायाकारी को रागिब करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सदर गी पामेलों से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत EFTA TEPA के वादे सिलसिले में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी को मुस्तहकम करने के खातिर सदर पामेलों की कोशिशों की सताइश की। इससे कबल स्विट्जरलैंड के सदर ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाय अकीदत नजर किए। सदर पामेला आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर मुर्मू स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब के एजाज में एक सरकारी जियाफत की भी मेजबानी करेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के मुआहदे की सताइश की और कहा है कि ये तिजारती मुआहदों से मुतालिक मुजाकरात और उन्हें हतमी शक्ल देने के हवाले से भारत के तरीकाकार को उजागर करता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख लीडर्स मीटिंग से खिताब करते हुए मुतरमा सीतारमन ने कहा कि इस मुआहदे को बजा तौर पर तमाम मुआहदों की असल करार दिया गया है। इस मुआहदे में तकरीबन 2 अरब अफराद की आबादी रखने वाली मईशतें शामिल हैं जो मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 1/4 GDP की नुमाइंदगी करती हैं। वजीर खजाना ने कहा कि यह मुआहदा दोनों फरीकों को एक दूसरे के बाजारों तक मुकम्मल रसाई फराहम करता है और इस बात को भी यकीनी बनाता है कि मुसाबकती सलाहियत मुतासिर ना हो। उन्होंने बताया कि भारत ने इस मुआहदे के तहत 92.5% टैरिफ लाइंस खोल दी हैं जो तिजारती मालियत के लिहाज से तकरीबन 97% तिजारत का अहाता करती हैं। इस मौके पर फ्रांस के यूरोप और उमूर खारजा की वजारत में यूरोपीय उमूर के वजीर नुमाइंदा बिन्यामिन हद्दाद ने कहा कि भारत यूरोपीय आजाद तिजारती मुआहदा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत को 2 गुना करने का मौका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए मुजाकरात अभी जारी हैं और उन्हें अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई है। आज नई दिल्ली में म्यूनिख लीडरों की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए मुहतरमा सीतारमन ने बताया कि दोनों मुल्क एक अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से

0: देश सेवा के मंत्र पर और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नोएडा बैन अलावामी हवाई अड्डा किस तरह उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुल्क की तरक्की की तस्वीर बदल रहा है।
1: नोएडा बैन अलावामी हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्टों में से एक है। इसका पहला मरहला सरकारी और निजी शराकतदारी PPP मॉडल के तहत तकरीबन 11,200 करोड़ रुपए की मजमूई सरमायाकारी से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा तरक्कियाफ्ता उत्तर प्रदेश और विकसित भारत बनाने की मुहिम में एक नए बाब का आगाज है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
1: पहले मरहले में हवाई अड्डे में सालाना 1,20,00,000 मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश होगी। ये हवाई अड्डा मुल्क के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अलाक़वामी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की समत एक अहम कदम है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
0: अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने एक कश्ती पर हमला किया है जिसके बारे में यह शुबा था कि वो कैरेबियाई समंदर में मनुष्यात की स्मगलिंग में मुलव्वस थी। इसमें 4 अफराद हलाक हो गए। लातिनी अमरीका में मुबैना तौर पर मनुष्यात को गैर कानूनी तरीके से लाने ले जाने के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जारी मुहिम के तहत कल यह हमला किया गया। अमरीकी जनूबी कमान के मुताबिक इस कश्ती को स्मगलिंग के रास्ते में निशाना बनाया गया। ताहम फौज ने इस बारे में शवाहिद फराहम नहीं किए कि कश्ती मनुष्यात ले जा रही थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने के लिए मौसम साजगार रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि कल तक उत्तराखंड, तेलंगाना, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में CM यूथ कॉन्क्लेव 2026 का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद आला तालीम का महकमा कर रहा है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब में 20,000 से ज्यादा नौजवानों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का असल मकसद नौजवानों में हुनरमंदी, नए नजरियात और रोजगार के मौके को फरोग देना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की माली पॉलिसी कमेटी ने अपनी 3 रोजा मीटिंग आज मुंबई में शुरू की। मगरबी एशिया में ताजा कशीदगी, खाम तेल की बढ़ती कीमतों और खुराक की महंगाई पर तशवीश के दौरान RBI पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के सदर गी पामेलों के साथ दूतरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तजारत सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल भरोसा सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद तजारती माहदे की सताइश की। अमरीकी फौज ने कहा है कि कैरेबियाई समंदर में मुबैना ड्रग स्मगलिंग से वाबस्ता एक कश्ती पर ताजा हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं। और भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
3: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
2: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
3: Mr. Modi said at the same time India will attract new Swiss investments in important sectors such as biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability. The Prime Minister said through these initiatives, the two nations will work together to develop trusted supply chains and reliable solutions for the entire world.
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
3: Swiss President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. The visiting dignitary was accorded a ceremonial welcome at the forecourts of Rashtrapati Bhavan. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the US-India trade deal negotiations are still ongoing and yet to be finalized. Speaking at the Munich leaders' meeting, Ms. Sitharaman said both sides have reached a plateau. She described that the agreement under discussion as a hard and rigorously negotiated one. The minister said the trade balance is very much in India's favor. Ms. Sitharaman said the negotiations used to be the only platform through which countries could highlight the discrepancies.
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
3: The finance minister hailed India-European Union free trade deal, saying it reflects India.

0: निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
3: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
4: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
3: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
5: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
3: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी

0: देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार। नाम है एक ही कलाकार। एक ही कलाकार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आज हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे चेहरे को आपके बीच लेकर आए हैं जिसकी मुस्कान, जिसकी अदाकारी आज भी सबके दिल में बसी हुई है। जी हाँ, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी अदाकारी सब कुछ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो आज की हमारी जो ये कलाकार हैं, जो सितारे हैं, ये भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 70 के दशक के आखिरी वर्षों में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और बहुत कम समय में बड़े सितारों के साथ अपनी पहचान बनाई। अब ये सितारा कौन है ये वो तो आप गीत सुनकर पहचान ही जाएंगे, और जब आप पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेजना होता है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल आपको हम लता जी की आवाज में ये गीत सुनवा रहे हैं। पहचानिए कि आज हम कौन सा सितारा आपके लिए लेकर आए हैं।

तो इस गीत के बाद तो आप समझ ही गए कि आज हम आपके लिए कौन सा सितारा लेकर आए हैं। जी हाँ, नाम है टीना मुनीम, बाद में यही नाम बना टीना अंबानी। तो आज इस सफर में हम उस दौर को, जब टीना जी ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था और बड़े पर्दे की चमकती हुई नायिका बनी थी, उनकी बात करेंगे, उनकी जीवन से जुड़ी हुई बात करेंगे और उन्हीं के ऊपर फिल्माए ढेर सारे खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे। 11 फरवरी को यानी कि 1957 को मुंबई में जन्मी टीना मुनीम ने मनोरंजन की दुनिया में फिल्मों से पहले मॉडलिंग के रास्ते पर कदम रखा था। 1975 में उन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यही वो दौर था जब उनकी खूबसूरती और कैमरे के सामने सहज व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और फिर उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता और निर्देशक देवानंद साहब से। देवानंद ने टीना में अपनी अगली नायिका को देखा और उन्हें अपनी अगली फिल्म देश परदेश में मौका दिया। साल था 1978, फिल्म थी देश परदेश, निर्देशक और अभिनेता थे देवानंद और टीना मुनीम ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना अभिनय शुरू किया। फिल्म में टीना ने गौरी का किरदार निभाया था और एक नए चेहरे के लिए ये किसी सपने के सच होना जैसा था और टीना ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। तो अब फिलहाल हम आपको जो अगला गीत सुनवा रहे हैं वो हमने इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म सौतन से लिया है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म सौतन से आप सुन रहे थे। तो चलिए बात करते हैं आगे की। हमने आपको बताया कि टीना मुनीम ने किस तरीके से अपने अभिनय के सफ़र की शुरुआत की थी। देवानंद साहब ने उनको मौका दिया था। इसके बाद देवानंद साहब के साथ उनकी जोड़ी ने मनपसंद और लूटमार जैसी फिल्मों से भी दर्शकों का दिल जीता। लूटमार जो कि 1980 में आई थी और इसका निर्देशन भी देवानंद ने ही किया था। टीना मुनीम का जो फिल्मी सफ़र था वो ऐसे दौर में शुरू हुआ जब हिंदी फिल्मों में संगीत की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। फिल्में सिर्फ कहानी और सितारों के कारण नहीं चलती थी बल्कि उनके गीत भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते थे। टीना पर फिल्माए गए गीतों में रोमांस था, चंचलता और 80 के दशक की खास फिल्मी रंगत दिखाई देती है। उनकी जो फिल्में थीं जिनमें देश परदेश, मनपसंद, लूटमार, कर्ज, 50-50, सौतन, पुकार, बड़े दिल वाले, युद्ध, आखिर क्यों, अधिकार, मुकद्दर का सिकंदर, इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए और दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। साल 1980 में याद कीजिए, उस फिल्म का नाम था कर्ज। टीना मुनीम के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है और इस फिल्म में उनके साथ ही ऋषि कपूर। फिल्म की कहानी, संगीत और पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिलहाल अगला जो गीत हमने लिया है वो दीदारे यार, उनकी एक खूबसूरत सी फिल्म थी, उससे लिया है। इस गीत को भी आप सुनिएगा।

मुनीम के करियर में एक और महत्वपूर्ण नाम रहा, वो थी राजेश खन्ना। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें सौतन, आखिर क्यों, बेवफाई, अलग अलग और दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोजेक्शन भी शामिल रहे थे। चीना और राजेश खन्ना की जोड़ी 80 के दशक के जो दर्शक थे उनके बीच काफी चर्चित थी। राजेश खन्ना उस समय हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय सितारों में से एक थे और उनके साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। चीना ने उनके साथ रोमांचिक और पारिवारिक दोनों तरीके की भूमिकाएं निभाई। वहीं देव आनंद साहब के साथ भी जो चीना का संबंध था वो केवल फिल्मों से ही नहीं था। देव आनंद की फिल्म बुलेट के निर्माण के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और बाद में देव आनंद ने चीना को अपनी फिल्मों में नायिका के रूप में लिया, यानी कि पर्दे पर चीना की पहली बड़ी शुरुआत से पहले ही उनकी मुलाकात उस इंसान से हो चुकी थी जिसने आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया था।

जी हाँ, टीना जी की यही अदायगी थी जो उनको इतने ज्यादा प्यार लोगों का दिलाया उन्होंने। उनकी जो सादगी थी, उनकी बहुत ज्यादा बनावटी अंदाज उनका नहीं था, और एक सहज और सादगी भरे अंदाज में उन्होंने लोगों के बीच एक अलग ही आकर्षण पैदा किया था। उनका शांत चेहरा, कैमरे के सामने उनका एक आत्मविश्वास, ये सब उन्हें 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक की यादगार अभिनेत्रियों में जगह दिलवाने में कामयाब रहा। एक कलाकार का सफर हमेशा एक जैसा नहीं होता। टीना ने भी एक समय फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन का अध्ययन किया और बाद के वर्षों में उन्होंने कला, संस्कृति, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। उनका फिल्मी करियर 1978 से शुरू होकर लगभग एक दशक से अधिक समय तक दर्शक के सामने रहा। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था जिगरवाला, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी, और 1991 के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। टीना मुनीम ने उद्योगपति अनिल अंबानी से विवाह किया और उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन फिल्मों से हटकर सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों की ओर अधिक केंद्रित हुआ। आज उन्हें टीना अंबानी के नाम से जाना जाता है। कला, संस्कृति, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका का एक अलग ही योगदान है।

बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ केंट से दिग्दर्शन कविता गौर हमें सुन रहे हैं। सुरेंद्र खुराना जी निर्मलता नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास गुरमीत सिंह मीटा जो कि साउथ एक्सटेंशन से हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का है। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना डब्बू चैतन्य चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशो जी हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस पिंकी लवली आरती जी हमें सुन रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं। बाबू शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से पोचियाल कला दुर्ग से हमें संजय कुमार साहू और सुजाता जी सुन रहे हैं। अगला संदेश गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता गीता का है। और इसके बाद पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगरेजा पूनम जी का आया है। पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा कतरेंगी भाटापारा से हैं। मेहर अरोड़ा ममता जी पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं। ग्राम नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश जो है ये दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी का दोबारा आया है। नलवेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नोहान का निर्मला जी और विशाल जी हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शहनवास पर सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन और अपार जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश संदीप मक्कर जी का जालंधर से हमारे पास पहुंचा है। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो जी हमारे साथ हैं। अजीत भापसर जी प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या जी के साथ हमें सुन रहे हैं। सोनसिंह गिल दलजी जी गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।

नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी जी हमारे साथ सोहेल हसन जी के साथ मरहरा दरवाजा एटा से जुड़े हुए हैं और ये संदेश हमारे पास फारूक अली जी का आया है।

0: सुनिए,
1: कहिए कहिए,
0: सुनिए सुनिए,
1: कहिए कहिए,
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: जी हाँ, आज हमने याद किया उस अभिनेत्री को जिसने 70 और 80 के दशक के हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरत मौजूदगी दर्ज कराई। एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही आंखों के सामने आती है 70 के दशक की ताजगी, 80 के दशक की फिल्मी चमक और देव आनंद का अंदाज, ऋषि कपूर का रोमांस, राजेश खन्ना का स्टारडम और हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की वो रंगीन दुनिया। सिनेमा की रील आगे बढ़ती है, किरदार बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा अपनी जगह बनाते हैं और चीना मुनीम जी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम को जरूर पसंद आया होगा। आपको कहीं जाना नहीं है, 3 बजे मैं चीनी मेलोडीज लेकर आपके बीच होंगी प्रीति त्यागी। फिलहाल इस सब प्रोग्राम यानी एक कलाकार से मुझे यानी अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। परसों यानी 7 तारीख को एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ है आप सभी के एक और पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज का। तो दोस्तों, मैटिनी मेलेडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज यानी कि हमारे वो गोल्डन एरा के सॉन्ग्स हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छिपे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने उस छिपे हुए दरवाजे को खोलते हैं और उसमें से निकलते हैं वो खूबसूरत प्यारे मीठे गीत। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ, बाकी का सफर बाद में।

जी दोस्तों, बिल्कुल बाहर आई और हमारे दिल में भी कलियां खिल गईं, क्योंकि जो खूबसूरत से गीत हैं वो हमारे दिल में निकलने शुरू हो गए कि ये गीत भी हमें पसंद है। और जब भी हम गोल्डन इरा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है 50 के दशक का वो दौर, जिस वक्त में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हुआ करती थी और उसके जो गीत हैं वो ऐसे हुआ करते थे कि हमारे दिलों को रंगीन कर देते थे। और एकदम से वो इतनी खूबसूरती के साथ शब्दों को बयां करते थे, और हर गीत का, हर शब्द का कुछ ना कुछ मायने होता था। हर शब्द, हर गीत पूरी की पूरी एक कहानी अपने अंदर समेटे होता था। जी हाँ दोस्तों, यही है वो स्वर्णिम काल, यानी कि वो गोल्डन इरा, जब ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर जिंदगी के रंग उकेरे जाते थे। और जो सिनेमा होता था वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता था, बल्कि भारत के नए सपने, संघर्ष, हर चीज़ को वो बारीकी के साथ दिखाया करता था। तो चलिए, सफ़र हमारा आगे और भी चलेगा, लेकिन उससे पहले अभी हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत फिल्म आ से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा की, और अगर 50 के दशक की हम बात करते हैं तो उस टाइम में जो तीन ऐसे बड़े बड़े पिलर थे हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, जिनके भरोसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई थी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राज कपूर साहब, दिलीप कुमार और देवानंद। ये वो तीनों पिलर, ये तीनों स्तंभ थे जिनके ऊपर पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई थी। जहाँ एक तरफ राज कपूर साहब थे जिन्होंने आवारा, श्री जासूबीज जैसी फिल्में बनाई, और उसमें चार्ली चैपलिन जैसा जो एक अंदाज, एक तरीका उन्होंने अपनाया, और उन किरदारों में वो समाज की सच्चाइयों को दिखाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब, जिनकी देवदास, नया दौर जैसी फिल्मों ने एक्टिंग के नए सेट, नए रूल सेट किए। वहीं तीसरी तरफ अपने खास अंदाज, अपनी खास स्टाइल, अपने खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले देवानंद साहब थे, जो कि बाजी, सीआईडी जैसी फिल्मों से एक नया दौर लेकर आए। और अगर हम उस दौर की बात करें और उनके बारे में जिक्र ना हो, तो वाकई में जो हमारी अगर हमारा हम फिल्मी सफर की बात करें तो वो सफर अधूरा रहेगा। तो हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास में भी उस वक्त के कोई गीत, कुछ बातें, कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि दिल में कुछ खास स्थान रखते हैं, कुछ खास जगह रखते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और तरीका क्या है वो तो आपको मालूम ही है। आप हम तक भेज सकते हैं अपने संदेश ईमेल के जरिए, और हमारी मेल आईडी आपको मालूम ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com पर हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना एक ही रास्ता फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत आशा जी की आवाज़ में, है ना? कितना खूबसूरत गीत। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 1950 के दशक की, तो अगर उस 50 के दशक के हम संगीत को देखें और उस संगीत को देखकर कहें कि भाई ये युग तो वाकई में गोल्डन पीरियड था, तो बिल्कुल

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, आशा जी, गीता दत्त, तलत महमूद जैसी आवाज़ों ने उस दौर की फिल्मों में जान डाल दी। जी हाँ दोस्तों, ये जो खूबसूरत सफ़र हमारा गोल्डन पीरियड का चल रहा है, उसी में अपने सफ़र को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म आन से।

तो अन फिल्म से आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना। वैसे आपको मालूम है ये जो गीत है इसको तैयार किया था संगीतकार नौशाद साहब ने। और अन भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके बैकग्राउंड स्कोर और उसके गानों की रिकॉर्डिंग के लिए 35 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया गया था। और इस गाने के म्यूजिक अरेंजमेंट में वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात यह कि जो आन फिल्म जिसका गीत अभी आपने सुना वो भारत की पहली टेक्नीकलर फिल्मों में से एक थी। और यहाँ तक कि नौशाद साहब

एक्टिंग के साथ क्या ही खूब, क्या ही जबरदस्त लगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने सफर में, अगले सफर पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत से संदेश जो कि हम तक भेजे हैं हमारे सभी श्रोताओं ने। और ये संदेश हमारे पास आया, इसको भेजने वाले हैं फारूक अली खान जी। ये हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो सितारा, रेडियो लिसनर क्लब से, और लिखते हैं कि हम अलग अलग जगह पर आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश आया है बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशो रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनागर कोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, बेबी आराध्या हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से। और ये एक बार फिर से हम तक संदेश आया तुलसी मस्कीन जी का, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशव रुदान खुराना का हमारे साथ एक बार और संदेश आया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के अगले सफर पर और सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

जी दोस्तों, धुन फिल्म से अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत लता जी और हेमंत जी की आवाज़ में। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें आज 1950 के दशक के उस जादुई दौर की गलियों में हम घूम रहे थे, जहां दिलीप साहब की वो रौबदार अदाकारी थी, रवि साहब के खूबसूरत सुरों का तूफान था और नौशाद साहब की धुनों की भव्यता, या कहें कि जितनी भी हमारे उस वक्त की खूबसूरत

संगीतकार थे, गायक थे, उन सब की गायकी उनके सुरों में हम घूम रहे थे, उन गलियों में घूम रहे थे। और अब ये सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। आप सभी के जो पसंद के नगमे हैं वो ज़रूर आप हमारे साथ अगली बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मुझे यानी प्रीति को सिनेमा के उस सुनहरे पन्नों से कुछ जो हम आगे आए थे उसको वहीं ख़त्म करने की अनुमति दीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप मुस्कराते रहें, गुनगुनाते रहें, सुनते रहें आप सभी का पसंदीदा शो मैटिनी मेलेडीज़। और मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 3:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम हम सफ़र। सामईन, जब से ये कायनात वजूद में आई है तब से ये मुसलसल गर्दिश में है और शायद ये आइंदा भी इसी तरह रक्सां रहे और सितारों, सैयारों और इस दुनिया में इसी तरह पहम रवानी बाकी रहे। दुनिया में जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये कारवां आगे और आगे बढ़ता रहे। गरज कायनात हो या जिंदगी, सब सफर में है। जिंदगी के सफर में हम तन्हा नहीं हैं, बहुत से हम सफर हमारे कदम ब कदम साथ में हैं और हयात तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। इसी हयात के किसी मोड़ पर कोई ऐसा शरीक सफर भी मिल जाता है जिसे हम शरीक हयात कहते हैं और जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर दौड़ने लगती है। इसमें मुख्तलिफ पड़ाव आते हैं जो तजर्बात की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। समीन, आज हमने प्रोग्राम हम सफ़र में प्रोफेसर खालिद महमूद और उनकी शरीक हयात प्रोफेसर तस्नीम फातिमा को दावत दी है। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शुएब रजा खान, आइए सुनते हैं।
1: मेरे साथ इस स्टूडियो में इस वक्त दो बड़ी शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। एक हैं प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा, जो कि साबिक प्रो वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और साबिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज ओम्बेट्स पर्सन जामिया मिल्लिया इस्लामिया।

0: और साथ ही उनके शौहर हमारे साथ प्रोफेसर खालिद महमूद साहब हैं। मैं समझता हूं कि उनके तारुफ के लिए सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। आपके इतने सारे काम हैं, आपने 40 साल से ज्यादा जामिया में दर्स व तदरीस का काम किया है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं, बड़े बड़े इनामात और इकरामात से आपको दोनों का खैर मकदम करते हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिब, आपका ताल्लुक किस शहर से, क्या आप दिल्ली की हैं या दिल्ली आप आई और फिर कैसे कैसे आपकी तालीम का सफर शुरू हुआ?
1: असलियत ये है कि हम अयोध्या के एक गांव को बिलोंग करते हैं
0: जी,
1: और हमारे पेरेंट्स हम लोगों की लड़कियों की खास तरीके से पढ़ाई के लिए लखनऊ में रहे। फादर ट्रांसफरेबल पोस्ट पे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इधर उधर जाते रहे
0: जी।
1: लेकिन मेरी माँ और मेरी मोमानी एक साथ अपनी लड़कियों को लेके वहाँ रहती थी। मैंने क्लास वन से लेके करीब करीब पीएचडी तक की पूरी एजुकेशन लखनऊ में ही की, और बीच में बस दो साल हम उन्नाव में भी रहे हैं, वहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते थे। और लखनऊ में पीएचडी करने के दौरान ही मेरा सिलेक्शन बिना पीएचडी कंप्लीट किए हुए कानपुर यूनिवर्सिटी में हो गया था
0: जी,
1: पीपीएन कॉलेज, वहाँ पे भी एक बहुत रिनाउंड कॉलेज था। तो मैंने करीब 4.25 साल तक वहाँ पे पढ़ाया। और फिर वैसे मेरी एक कलीग ने कहा, जब घर से बाहर रह रही हो तो क्यों ना दिल्ली के लिए अप्लाई करो। वो अपना अप्लाई कर रही थी, मेरा भी करवा दिया, जामिया में इंटरव्यू दिया, वो खेल खेल में हो गया और फिर हम जामिया वाले हो गए। लेकिन ये जामिया का वो वक्त था जबकि यहाँ पे बायोसाइंस की शुरुआत ही 1 साल पहले हुई थी, तो हम लोग का डिपार्टमेंट सिर्फ एक कमरे में ही महदूद था।
0: आपके वक्त में बहुत, मैं समझता हूँ कि तालीम देना लड़कियों को बहुत मुश्किल होगा, आपको कोई परेशानी नहीं आई इस तरह की कभी?
1: बस ये कहा जाता था कि अब साइंस पढ़ ली है, छोड़ दो आर्ट साइड पढ़ लो
0: जी। इसकी कोशिश से आप आगे बढ़ी हो, वालिद या वालदा या घर में कोई भाई?
1: भाई फादर तो ज्यादातर ट्रांसफर पे रहते थे
0: जी,
1: तो टोटल डेडिकेशन मेरी माँ का है।
0: माँ का जी।
1: वो अपने खुद ही हर चीज पढ़ाती थी
0: जी
1: हम लोगों को, उसमें कोई कोताही नहीं कि ये इंग्लिश की चीज है, ये हिंदी की चीज है, ये उर्दू की है, या मैथ्स की है, या कुरान शरीफ पढ़वाना, सब चीज वो खुद ही पढ़ाती थी
0: जी।
1: और मैथ्स वैस तो वो इतना सारी चीजें एग्जाम से पहले 2-3 दफा रिवाइज करवा देती थी कि हर चीज सबको आ जाती।
0: फिर जामिया से क्या किया आपने?
1: जामिया से मैंने पढ़ाई कुछ भी नहीं की, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी
0: जी,
1: और जामिया में भी मैं लेक्चरर होकर आ गई। और फिर यहाँ पे मैंने रीडरशिप की, प्रोफेसरशिप की, हेडशिप की,
0: और वाइस चांसलरशिप भी आपकी रही।
1: और यहाँ से लेकिन मुझे बाहर निकलने के मौके बहुत
0: मिले जी,
1: कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, हांगकांग, चाइना, फिलीपीन, मतलब हर करीब करीब मुल्क में जो है
0: कह
1: वो
0: सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड आप घूमिए। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, ये खुशबख्ती है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी गुजारिश पे यहाँ तशरीफ लाए हैं, तबीयत भी खराब है। खालिद महमूद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से और कैसे कैसे आप जामिया?
2: सबसे पहले तो मैं आपका और रेडियो के जो हमारे मेज़बान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा ताल्लुक दरअसल मध्य प्रदेश से है
0: जी,
2: भोपाल के नज़दीक एक छोटी जगह है सरौंज नाम की
0: जी, बहुत मशहूर जगह।
2: अच्छा, वो जो सरौंज है हमारा वतन, वो दरअसल मर्जर से पहले रियासत टोंक का हिस्सा था
0: जी जी,
2: और टोंक राजस्थान में
0: जी,
2: दोनों में बड़ा फासला था। जब दोबारा नए सूबे बने तो टोंक चला गया राजस्थान में, जयपुर के नजदीक है
0: जी,
2: और सरौंज भोपाल। तो मेरी तालीम का आगाज सरौंज में ही हुआ, वहाँ मदारिस से तालीम का आगाज हुआ करता था, तो मैंने भी सबसे पहले मदारिस में तालीम हासिल की, और उर्दू के अलावा फारसी अरबी की शुद्ध भी वहीं हुई और कई फ़ायदे हुए, क्योंकि उर्दू हमारा मुस्तकबिल में जो मौजू मजमून था उर्दू ठहरा, तो वो फारसी और अरबी उसके जो हमारा जो बैकग्राउंड था वो हमारे बड़े काम आया कई अतबार से
0: जी, जी।
2: तो वहाँ तालीम हासिल करने के बाद हायर सेकेंडरी सरौज में किया, और उसके बाद भोपाल हम चले गए। तो भोपाल के दो मशहूर कॉलेज थे, एक तो गवर्नमेंट का हमीदिया कॉलेज, एक सैफिया कॉलेज
0: जी।
2: हमीदिया कॉलेज में भी बड़े बड़े असातिज़ा थे, 1 साल मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की, फिर सैफिया कॉलेज आ गया और अपनी बाकी तालीम बीए

0: और एमए सब और बीएड भी
1: जी
0: सब वो सेफिया कॉलेज में मुकम्मल की। और उसके बाद फिर मेरा दिल्ली में यानी जामिया मिलिया के स्कूल में बल्कि
1: सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
0: हाँ बीएड मैंने कर लिया था। बीएड का जो डिग्री थी वो काम आई और स्कूल में एज ए पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो अब लेक्चरर कहलाता है उसमें हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। स्कूल में कुछ अरसा गुजारा और उसके बाद वहीं रहकर पीएचडी किया। तो जामिया से मैंने सिर्फ पीएचडी किया।
1: अच्छा, उस वक्त पीएचडी हुआ करती थी?
0: पीएचडी हुआ करती थी लेकिन दूसरी और जो एजुकेशन थी हमने भोपाल से हासिल कर ली थी।
1: जी जी।
0: तो फिर फौरन ही हम वहाँ आ गए शोबे उर्दू में। फिर हमने वहाँ पर काफी तवील अरसा गुजारा। कुल मैंने 40 साल जामिया मिलिया इस्लामिया
1: दरसो तदरीस
0: गुजारे और उसके बाद ये कि वहाँ रहकर मुझे बहुत फायदा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जामिया आने से यानी एक तरीके से मुझे बहुत बड़ा वसी मैदान मिला। उर्दू से मेरा ताल्लुक तो था ही, लिखता पढ़ता भी रहता था लेकिन जामिया का मैं बड़ा एहसान मंद हूँ, सच बात है
1: जी।
0: और उर्दू से मुझे इश्क था, वो भी काम आया।
1: हमें जैसा मालूम है आप शोबे उर्दू के सदर भी रहे और इसके अलावा आपको उर्दू एकेडमी, साहित्य एकेडमी, उर्दू एकेडमी में वाइस चेयरमैन रहे, साहित्य एकेडमी से आपको अवार्ड मिला है।
0: सब ये कि दिल्ली आने के बाद
1: कितने ऐसे तालिबे इल्म होंगे जिनको आपने पीएचडी कराई होगी? एक अंदाज़
0: पीएचडी तक वैसे तालिबे इल्म की तादाद तो 40 साल में अगर मैं कहूँ कि हजारों हो सकती है तो वो भी गलत नहीं होगा। और हमारे पढ़ाई में तालिबे इल्म बहुत सारे प्रोफेसर बने, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हुए सारी दुनिया में। चूंकि हम दुनिया में जब कहीं जाते हैं तो वो जामिया के तालिबे इल्म मिलते हैं और टूट कर मिलते हैं। तो ये जो जामिया से हमने जो कुछ सीखा, जामिया ने हमें जो इज्जत एहतराम दिया वो हमें बड़े काम आया। फिर हमने वहाँ पर भी जामिया के सदर शोबे उर्दू के हैसियत से उसके लिए भी हमने कुछ काम किए। और
1: अपने सामीन को बता दें आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, साथ में नकाद हैं और अच्छी किताबें हैं आपकी। कितनी किताबों की तादाद होगी?
0: मेरी किताबों तो तकरीबन 25-30
1: किताबें हैं। अच्छा तस्नीम फातिमा साहिबा, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, शादी किस तरीके से हुई आपकी?
2: वो मैं इत्तेफाक ही कह दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक साहब पीएचडी कर रहे थे
1: जी,
2: एज ए टीचर फेलो
1: जी जी,
2: डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब, और मैं अपने डिपार्टमेंट में कर रही थी
1: जी।
2: मेरी कुछ फ्रेंड्स फिजिक्स डिपार्टमेंट,
1: ये उर्दू और साइंस का जो मेल है
2: उनका पहला अपॉइंटमेंट जो है वो भोपाल में हो गया
1: जी,
2: वो भी सैफिया कॉलेज में
1: जी।
2: तो
1: जी,
2: वो इन लोगों से वाकिफ हो गए
1: खाली साहब से।
2: खाली साहब इत्तेफाक से जब मैं दिल्ली में आई तो वो भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में जामिया में आ गए, तो उन्होंने ही जो है दोनों को मिलवाने का काम कर दिया,
1: ब्रिज का काम,
2: ब्रिज का काम कर दिया।
1: तो फिर शादी हो गई आपकी?
2: शादी जो है वो काफी लेट हुई हमारी शादी, 98 में।
1: और उसके बाद जो खालिद साहब हैं, जाहिर सी बात है आप दोनों मसरूफ तरीन शख्सियात हैं, दोनों को यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां हैं, तो कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत आई हो जिंदगी को चलाने में आगे? जहाँ तक मुझे मालूम है एक साहबजादी हैं आपकी, उनकी शादी हो चुकी है।
2: इत्तेफाक की बात ये है कि ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेन चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट
1: जी,
2: तो वो दोनों लोग आराम से कर लेते थे और हर काम हो जाते थे।
1: आप तो चूंकि उर्दू से शायद इतना ताल्लुक नहीं है, आपकी माजी जबान उर्दू है, जो खालिद साहब के कारनामे हैं, किताबें हैं, तनकीद है, शायरी है, उसमें कभी दाद आपने दी? पहली नकाद आप हैं? नहीं,
2: मैं उनकी चीजों को पढ़ तो लेती हूँ उर्दू
1: जी जी,
2: तो उसमें क्रिटिसाइज कर देती हूँ।
1: अच्छा, शुरू में?
2: अभी भी कर देती हूँ,
1: अभी भी करती
2: हूँ। और उनकी जो नई बुक्स जितनी भी आती हैं सबका कवर पेज मैं ही बनवाती हूँ।
1: क्या बात, तो खालिद साहब की तो बड़ी मदद होती है, पहले ही तनकीद घर से ही शुरू हो जाती है।
0: आपने बिल्कुल शेख साहब से ही कहा, मैं शायद दुनिया के खुशनसीब लोगों में मैं अपना शुमार करता हूँ, क्योंकि खुशनसीबी का ताल्लुक घर से भी है। अगर आपके कोई खातून अहलिया जो आपके साथ जिंदगी बसर हो रही है 24 घंटे की, अगर वो एक ऐसी शख्सियत हो जो आपको पूरी तरीके से आप उससे मुतमिन या आप उसको मुतमिन कर सके, तो ये जिंदगी एक को जन्नत बनाने का घर जन्नत हो जाती है। मेरा घर इस एतबार से वाकई जन्नत है,
1: जन्नत है।
0: और जो लोग मेरे घर से वाकिफ हैं वो भी इसका एतराफ करेंगे और इसका ताहिद करेंगे। तो हमारी हमें फख्र है कि
1: आप तो बहुत मेहमान नवाज हैं, मुझे मालूम है।
0: तो दरअसल हमारे वालिद कहा करते थे कि आपकी दावत तो मेहमान करता है, जब अगर कोई मेहमान नहीं है, आपके घर में शाम हो गई है, कोई चीज़ रखी हुई है, बीवी पूछती है क्या पकाएं, क्या रखा है, जो रखा है चलो उसी को खा भी लेते हैं, जैसे ही मेहमान आया तो वो चीजें इजाफा होने शुरू हो जाती है। अब ये बताइए कि हम दावत कर रहे हैं या वो हमारी दावत कर रहे हैं, तो

0: तो हमारी बीवी जो है, मैं तो वाकई मैं यानी अलान कहता हूँ ये बात कि बहुत कम लोगों को ऐसी खवातीन या खातून या बीवी नसीब होगी जैसे हमारी, तो इनकी वजह से ये घर जलना।
1: तो कभी कभी आप खिदमत भी कर दिया करते थे, चाय वाय बना के पिला देते हैं सुबह।
0: चाय बनाने जब सीख जाऊंगा तो बिल्कुल पिलाऊंगा, लेकिन ये मौका ही नहीं देती। ये तो सुबह 6 बजे उठकर जो किचन में आती है तो 8-9 बजे सारा काम मुकम्मल हो चुका होता है। अच्छा, चाय का मुझे कोई शौक नहीं है, दो चीजों का मुझे शौक नहीं है सभी जानते हैं, पीने में चाय और खाने में दाल, ये दोनों चीजें मेरे लिए। तो हमारी बीवी जो है हर चीज अच्छा पकाती है माशाल्लाह, और लखनऊ की तहजीब,
1: अयोध्या और फैजाबाद और लखनऊ का एक जो संगम है,
0: इतना इल्म होते हुए भी
1: जी जी।
0: और यानी जाहिर है कि हर जगह गोट बेल्डलिस्ट रही, मैं तो नहीं रहा, आज भी घर के अंदर बिल्कुल ये उस तरह काम करती है जिस तरह से कि कोई किसी सच यानी ऐसी बीवी को करना चाहिए जिसके जरिए से घर को जन्नत बनाया जा सकता है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि अल्लाह ने मुझे ऐसी खातून नसीब की, ये बात है।
1: आपको मैम कोई शिकायत सर से या कोई
2: ऐसी कोई शिकायत नहीं?
1: जो बात बताई उन्होंने कि आपकी वजह से घर जन्नत है, तो कहा जाता है अगर शौहर अच्छा है तब भी घर जन्नत है और बीवी अच्छी है तब भी घर जन्नत है।
2: देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है,
1: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वो मेरे किसी भी काम में किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करते, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो
1: जी,
2: चाहे घर का मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, बल्कि और सपोर्टिव है। यहाँ तक मेरी जो पहली किताब आ रही थी
1: जी
2: शादी के कुछ ही दिनों के बाद में, तो उसमें कुछ पैसे लगने थे, पर तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ और इस किताब को छप जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो मेरी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो पहली बुक आई है वही है।
1: कितनी किताबें होंगी आपकी अपनी इस पे इन्वायरमेंटल साइंस?
2: असल में हम लोगों का इंफेसिस ज्यादा जो है वो रिसर्च के ऊपर है,
1: रिसर्च के।
2: तो हमारे पब्लिकेशन जो हैं वो मोर देन 150 हैं।
1: 150?
2: हाँ।
1: सब इंटरनेशनल आपके रिसर्च पेपर हैं या कितने ऐसे तालिबे होंगे जिन्होंने आपसे इस्तेफादा किया है?
2: भाई पीएचडी जिन्होंने किया है डॉक्टरेट वो तो मोर देन 50 हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ एमएससी बाय डिसर्टेशन होता है तो उसकी थीसिस वाले लोग जो हैं मोर देन 500 होंगे, क्योंकि हर साल उनका जो एक ग्रुप होता है।
1: और आपने मुख्तलिफ ममालिक में जाके प्रेजेंटेशन दिया और विजिटिंग प्रोफेसर रही, ज्यादा आपने बताया जर्मनी और तो वहाँ भी आप अपने फील्ड से मुतालिक?
2: हाँ, हम अपने ही फील्ड से रिलेटेड सारा काम करते थे और पहली जो हमको वर्क करने की रिसर्च करने की फैसिलिटी मिली वो मिली जर्मनी में। हमने यहाँ अप्लाई किया इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में जिसका ऑफिस आईटीओ पे है
1: जी,
2: और वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ तो हम एक्सचेंज ऑफ साइंटिस्ट प्रोग्राम में जर्मनी गए और मैंने वहां पे 4 महीने काम किया। उससे पहले बल्कि हमारा सिलेक्शन जो है वो जब बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में नया नया शुरू हो रहा था
1: जी,
2: तो 3 फेजेस में शुरू हुआ। एक तो ये कि जितने लोग कुछ कर सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेंड किया जाए और फिर बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए, बाहर से बुला के साइंटिस्ट को बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे हमको एक इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो हम उन कैटेगरी के थे जिनको बायोटेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई जबकि हम बॉटनी के थे। तो हमारा सिलेक्शन हुआ 1 साल इंडिया में रह के ही पहले रिसर्च करने का, तो हम 1 साल मैसूर में रहे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। और जो एल्गी थी जिसके ऊपर काम किया गया वो एल्गी लाई गई थी यहाँ पे इंडिया में रिसर्च पर्पज से जर्मनी से, यानी कि लैब टू द फील्ड वर्क का वो प्राइमरी एक्सपेरिमेंट था इंडिया के अंदर। और आजकल हर आपको फार्मेसी पे वो दवा मिल जाएगी इस पारोलाइना के नाम पर।
1: किस मुल्क में आपको तालिब इल्मों के साथ ज्यादा अच्छा लगा? इंडिया तो हमारा अपना कंट्री है, यहाँ अच्छे तालिब इल्म हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तकरीबन कई वर्षों से नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जैसा हम पढ़ते रहते हैं अखबार में।
2: स्टूडेंट्स के साथ मेरा ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो नहीं रहता, क्योंकि हम लोग रिसर्च फील्ड के लैब के, तो सिर्फ लैब के जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे ही मेरा ताल्लुक रहता है। तो उसमें मुझे 1 साल मैं अमेरिका में रही, वहाँ का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट वो सब बहुत अच्छा लगा। जैसे ही आप गए उन्होंने आपको 1-2 दिन के बाद पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में एक लेक्चर दिया, मतलब इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। फिर एक दिन ये लेक्चर हुआ कि रेडियो एक्टिविटी जो चीजें आप इस्तेमाल कर रही हैं वो केमिकल्स या हैजार्ड हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, और यहाँ तक रेडियो लेवल जो है मॉनिटर का जो स्केल होता है 1 मीटर मुझे भी लगा दिया गया कि आपका हर 2 महीने के बाद में वो देखा जाएगा कि एक सर्टेन लेवल से जो अमाउंट रेडियो लेबिलिटी का वो ना निकलने पाए।
1: प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जैसा सामीन को बताया कि आप बहुत अच्छे जहाँ उस्ताद रहे हैं, आज भी हमें

0: करते रहते हैं अपने तालिब इल्मों को, हमें भी करते रहते हैं, बेहतरीन शायर भी हैं और नक्काद तो हैं जैसे मैंने बताया। तो मैं ये चाहूँगा कि खालिद महमूद साहब कुछ अपनी शायरी के बारे में बताएं और कुछ अपने कलाम से भी नवाजें।
1: भाई अब ये बेहतरीन है या नहीं है ये तो फैसला सामीन आप या जिन लोगों ने हम पर लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि लोग अगर हमारी तारीफ में इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी
0: कुछ
1: जिम्मेदारी नहीं
0: अपने
1: है।
0: कलाम से नवाज़
1: मैं बहरहाल तो मैं कुछ अशार अपनी एक दो गजलों के पेश कर देता हूँ। एक बहुत सादा सी गजल है
0: जी।
1: लेकिन जरा गौर करेंगे तो आएगा इसमें, वो मैं सबसे पहले आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसका मतलब है कि वो कहते हैं ये पानी है,
0: वो कहते हैं ये पानी है,
1: घटा कुछ और कहती है,
0: घटा कुछ और कहती है,
1: वो कहते हैं ये पानी है,
0: घटा
1: कुछ और कहती है, उन्हें खुशबू का धोखा है, हवा कुछ और कहती
0: वा,
1: है।
0: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है।
1: उन्हें खुशबू का धोखा है,
0: हवा कुछ और कहती,
1: हवा कुछ और कहती है
0: जी।
1: वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं,
0: क्या बात,
1: वफा के बाब में
0: अहले
1: वफा
0: कुछ और कहते
1: कुछ और कहते हैं, वफा से बात कीजिए तो वफा कुछ
0: और कहती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है।
1: वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं, वफा से बात कीजिए तो
0: वफा कुछ और
1: वफा कुछ और कहती है। सुना है कि सजा दी है जिन्हें, वो सारे मुजरिम थे।
0: वाह,
1: सुना है कि सजा दी है जिन्हें, वो सारे मुजरिम थे, सजा से हमने जब पूछा, सजा कुछ और कहती है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: सजा से हमने जब पूछा,
0: सजा कुछ और,
1: सजा कुछ
0: है।
1: और कहती है, तुम्हारे पास दोनों एक हैं, तुमसे अलग होकर।
0: वाह,
1: तुम्हारे पास दोनों एक हैं, तुमसे अलग होकर, वफा कुछ और कहती है, जफा कुछ और कहती है।
0: क्या बात है,
1: तुम्हारे पास दोनों एक हैं, तुमसे अलग होकर,
0: वफा
1: कुछ और कहती है,
0: जफा
1: कुछ और कहती है। अगर सुर्खी इन आंखों की हिना का अक्स ठहरी है,
0: वाह,
1: अगर सुर्खी इन आंखों की हिना का अक्स ठहरी है, हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। अगर सुर्खी इन आंखों की हिना का अक्स ठहरी है, हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। और उसके बाद उन्होंने देश में आकर फजाओं को झुलस डाला।
0: वाह,
1: उन्होंने देश में आकर
0: फजाओं
1: को झुलस डाला, किसी ने कह दिया जाकर फजा कुछ और कहती है,
0: कहती है।
1: और शेर देखिए कि बतरजे इनकसारी जब वो कहते हैं कि खादिम हूँ, बतरजे इनकसारी जब वो कहते हैं कि खादिम हूँ, तो एक मखदूम खादिम की अना कुछ और कहती है।
0: तस्नीम साहब आप यहाँ भी दाद दे सकते हैं, घर में तो देखी होंगी।
1: मक्ता ये कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद।
0: क्या बात, क्या खूबसूरत मक्ते का मिसरा।
1: कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद, खुदा समझे ये मखलूक खुदा
0: कुछ और कहती है। क्या बात,
1: वफा वो कहते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत मुरस्सा गजल आपने सुनाई, और एक गजल आप, और एक मेरी पसंद के भी एक दो शेर आपको सुनाने होंगे, एक गालिब और एक मीर वाला, जो आपका बड़ा खूबसूरत एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है दोनों एक सज्जन।
1: पहले मैं गालिब, हाँ ये
0: जी, वो अगर सुना दे
1: गालिब और मीर की रदीफ में पेश कर देता हूं,
0: रहता है कि बड़ा कौन है।
1: असल में गालिब और मीर ने बहुत परेशान किया है शायरों को बहुत ज्यादा,
0: बहुत।
1: अच्छा, हम लोग जब जवानी में शेर करते थे तो हर आदमी गालिब और मीर से मुकाबला करता था, आज देखिए ये गालिब से बेहतर गालिब से, लेकिन ये जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि गालिब और मीर तो सब कुछ कह गए,
0: सब कुछ कह,
1: हम तो कुछ अब जगह ही नहीं है
0: उनकी इत्तेबा कर रहे हैं।
1: उनको गुस्सा आया उनके ऊपर गालिब, मैंने गुस्से में कहा कही थी गजल की, घर में रखे गजलों का फन,
0: घर में रखे
1: अपने घर में रखे बैठ गए
0: जी,
1: घर में रखे गजलों का फन, एक गालिब एक मीर, हर शायर के पक्के दुश्मन,
0: एक गालिब एक मीर, बहुत
1: घर में रखे गजलों का फन, एक गालिब एक मीर, हर शायर के पक्के दुश्मन, एक गालिब एक मीर। लहजा वहजा शोखी वोखी सारे उनके खेल।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: लहजा वहजा शोखी वोखी सारे उनके खेल।

0: मुल्क का इस्तेमाल खूबसूरती से
1: दोनों
0: किया।
1: शातिर दोनों पुरफन
0: एक गालिब एक मीर, क्या बात
1: लहजा वहजा शौखी वोखी सारे उनके खेल, दोनों शातिर दोनों पुरफन एक गालिब एक मीर, आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन, खाली करके फन का दामन एक गालिब एक मीर।
0: बहुत खूब,
1: आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन। और शेर देखिए कि बाकी हैं दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, बाकी हैं दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, हर सच्चे शायर की उलझन
0: एक गालिब एक मीर। वाह वाह वाह,
1: बाकी है दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, हर सच्चे शायर की उलझन
0: एक गालिब एक मीर।
1: और एक शेर और देखिए कि पीछे पीछे सारे शायर,
0: पीछे पीछे सारे शायर,
1: वो भी कितने दूर,
0: वो भी कितने दूर,
1: पीछे पीछे सारे शायर वो भी कितने दूर, आगे आगे दो ही सज्जन
0: एक गालिब एक मीर। सज्जन का बहुत जबरदस्त सवाल,
1: पीछे पीछे सारे शायर जी। वो भी कितनी दूर, आगे आगे दो ही सज्जन
0: एक गालिब एक मीर।
1: और उसके बाद अभी मक्ता सुन लीजिए
0: जी इरशाद,
1: उनके आगे कौन जलाए अपना शेर चराग।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: उनके आगे
0: कौन
1: जलाए अपना शेर चराग, खालिद हैं दो सूरज रोशन
0: एक गालिब एक मीर। क्या खूबसूरती से आपने तारीफ की है दोनों,
1: हर शायर के पक्के दुश्मन एक गालिब एक मीर।
0: प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा, इस वक्त आप हमारे साथ हैं और बहुत पॉल्यूशन है और दिल्ली खास तौर से इस मामले में, तो क्या आप कहना चाहेंगी, कैसे इसमें रोकथाम हो सकती है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है?
2: जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है और हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हर इंसान को, हर रहने वाले दिल्ली के दिल्ली वासी को खुद स्टेप लेना पड़ेगा,
0: खुद की जिम्मेदारी है।
2: गवर्नमेंट अपनी तरफ है, उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी हैं, लेकिन खाली कहने से, प्रोग्राम अनाउंस करने से, पैसा रिलीज करने से नहीं होता। जब तक कि हर इंसान खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले लेता है
0: जी।
2: घर के जितने लोग हैं वो अपने घर की लेवल पे देखें कि किस टाइप का पॉल्यूटेंट वहां पे है
0: जी।
2: अगर गार्बेज का सेग्रीगेशन है, उसको अलग अलग करना है और देना है, तो हमको देना पड़ेगा। क्या हम खाद बना सकते हैं उसकी
0: जी।
2: या उसके अंदर हम प्लास्टिक को और मिला के और उसको ऐसा बना दें कि वो गलने ना पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आपको मिल रही है प्लास्टिक की, पॉल्यूशन की, और हर तरफ आपको हर चीज के छोटे छोटे पाउचेस मिल रहे हैं
0: जी।
2: और पाउचेस के ऊपर और अंदर जो प्लास्टिक होती है
0: जी।
2: और जो सिल्वर को टाइप की कोटिंग होती है, वो सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत पॉल्यूटिंग एजेंट की तरह काम
0: हर तरह से पाबंदी उस पे होनी चाहिए।
2: आपको याद होगा कि आप लोग जब छोटे रहे हो तो आप लोगों के घरों में तेल के जो 20-20 लीटर के पीपे आते थे
0: जी जी,
2: या कोई भी बोतल जो थी या कोई भी चीज, वो ज्यादा मंगाने में किफायत और सस्ती वाली बात होती थी।
0: पीपा हमारे समझ लें सामीन कनस्तर को कहते हैं, पीपा पुर्तगीज वर्ड है वैसे जी।
2: और ये है कि जैसे चावल है तो वो 20 किलो की बोरी आ जाएगी, 50 किलो का बोरा आ जाएगा गेहूं का, लेकिन एक एक किलो की चीजों की वो चीजें नहीं होती थी। तो ये सब चीजें जो है, पैकिंग जो होती है प्लास्टिक की, वो कहाँ जा रही है अल्टीमेटली, आपके एनवायरमेंट में जा रही है
0: जी जी।
2: साथ साथ आजकल जो नया कल्चर डेवलप हुआ है, ऑनलाइन फूड सप्लाई, ऑनलाइन एवरीथिंग मटेरियल, तो वो चीजें जो आ रही है वो सब हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे
0: हैं।
2: तो हम ऑनलाइन चीजों को मंगवाना बंद करें और ज्यादा चीजों को इकट्ठा लें, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको
0: आपने बहुत अच्छी दो बातें कही, दोनों तरीके से सेहत आपकी बेहतर रहेगी। पहली बात तो ये कि उन चीजों का, पन्नी का इस्तेमाल करना बंद करें, दूसरे आप घर से निकल ही नहीं रहे हैं, आप घर से निकलेंगे 4 कदम 8 कदम चलेंगे भी तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा, ये बताएं कि क्या ऐसी चीज है खालिद महमूद साहब की जो आपको बहुत पसंद है?
2: बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है
0: जी,
2: सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि डिटरमिंड है, और जो वादा करते हैं
0: उसे पूरा,
2: वादा खिलाफी के बहुत अगेंस्ट है
0: जी, इसका तजर्बा तो हमें भी है,
2: और पंक्चुअलिटी के बहुत कायल है। तो सबसे बड़ी चीजें यही हैं और सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड होकर जिंदगी की चीजें चलती
0: हैं। कहते हैं जवाजी जिंदगी में एक पॉइंट जो होता है उसको लेके पूरी जिंदगी गुजार।

0: साहब आपको क्या पसंद है?
1: मैं पसंद क्या, मुझे तो पूरी की पूरी तस्नीम फातिमा पसंद है
0: जी,
1: इनकी हर अदा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं यानी खफगी होती है ना नकली
0: जी जी
1: करते रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सादगी पसंद
0: जी,
1: लिबास में सादगी, खानों में सादगी, सादगी इनका एक मिजाज है। अच्छा, मेरे अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि एक खास बात यह है जो मुश्तरक भी है कि हम लोग दूसरों के लिए दिल खोल कर खर्च करना, कोई फंक्शन हो किसी के घर का, खानदान का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कर लेते हैं, और अपने खुद के लिए कम किया जाता है, जैसे खाना पीना पहनना वगैरह। इनमें ऐसी खूबियाँ अब क्या बताएं, इतनी लंबी फहरिस्त है
0: लंबी, लेकिन हम अपने सामीन से कहना चाहेंगे एक हिंदी का लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों हजरात हमारे सामीन के सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप उनके लिए एक तहरीक बन सकते हैं जिनकी जिंदगियों में बेवजह की उलझने पैदा कर रखी हैं। आप चाहें तो इतनी बड़ी पोजीशन पर रह के भी अगर इतनी सादगी से रह सकते हैं तो कोई भी फिर सादगी
1: से। मेरी किताबों में इन्होंने हमेशा मदद की
0: जी,
1: मुझे कोऑपरेट करती है हर मामले।
0: तो आप दोनों हजरात इसी तरीके से हमारी दुआ है कि सेहत के साथ आगे ऐसी चलते रहें, जिंदगी को लेके आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया
1: शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप प्रोफेसर खालिद महमूद और उनकी शरीक हयात प्रोफेसर तस्नीम फातिमा की बातचीत सुन रहे थे। आपसे मैं वे गुफ्तगू थे शुएब रजा खान। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम हम सफ़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने को है आपसे कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वक्त हुआ है 4:05 और वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का। थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नीलू पुत्री कमलेश। इनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं कमलकांत उपनिरीक्षक थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। गांव सुराना पुलिस स्टेशन मुरादनगर से मिली सूचना के मुताबिक अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अंकिता पुत्री श्री मुकेश कुमार। इनकी उम्र 14 वर्ष 2 महीने, कद 5 फीट। दाहिने हाथ की कलाई पर ताजा कटे का निशान है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, जांचकर्ता थाना मुरादनगर गाजियाबाद से। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आप देते हैं तो 5,000 रुपये की इनाम राशि रखी गई है। आप संपर्क मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9675598780। नंबर एक बार फिर से नोट करें 9675598780। थाना नंदग्राम गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम हनुफा खातून पुत्री हजरत अली, निवासी झुग्गी सिक रोड निकट JBL स्कूल नंदग्राम गाजियाबाद। इनकी उम्र 18 वर्ष 2 महीने, कद 5 फीट 2 इंच। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक इंद्रेश कुमार, थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना नंदगांव से ही मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम साधना पत्नी विकास

विकास शुक्ला। इनकी उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, बाएं हाथ पर चोट का निशान है। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं श्रीमती कमलेश राजे, पत्नी श्री अरविंद सिंह। ये सैन्य विहार क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन के पास के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष, शरीर की बनावट पतली, कद 5 फीट 4 इंच, दाहिने हाथ पर अखिलेश टैटू गुदा हुआ है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक हरिंद्र कुमार, पुलिस स्टेशन क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद से। नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है प्रियंका पुत्री चंदन। इनकी उम्र 21 वर्ष, का 4 फीट 9 इंच, ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम राकेश रानी, पत्नी विनोद कुमार, निवासी रईसपुर, थाना मधुबन बापूधाम। इनकी उम्र 50 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक शिवानी, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद से। इनके विषय में कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो फोन नंबर भी उपलब्ध है, नंबर नोट कर सकते हैं 9389728299 पर। नंबर एक बार फिर से नोट करें 9389728299। थाना कविनगर से मिली अगली सूचना के मुताबिक ये है नीलम राठौर, पत्नी तुलसीदास राठौर। इनकी उम्र 37 वर्ष, कद 5 फीट। अपनी बहन के घर जाने का कहकर ये घर से गई थी लेकिन वापस नहीं आई। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक सूरेप सिंह, थाना कवीनगर से। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:05 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युव वाणी।

0: कहते हैं एक अच्छा शिक्षक हाथ पकड़कर हमें मंजिल तक नहीं ले जाता, बल्कि हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वो किताबों का ज्ञान ही नहीं, जिंदगी को समझने की नजर भी देता है। आज का दिन उन्हीं शिक्षकों के नाम जो हमारी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाने नहीं, हमें गढ़ने आते हैं।
1: वाह, क्या खूब कहा। इन पंक्तियों को सुनने के बाद मेरे मन में भी कुछ पंक्तियां आई हैं जो मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। जिंदगी की राह में कुछ हाथ हमें थामने के लिए नहीं, हमें खुद चलना सिखाने के लिए बढ़ते हैं। वो शिक्षक ही तो हैं जो हमारे आज को ज्ञान देते हैं और हमारे कल को दिशा। विश्व शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को सादर नमन।
0: वाह, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी का, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, आपकी अपनी होस्ट करिश्मा। और आज इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ हैं मान्या।
1: आज का प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि हमें सोचना, सवाल करना और अपने सपनों पर

0: भरोसा करना सिखाया। और इसी सोच के साथ आज का हमारा सफर होगा एजुकेशन से हेल्थ तक,
1: हेल्थ से यूथ तक,
0: और यूथ से हिस्ट्री तक। आज हम जानेंगे कि युवाओं की हेल्थ के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और 5 अक्टूबर की हिस्ट्री हमें क्या बताती है।
1: पर इससे पहले अब जरा रुक करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, जो बिना कुछ कहे भी भावनाओं को पूरी तरह कहानी के रूप में कह जाता है। तो सुनते हैं ये प्यारा गीत, 2 नैना और 1 कहानी, जिसकी गीतकार हैं आरती मुखर्जी जी, और ये है मासूम फिल्क का गीत।

0: What an incredible song.
1: बिल्कुल मान्या, बट यू नो कि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है हमें पिंक रिबन्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है?
0: हाँ करिश्मा, अक्टूबर दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम है एवरी स्टोरी इज यूनिक एवरी जर्नी मैटर्स, यानी हर व्यक्ति की कहानी अलग है और हर सफर मायने रखता है।
1: और यह अवेयरनेस सिर्फ एक बीमारी के बारे में जानकारी देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है समय पर पहचान, सही डायग्नोसिस, बेहतर ट्रीटमेंट और हर पेशेंट को सपोर्ट देना।
0: लेकिन करिश्मा, ब्रेस्ट कैंसर को पहचाने कैसे?
1: बिल्कुल सही सवाल। तो श्रोताओं, सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट की कुछ एबनॉर्मल सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना सकती हैं। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये सेल्स शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकती हैं।
0: और यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता। इसके अलग अलग टाइप्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
1: बिल्कुल मान्या, इसलिए डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स कैंसर के टाइप, स्टेज और दूसरी मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ट्रीटमेंट तय करते हैं। बट इसके सिम्टम्स क्या हैं?
0: अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी काम आ सकती है। ब्रेस्ट में नई गांठ या असामान्य मोटापन, ब्रेस्ट के आकार या शेप में बदलाव, स्किन में डिम्पलिंग या कोई असामान्य बदलाव, इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, लेकिन एक जरूरी बात, हर गांठ कैंसर नहीं होती।

0: और कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में कोई स्पष्ट सिम्टम भी नहीं होता। इसलिए खुद से निष्कर्ष निकालने के बजाय कोई नया या असामान्य बदलाव दिखे तो डॉक्टर से मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बेहद जरूरी है।
1: यानी घबराना नहीं है, लेकिन टालना भी नहीं है। और सबसे जरूरी, अवेयरनेस को अपने तक सीमित मत रखिएगा। ये जानकारी अपनी माँ, बहन, दोस्त और परिवार की दूसरी महिलाओं तक भी पहुंचाइए।
0: बिल्कुल दोस्तों, अब हमारी बात जिंदगी और हेल्थ से जुड़ी है, तो क्यों ना कुछ पल उस जिंदगी के नाम जिए जाएं।
1: बिल्कुल, अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें जिंदगी को पूरे दिल से अपनाने का एहसास देता है।
0: सुनते हैं ऐ जिंदगी गले लगा ले, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडकर ने, और ये गीत है फिल्म सदमा का।

0: वाह, क्या गीत था! सच में जिंदगी को समझने के साथ साथ उसे गले लगा लेना भी जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टुडे इन हिस्ट्री। क्योंकि तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर भी अपनी जगह बना लेती हैं। 5 अक्टूबर, रानी दुर्गावती का जन्म दिवस।
1: बिल्कुल मान्य। 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में जन्मी रानी दुर्गावती चंदेल वंश से थी। विवाह के बाद वे गोंडवाना की रानी बनी और 1550 में पति दलपत शाह के निधन के बाद शासन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली।
0: उन्होंने एक कुशल प्रशासक और साहसी योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1564 में मुगल सेना के आक्रमण के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध करते हुए 24 जून 1564 को वीरगति प्राप्त की। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व से मिसाल है। और शायद यही संदेश आज के युवाओं के लिए भी है। मुश्किल परिस्थितियां आए तो अपने मूल्यों से समझौता नहीं, बल्कि उनका साहस के साथ सामना करना चाहिए। रानी दुर्गावती जी के जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन।
1: दुर्गा का रूप लिए साहस शौर्य की वह मूरत थी, मुगलों को पराभूत कराती देवी की वह सूरत थी। दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था, उसके दृढ़ व तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था।
0: सचमुच ये कविता रानी दुर्गावती के शौर्य को क्या खूब दर्शाती है। और अब ऐसा ही एक सदाबहार गीत आपके लिए सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज में, छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से।

0: बेहद खूबसूरत, और शायद इसीलिए कुछ पुराने गीत आज भी उतने ही अपने लगते हैं।
1: पर अब एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट का वक्त आ चुका है, जो कि है क्विक बाज।
0: जहां कम समय में मिलेंगी आपको जरूरी और काम की कई बड़ी खबरें।
1: तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट क्विक बाज की ओर, जहां बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की जो युवाओं के करियर, एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स और कल्चर से जुड़ी हैं। सबसे पहले करियर की खास खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय में 7 अक्टूबर को AVASAR 2026 यानी अवसर 2026 प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पस हॉल गेट नंबर 2 में होगा। इसमें 85 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स के साथ एलुमनाई, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट वेबसाइट पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपडेटेड CV की 5 से 6 कॉपीज और वैलिड ID प्रूफ साथ लेके जाना होगा।
0: इसी श्रेणी में अब शिक्षा और AI की दुनिया से FICCI हायर एजुकेशन समिट 2026 जो 8 और 9 अक्टूबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इसमें हायर एजुकेशन, AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
1: विज्ञान और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए वर्ल्ड स्पेस वीक 2026 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला है। इस सप्ताह की थीम है रॉकेट रिवॉल्यूशन। इसका फोकस नए रॉकेट टेक्नोलॉजीज, रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स एंड स्पेस तक बढ़ती पहुंच पर है। देश भर में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हालांकि हर शहर में रजिस्ट्रेशन और टाइमिंग अलग है, इसलिए विद्यार्थी अपने शहर के ऑफिशियल इसरो या वर्ल्ड स्पेस वीक प्रोग्राम की जानकारी देखकर ही रजिस्ट्रेशन करें।
0: इसी श्रेणी में अब थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ी खबर। 12 से 14 अक्टूबर नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 आयोजित होगा। फेस्टिवल में 9 ब्रिक्स मेंबर और पार्टनर कंट्रीज से 100 से अधिक थिएटर प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लेंगे। दर्शकों के लिए परफॉर्मेंसेस के टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध हैं। अलग अलग प्लेस के समय और वेन्यू अलग हैं, इसलिए टिकट बुक करते समय अपनी पसंद की परफॉर्मेंस का टाइमिंग जरूर देख लें। तो ये थी अक्टूबर की कुछ खास खबरें, करियर से एजुकेशन तक, AI से स्पेस साइंस तक और थिएटर से सोशल अवेयरनेस तक। आप भी इन अवसरों का लाभ उठाइए, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन टाइमिंग और एंट्री रिक्वायरमेंट्स जरूर वेरीफाई करें। इसी के साथ अब हम चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: दोस्तों, ये गाना तो वाकई में एकदम दिल को छू जाने वाला था। आज हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, एजुकेशन और टीचर्स के बारे में जाना, पर अब एक बार फिर आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उसकी ओर लौट आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक चेंजेस, पहले के कुछ रेडिएशन एक्सपोजर्स और कुछ रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फैक्टर्स, अल्कोहल जैसे फैक्टर्स भी इसको प्रभावित कर सकते हैं।
1: लेकिन यहाँ WHO की एक महत्वपूर्ण बात है, लगभग 80% से अधिक ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में भी होते हैं जिनमें सेक्स और इंक्रीजिंग एज के अलावा कोई स्पेसिफिक नोन रिस्क फैक्टर नहीं होता। इसलिए ये सोचना कि मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
0: और करिश्मा, पूरी तरह हर ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करना संभव नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जरूर ले सकते हैं।
1: बिल्कुल मान्या, जैसे हेल्दी वेट मेंटेन करना, नियमित फिजिकल एक्टिविटी करना, टोबैको से दूर रहना, अल्कोहल को अवॉइड करना या लिमिट करना, और बैलेंस्ड डाइट लेना, और सबसे जरूरी अपने शरीर में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक रहना।
0: और अगर फैमिली हिस्ट्री या कोई दूसरा रिस्क फैक्टर है, तो अपने डॉक्टर से अपने लिए अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग और मेडिकल एडवाइस के बारे में बात करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है मान्या। दोस्तों, बहुत सीरियस हो गए, अब एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं नीरजा मूवी का सॉन्ग जीते हैं चल।

0: रियली व्हाट अ सॉन्ग। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने बात की हेल्थ की, टीचर्स, करंट अफेयर्स, स्किल्स और उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी को लर्निंग के नाम किया।
1: बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है आज का ये सफर आपको कुछ नई बातें, कुछ नई सोच और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी देकर गया होगा। हमें आपका फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल yuvvani@gmail.com पर जरूर भेज सकते हैं।
0: जी हाँ, आप अपने सुझाव और विचार yuvvaniFeedback@gmail.com yuvvanifeedback@gmail.com पर हमसे साझा कर सकते हैं। एंड विद दैट, इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप टुडेज एपिसोड। लेकिन याद रखिए, हर नया दिन अपने साथ एक नई कहानी, एक नई उम्मीद और कुछ नया सीखने का मौका लेकर आता है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कीप बीइंग योरसेल्फ।
1: तो चलिए, अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, नए जोश और नई कहानियों के साथ।
0: स्टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे पॉजिटिव एंड कीप शाइनिंग।
1: मैं करिश्मा
0: और मैं मान्या आपसे लेते हैं आज के लिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष द्विवेदी।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी युववाणी।
0: डोंट फॉरगेट, कीप रीडिंग, कीप वाइबिंग एंड कीप शाइनिंग।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में अवसर तलाश सकती है। इससे पहले भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पहामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
3: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर आए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को मंजूरी दी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि कल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed several agreements to promote cooperation and collaboration in the fields of transportation technologies, mobility systems and infrastructure. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These pacts were inked following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Later, in a joint press meet, Prime Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries.
2: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
4: ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी वेस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सीबी जॉर्ज सेड Swiss companies can explore opportunities under Make in India through joint production and development defense sector. He said both sides emphasized continued cooperation in sectors like infrastructure, science, technology, space and nuclear energy. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India. Finance Minister Nirmala Sitharaman has hailed India-European Union free trade deal, saying it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that the deal, aptly described as the mother of all deals, covers economies representing around 2 billion people and about one-fourth of global GDP. The finance minister said the US-India trade deal negotiations are still ongoing and yet to get finalized. The Supreme Court today declined to pass an interim order seeking suspension of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over allegations of unilateral decision-making in the Election Commission during the special intensive revision of electoral rules. A bench headed by Chief Justice Surya Kant issued notices to the Centre, the Election Commission and other respondents. The court also observed that it cannot pass an ex parte order solely on the basis of newspaper reports. The Punjab and Haryana High Court today directed the Central Bureau of Investigation or CBI to probe allegations of corruption linked to the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's office and submit a report within 2 months. The court took the decision following allegations made by the Enforcement Directorate in connection with corruption and cash for transfer case involving an officer on special duty to the Chief Minister. The Enforcement Directorate had reportedly sent 3 letters to the Punjab Director General of Police seeking registration of an FIR alleging widespread corruption in government transfers and postings, but state police took no action. The BJP has announced the name of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. Tomorrow is the last day for filing of nominations for the biennial election. Polling for the 10 Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand, along with a by-poll to 1 seat from West Bengal, will be held on the 16th of this month. The 2026 Nobel for Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegman and George Nagel for the discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics, a technique that has transformed the study of the brain. The Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm announced this today. Deisseroth is a professor of bioengineering, psychiatry and behavioral sciences at Stanford University in the US. Hagemann and a German biophysicist studied light-sensitive proteins in microorganisms. Nagel, a German neuroscientist, contributed to the discovery and characterization of microbial opsins and demonstrated their potential as light-controlled ion channels. And that is the end of this news bulletin.
5: दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के बहुत सारे लोकगीत, उपदेश, रागिनी, भजन, ये सभी का संगम लेकर आते हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हम कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे लोकगीत से करेंगे, और उससे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार
1: जी। और सरिता, कहते हैं कि अगर बालम पसंद का हो ना तो उसमें सारे के सारे रंग है ना दिखाई देने लगते हैं, पूरी दुनिया उसी में समा जाती है।
0: तो मतलब जो लोक गीत आप सुनाने वाले वो भी कुछ ऐसे ही धमाकेदार है
1: जी,
0: जिसे सुनकर हमारे जो भाई बहन है वो खुश हो जाएंगे
1: जी। रंगीला मारा बालमा, और कलाकार हैं मंजू शर्मा।

0: तो साथियों, मंजू शर्मा का गाया ये लोकगीत अभी आपको बता रहा था कि बलमा बहुत ही प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। और सरिता कहते हैं कि पुरुष या जो बलमा होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अच्छे और
1: अच्छा
0: एक बहुत अच्छे।
1: अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या औरतें कुछ कम होती है क्या? और अगर हम बात करें नोक झोंक की, तो भाई ये तो हमारे लोकगीत में शुरू से ही सुनाई देती है, और इसकी ना अपनी ही मिठास होती है। अभी देखो ना, कभी सास, कभी ननद की तकरार, कभी अपने बलम से तकरार, इन सब का एक अपना ही आनंद है।
0: जी, कहते हैं ना, एक घर में इतने सारे जो बासन होते हैं, यानी बर्तन होते हैं, जब उन्हें इधर उधर करते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत टकराते हैं, उस आवाज को है ना संगीत बना लेना चाहिए। तो यही बता रही हैं रचना शर्मा।

0: जी हाँ, अगर बात नहीं मानेंगे तो अदालत में दावा हो सकता है।
1: जी हाँ, यही तो है एक औरत की खूबसूरती, ताकत, जो प्यार में कह रही है कि भाई अदालत में दावा करूंगी।
0: जी
1: तो भाई जो अगला हम लोग गीत लेने वाले हैं उसमें भी कुछ
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है, वो भी
0: डिमांड है थोड़ी सी, मतलब मांग की जा रही है। अगर मान जाऊंगी, अगर आप मुझे कंगन शंगन दिलवा दोगे तो फिर इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी
1: भाई।
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होगी।
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि इस गीत में एक ना ग्रामीण नारी के श्रृंगार और उसके मन की जो उमंग है ना वो दिखाई देती है। जैसा कि उसकी जो मांग है भाई वो तो बनता ही है एक
0: जी
1: महिला के लिए कि वो अपनी मांग को अपने पति के सामने जरूर रखे।
0: जी
1: तो क्या कह रही है
0: बबीता चौधरी, तो सुनवाते हैं साथियों आपको ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो साथियों बबीता चौधरी भी अपनी भाव बड़े प्यारे तरीके से रख रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सरिता जी कि उनका जादू चल जाता है।
1: नहीं बिल्कुल, बबीता ने जैसे अपनी शिकायत की कि भाई मेरे हाथों के कंगन ढीले पड़ गए। हाँ तो भाई इंतज़ार में कई बार ऐसा होता है, और आपने जैसे बोला कुछ लोगों का जो असर होता है ऐसा लगता है कि जादू टोना चल गया, तो भाई ऐसा ही कुछ हमारे कार्यक्रम के अंत में ये जो लोकगीत है इसे पूजा शर्मा और
0: अनुराधा शर्मा सुना रही हैं, बता रही हैं कि जादू कैसे होता है, कैसे चलता है।
1: तो आइए लेते हैं आनंद इस लोकगीत का।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा और अनुराधा शर्मा को जो गा रही थी ये प्यारा सा शाम भजन। और इसी के साथ आज का ये लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है खेल और खिलाड़ियों से जुड़े इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं सहयोगी चंद्र आलोक।
3: नमस्कार साथियों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशियाई खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र मणि राजेश की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ शास्त्री से बातचीत। इसके अलावा ईरानी कप पे हम बात करेंगे। WTA चाइना स्मैश भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप पर भी हमारी बातचीत रहेगी।
2: जी बिल्कुल आलोक, जापान के आईची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित 85 पदक लेकर अपना चौथा स्थान कायम रखा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जैसा आपने अभी जिक्र किया, धर्मेंद्र मणि राजेश ने एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है और खास बातचीत की है खेल पत्रकार मोना पार्थ शास्त्री से। तो पेश है ये रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहां से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहां 4 साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत की लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया।

0: बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीवी इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रहीं। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: 19वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से 4था स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें 11वें 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां 6ठा स्थान शायद रह जाएगा। लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया, उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर 4था स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा। लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार 1 ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: हमारे पद

0: लाखों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी। उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
0: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है, और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
1: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष की टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला की टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
0: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
1: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
0: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
1: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
0: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
1: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा, 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए, और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
0: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी

0: काम हो रहा है।
1: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
0: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है।
1: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
0: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी, और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
0: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई, बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
1: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए हैं, और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले, और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें, वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर, लगातार जिनका दबदबा रहा है, वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विद्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
0: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
1: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली, तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी, कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था, और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
0: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
1: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
0: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि खेलों में काफी काम करने की जरूरत है।
1: देखिए हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है हर

0: वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल है उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रासरूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: जी हाँ आलोक, शानदार प्रदर्शन रहा कई खिलाड़ियों का और उनमें 17 साल की तीरंदाज कुमकुम मोहद और पहलवान सुजीत कलकल शामिल हैं। और उनके प्रदर्शन का ये इनाम है कि पहले जसपाल राणा पुरस्कार और राजा रणधीर सिंह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आईची नगोया एशियाई खेलों में किए गए शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने उनका चयन किया है। IOA ने एशियाई खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की है। कुमकुम ने अपने पहले एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। उन्होंने पहले महिला रिकर्व तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। आलोक, अब क्यों ना चाइना स्मैश टेबल टेनिस की बात करें, तो पेश है चंद्रालोक की ये खास रिपोर्ट।
4: टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से प्रेरित होकर के वर्ल्ड टेबल टेनिस ने साल में ग्रैंड स्मैश टूर्नामेंट की एक सीरीज शुरू की। इस सीरीज में साल का आखिरी इवेंट चाइना स्मैश अभी बीजिंग चीन के सेयांग पार्क में चल रहा है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। पुरुष सिंगल्स में मानुष शाह को राउंड ऑफ 64 में क्रोएशिया के तोमिस्लाव पुकार से हार का सामना करना पड़ा। भारत के नंबर वन खिलाड़ी 2-0 से आगे थे। तीसरे गेम में उनके पास मैच खत्म करने का मौका भी था, लेकिन पुकार ने सेट को जीत करके मैच का स्कोर 2-1 कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मैच पांचवें सेट तक चला गया, जिसमें दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी तोमिस्लाव ने दुनिया के 43वें नंबर के खिलाड़ी मानुष शाह को 3-2 से हरा दिया। स्कोर रहा 11-9, 11-4, 12-14, 10-12, 8-11। वही मानव ठक्कर आज फ्रांस के दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी साइमन गोजी के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। महिला सिंगल्स में दुनिया की 53वें नंबर की खिलाड़ी मलिका बत्रा ने शानदार शुरुआत की। राउंड ऑफ 64 के रोमांचक मैच में ब्राजील की दुनिया की 27वें नंबर की खिलाड़ी ब्रूना ताकाहाशी को हराया। मलिका बत्रा ने 2 मैच पॉइंट भी बचाए। मैच का नतीजा रहा 8-11, 11-8, 11-9, 5-11, 12-10। इस जीत के साथ मनिका बत्रा ने ब्रूना ताकाहाशी के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-2 कर लिया है। इससे पहले ब्रूना ताकाहाशी ने 16 अप्रैल को टेबल टेनिस वर्ल्ड कप के एक मैच में मनिका बत्रा को 3-1 से हराया था। सृजा अकुला अपना पहला राउंड मैच चीनी खिलाड़ी से हार गई। पुरुष डबल्स में मानुष शाह और मानव ठक्कर को राउंड ऑफ 32

0: बाय मिला। यह भारतीय जोड़ी अपना अगला मैच चीन और इंग्लैंड के बीच होने वाली जोड़ी के बीच जीतने वाले से खेलेगी। मिक्स डबल्स में एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और पांचवी सीट मानुष शाह और दिया चितले को पिछले राउंड में बाय मिला था और वो कल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मिस्र की जोड़ी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखेंगे।
1: बात अब क्रिकेट की करें और चर्चा ईरानी कप की हो तो शेष भारत ने रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू कश्मीर को 167 रन से हराकर 31वीं बार विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 5 सीजन में तीसरी बार चैंपियन बनी है शेष भारत की टीम। जम्मू और कश्मीर की टीम को अपने घरेलू मैदान पर 289 रन का लक्ष्य मिला था। एक समय जम्मू एवं कश्मीर की टीम ने 3 विकेट पर 89 रन बना लिए थे, लेकिन 22 रन के अंतराल में टीम ने 7 और विकेट गंवा दिए और 111 रन पर आउट हो गई। तेज गेंदबाज मुकेश ने जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी में 33 रन पर 6 विकेट चटकाए। आकाशदीप ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए। जम्मू कश्मीर के लिए शुभम खजूरिया और कामरान इकबाल ही कुछ टिक कर खेल सके। दोनों ओपनरों ने 32-32 रन का योगदान दिया और पहले विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी भी की। शेष भारत ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 278 रन बनाकर 41 रन की बढ़त ली थी। शेष भारत ने दूसरी पारी में 319 रन बनाकर जम्मू कश्मीर को लक्ष्य दिया था 279 का। अगर जम्मू कश्मीर ड्रॉ भी करा लेती तो ट्रॉफी उसके नाम हो जाती। आकाशदीप इंजरी से लौटे हैं, उन्होंने मैच में 6 विकेट लिए। आगामी न्यूजीलैंड दौरे के मद्देनजर उनका यह प्रदर्शन अहम माना जा रहा है। शेष भारत के रविचंद्रन स्मरण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 68 और दूसरी पारी में 135 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। शेष भारत ने 2 साल बाद ईरानी कप जीता है और शेष भारत के कप्तान ऋषभ पंत को जन्मदिन पर टीम का शानदार तोहफा रहा, जिसके लिए उन्होंने टीम को थैंक्स भी कहा। बीसीसीआई की ओर से जारी वीडियो में क्या कहा पंत ने साथियों से, आइए जानते हैं।
2: पिछले 5-7 दिनों में यही बात हो रही थी यार कि लेट्स प्ले फॉर द प्राइड, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट इनिंग में स्पेशली उन्होंने अच्छा बैटिंग करा, ठीक है, फर्स्ट इनिंग लीड ली, बट ड्रेसिंग रूम में जो बात हुई कि वो लोग कुछ भी करें, वी नीड टू फोकस ऑन आर सेल्फ, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम गेम ऐसा चला कि बहुत बारी उनको फेवर हुआ, वेन एवर दे वॉन्टेड विकेट, वेन एवर दे वॉन्टेड रन, बट वन थिंग फॉर श्योर, टेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है, वी डिडंट लेट इट गो, वी जस्ट केप्ट ऑन फाइटिंग विद एवरी इंटेंसिटी वी हैड, वन डे वन ओवर वन बॉल एट अ टाइम, एंड एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे, एंड यू नो फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर नॉट विनिंग, बट वी मेड श्योर दैट वेन वी लीव दिस ग्राउंड पुट आर नेम ऑन द ट्रॉफी एज विनर। या
3: One more thing. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
2: Thanks for the gift.
1: Happy birthday. जी हाँ, पंत का जन्मदिन था और टीम ने उनको जीत का एक शानदार तोहफा दिया शेष भारत के कप्तान को। और अब बात विश्व जूडो चैंपियनशिप की करते हैं और चंद्र आलोक की ये खास रिपोर्ट।
0: यहाँ श्रोताओं, बात करते हैं वर्ल्ड सीनियर जूडो चैंपियनशिप की, जो अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रही है। 93 देशों के 622 जुडाकू वर्ल्ड सीनियर जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं कल के मुकाबले की, जहां मेंस -60 kg वेट क्लास में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हर्ष सिंह, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 83 है, उन्होंने जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ा उलटभेर करते हुए पुरुषों के -60 kg वेट कैटेगरी में शुरुआती राउंड में बेहतर रैंकिंग वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पेड्रो एटून नोटो को, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 40वीं है, वजारी से हराया। हर्ष ने पुरुषों के -60 kg वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहतर रैंकिंग वाले रुस्लान पेल्टो तोरे, जो कि एशियन चैंपियन भी है, को वजारी से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में हर्ष का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 5 यानी कि मेजबान देश अहमद युसीफोव अजरबैजान से था। उनको वहां हार का सामना करना, केवल वो एक कदम दूर थे। अगर वो क्वार्टर फाइनल पहुंचते तो उन्हें जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में रैपचेज खेलने का मौका मिलता। यह श्रोताओं, मैं बताना चाहूंगा कि जूडो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है उनको रैपचेज खेलने का मौका मिलता है, लिहाजा अगर वो रैपचेज मुकाबले जीतते हैं तो उसके बाद अगर सेमीफाइनलिस्ट जो हारते हैं दो, उनके खिलाफ जो है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलने के एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं महिलाओं के -48 kg वेट क्लास में मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन अस्मिता डे को क्रोएशिया की गैब्रियल नार्बोज ने राउंड ऑफ 32 हरा दिया, इस प्रकार उनकी चुनौती समाप्त होगी। आज के मुकाबले की बात करते हैं, -52 किलो वेट क्लास में भारत के लोसान गमत, नुई सियांग चानू और चोपरे श्रद्धा कुडबल का मुकाबला स्पेन की लाइबा संचेज और बुल्गारिया की दिमित्री गैब्रियल से था। दोनों ही भारतीय जो जुडाकू थे, आज उनको हार का सामना करना पड़ा पहले ही राउंड में। इस प्रकार इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों का जो है चुनौती जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में समाप्त हो गया।
1: यहाँ बात करते हैं AFC Under-17 महिला एशियन कप के क्वालिफायर्स की, जहाँ भारत ने इराक को 14-0 से हरा दिया है। अनुष्का ने 5 गोल किए, बारिश के कारण ये मैच बीच में रोकना भी पड़ा था, उस समय भारत 9-0 से लीड कर रहा था। भारत को अगले मैच 8 अक्टूबर को सीरिया और 11 अक्टूबर को मलेशिया से खेलने हैं। मुख्य प्रतियोगिता अगले साल चीन में होगी, जबकि क्वालिफायर्स मलेशिया में हो रहे हैं। और बात भारत ऑस्ट्रेलिया Under-19 दूसरे यूथ टेस्ट की, जो कि अहमदाबाद में चल रहा है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन बनाए, तन्मय ने 32 रन देकर 6 विकेट लिए। 15 ओवर तक भारत ने 2 विकेट पर 38 रन बना लिए थे।
0: यह बात करते हैं बैडमिंटन की, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप चल रही है इस समय, जिसमें जहां से खबर ये आ रही है कि भारत ने अपना पहला मैच जो है अल्जीरिया को 55-16 और 55-8 से जीत लिया है। दूसरा मुकाबला भारत की टीम कल खेलेगी पेरू से, जो मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:30 बजे शुरू होगा।
1: घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को अपने साथी चंद्र आलोक के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर DST।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम्प के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार

0: और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, both nations identified new possibilities for cooperation in military exchanges and defense production. He said they've also agreed to further deepen cooperation in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: सेक्रेटरी वेस्ट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सिबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स।
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: The Supreme Court has clarified that it has not approved any changes to Form 6 being used by the Election Commission during the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. A bench headed by Chief Justice Suryakant said any modification to Form 6 had not been approved by the court and sought records to ascertain who made the changes. Meanwhile, the Apex Court declined to pass an interim order seeking suspension of the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, over allegations of unilateral decision-making in the Election Commission during the SIR of electoral rolls. The court also observed that it cannot pass an ex parte order solely on the basis of newspaper reports. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held tomorrow, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharamapuram in Tamil Nadu, Ratanachavadi in Puducherry and Reji Nagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. 4 new airports will

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदेहल्यां भारत स्विट्जरलैंड शिखर वार्ता संपन्ना। व्यापार संबंधान संप्रवर्धयितुं वैश्विकीं संभरण श्रृंखलां दृढ़यितुं च उभौ देशौ प्रतिबद्धौ इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत यूरोपीय संघ व्यापार संधिः भारतस्य उत्कृष्ट वार्ता कौशलस्य परिचायिका इति वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयस्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य कठोरः समादेशः। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् आधृत्य सीबीआई अन्वेषणस्य अपि समादेशः। अपि च कर्नाटक केरल तमिलनाडु प्रभृति दक्षिण प्रदेशेषु श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः संभाव्यते इति ऋतु विज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्य प्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैंड देशेन सह नवदेहल्याम् अभूतपूर्वः विचार विनिमयः समाचरितः। विदेश मन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस् संस्थाः मेक इन इंडिया इति राष्ट्रिय संकल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस् राष्ट्रपतिः गाई पार्मेलीन् अद्य मन्त्रिमण्डल स्तरीय वार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ TEPA व्यापार सन्धेः प्रथम वार्षिकोत्सव वेलायां समृद्धि शिखर सम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27th-2000 जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने AI शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस् संघस्य राष्ट्रपतिना गाई पार्मेलीन् इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदेहल्याम् औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मन्त्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलीन् इत्यस्य सहृदयता।

0: लङ्घनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं न अर्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यक बहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशय संचयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजनः अक्टूबर 16 दिनांकात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टि परा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामी दिन द्वये मराठवाड़े विदर्भ क्षेत्रेषु च वातावरणं अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। और सरिता बहन, मुझे लग रहा है आप सीधे है ना पैंट से यहीं चली आ रही हो। अरे तुम्हारे हाथ में ये देखो कैसे हैं, हरी हरी सी गोभी है, हरा वाला कद्दू वो भी खीरे जैसा, ओए होए। और ये टमाटर के बच्चे छोटे छोटे से।
1: अरे नहीं बाबा, तुम जरा ध्यान से देखो है क्या मेरे हाथ में
0: जी?
1: ये देखो, ये है ब्रोकली और अच्छा? ये जो है जुकिनी और ये है चेरी टमाटर।
0: अच्छा?
1: और पता है ये सलाद में इसका स्वाद ही बढ़ जाता अगर लेते अगर इसको खाते हो तो। और अगर हम बात अपने खेतों की करें ना, तो मैं तो भाई अपने सारे किसान साथियों बहनों को बोलूंगी कि भाई इसकी खेती करो और अच्छा मुनाफा लो।
0: तो ये साथियों आपके लिए जो सरिता बहन बता रही हैं, तो इन नई नई प्यारी प्यारी सी सब्जियों से हम ज्यादा उत्पादन लेके या कम उत्पादन लेके भी हम अच्छी खासी आय कर सकते हैं। ये बहुत आकर्षित करने वाली हैं और साथ ही पौष्टिक भी होती होंगी। हाँ
1: बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि ये जो ब्रोकली जुकनी चेरी टमाटर है ना, ये फसलों को सही तरीके से अगर आप उगाते हो ना, यानी खेती में आप अपनी विविधता ला सकते हो और बाजार में भी आप मुनाफा ले सकते हो
0: जी।
1: तो भाई अगर हम बात इसकी खेती में उगाने की बात करें, तो ये जो सारी फसलें हैं ना, इसकी देखभाल की जरूरत है, धूप की जरूरत है। और इसके लिए स्पेशली मैं अगर चेरी टमाटर की बात करूँ तो भुरभुरी मिट्टी होनी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तो अगर ये भुरभुरी मिट्टी पे आप लगाते हैं तो इसकी फसल अच्छी होती है। और हाँ, जुकिनी जो है वो तेज जल्दी होने वाली पैदावार है। और आप इसकी जो बेल के लिए एक सपोर्ट की आप डंडिया भी लगा सकते हो। और जो शहरों में रहने वाले जो मेरे भाई बहन है ना, उनसे वो मैं ये कहूंगी कि वो आप गमले में भी इसकी आप खेती कर सकते हैं
0: जी। तो इतनी आसान भी है और इसकी जो तरह तरह की होने की वजह से है ना, इसका मूल्य अच्छा मिलता है और ये पौष्टिकता में तो अच्छी होती ही है। और ये मतलब जल्दी भी हो जाती है जैसा आप बता रही हो। तो भैया आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहानी थोड़ी थोड़ी सी है इसमें।
1: हाँ, बस खेत की तैयारी के समय यही कहूंगी कि आप सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी मिलाकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। और बीजों से पहले नर्सरी में पौधा आप तैयार कर सकते हैं। जब पौधे मजबूत हो जाए तो आप उन्हें खेत में उचित दूरी पर लगाना शुरू कर सकते हैं। और ब्रोकली के जो पौधे की मैं बात कर रही हूँ, ये नियमित इसमें नमी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में पानी जमा भी नहीं होना चाहिए। समय समय पर निराई गुड़ाई आपको करते रहना चाहिए ताकि खरपतवार जो है पौधे की वृद्धि में बाधा ना डाले। जब पौधे के बीच में हरे रंग का फूल यानी कि मुख्य सिर अच्छी तरह विकसित हो जाए तो उस समय पर काट ले। बहुत देर करने पर जो फूल है ना वो ढीला हो सकता है।
0: अच्छा।
1: और फिर मैं बताऊं आपको वीरेन भाई, के बाजार में इसका जो मूल्य है ना वो कम हो सकता है।

0: बात अगर जुकिनी की खेती की करें तो जुकिनी तेजी से बढ़ने वाली सब्जी है और इसके खेत के साथ साथ कई बड़े गमले या आप ग्रो बैग में भी इसको आप उगा सकते हैं जो शहर
1: जी
0: में रहने वाले हैं।
1: बिल्कुल सरिता बहन, मुझे लगता है कि जो शहरी लोग हैं वो भी टेरेस गार्डन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना,
0: बिल्कुल
1: उसमें भी इन्हें उगा सकते हैं। ये
0: आसानी
1: ऐसे
0: से।
1: हैं, और जो बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो वो अपने
0: आपके
1: ग्रीन
0: खेतों में
1: हाउसेस लगा सकते हैं, पॉली हाउसेस लगा सकते हैं, और उसमें अच्छा खासा उत्पादन भी हो जाता है। और वो जो आप बता रही थी ना, गुणवत्ता वाली चीजें होती हैं, उसमें
0: बिल्कुल
1: कीट नियंत्रण भी हो जाता है, सही समय पे खाद वाद मिलती है, तो उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा सा होता है।
0: जी हाँ। तो यही है छोटी छोटी बातें वीरेंद्र की, अगर हमारे जो किसान भाई बहन हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रहेंगे तो इन सब्जियों का वो पूरा मुनाफा बाजार में ले सकते हैं।
1: जी
0: और ये भी हम बोल दें कि छोटी सी ही बात है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज का हमें चुनाव करना चाहिए, पानी की निकासी को आप अच्छी व्यवस्था रखें, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बिना जानकारी के अधिक मात्रा में ना करें, मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें। फसल में किसी भी तरह के कीट रोग या असामान्य लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसकी समस्या बढ़ने का इंतजार बिल्कुल ना करें। और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि
1: जरूर।
0: फसल लगाने से पहले बाजार की मांग और बिक्री की व्यवस्था के बारे में भी आप जानकारी जरूर ले लें।
1: जी
0: अच्छी फसल के साथ अच्छा बाजार मिलना भी किसान की आय बढ़ाने का बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी और जैविक जो कृषि है उसका भी इसमें मॉडल कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपकी ये जो खेती है, अगर जैविक प्रमाणित हो जाए, इसका
0: तो सोने पे
1: सर्टिफिकेशन करा
0: सुहागा।
1: लो, तो इसका मूल्य संवर्धन हो सकता है।
0: तो मतलब है अच्छा बीज, अच्छी मिट्टी, सही सिंचाई, संतुलित पोषण और समय पर फसल प्रबंधन, यही सफल खेती की पहचान है। क्यों वीरेंद्र
1: जी
0: भाई?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो सारी की सारी जो निचोड़ की चीजें हैं ना वो बता
0: वो
1: दी
0: बता
1: आपने,
0: दिए।
1: पूरा खेत तैयार कर दिया। अब तो मैं ब्रोकली अपने खेतों में ही उगाऊंगा और अपने श्रोताओं को और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो सारी चीजें बताई है ना, ये हमारे भोजन की चीजें हैं, हमारे खाने पीने की चीजें हैं, मतलब रोजमर्रा की चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मनोरंजन करवाते हैं अपने श्रोताओं का, रविंद्र सिंह खल्लोर की आवाज में, और ये भोजन की ही बात बता रहे हैं, सुन ले।

0: तो साथियों, यूं ही जिंदगी की बागडोर है, वो आगे चलती रहनी चाहिए। रविंदर सिंह खिल्लौर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारी सी प्रस्तुति। और साथियों, हम बात कर रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी विभूतियां होती हैं जो अपने कार्यों से बहुत कुछ रच के चली जाती हैं, बना के चली जाती हैं, और युग युग तक उनकी कृतियाँ, उनके कार्य अमर हो जाते हैं।
1: बहुत सही कहा वीरेंद्र। और आज जो है ना, आज एक खास साहित्यकार जो है उनका आज
0: दिवंगत
1: जन्मतिथि है।
0: दिवस है
1: हाँ,
0: आज
1: तो उनकी
0: उनकी
1: पुण्य
0: जयंती।
1: है। हाँ, तिथि है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि भाई ये उपन्यासकार जो है, साहित्यकार है, उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। और ये जो भगवती चरण वर्मा की अगर हम बात करें, तो वो एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन, प्रेम, पाप, पुण्य और समाज की गहरी सच्चाई को शब्द दिए थे।
0: जी
1: और इनका जन्म अगर हम बात करें, तो 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था। वे
0: जी
1: हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और कहानीकार थे। और उनकी प्रसिद्ध कृति की अगर बात करें, तो चित्रलेखा एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य की परिभाषा को लेकर एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठाने वाला उपन्यास
0: जी
1: है। और आगे अगर हम बात करें, तो ये इसमें जो है ना, चित्रलेखा के माध्यम से वर्मा जी ने ये सोचने पर हम लोगों को मजबूर किया कि कोई भी कर्म अपने आप में पाप या पुण्य होता है, या फिर परिस्थितियां और मनुष्य की भावना ही किसी के कर्म को पाप या पुण्य बनाती है।
0: जी
1: और बहुत
0: एक
1: सारे हैं उनकी रचनाएं, जैसे पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते,
0: हाँ,
1: भूले
0: टेढ़े मेढ़े
1: विश्वचित्र,
0: रास्ते,
1: सामर्थ्य।
0: टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी उन्होंने सीधा साहित्य का रास्ता बना दिया। और ये जो कृति है, ये राजनीतिक उपन्यास मानी जाती है और अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो इतनी बड़ी बड़ी कृतियाँ इन्होंने हमें दी हैं, तो भगवती चरण वर्मा की पुण्यतिथि पर हम उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और सरिता बहन, आज एक और बड़ा सा दिन है, पूरे विश्व का
1: जी
0: दिन है
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: शिक्षकों का दिन है, यानी आज है विश्व शिक्षक दिवस।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये आज 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये दिन जो है ना, शिक्षकों के योगदान, उनकी मेहनत और समाज के निर्माण में उनकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण, उसको हम सम्मान देने का ये अवसर होता है। क्यों
0: जी
1: वीरेंद्र?
0: बिल्कुल, और शिक्षकों से ही हमारी जो आगे की जनरेशन होती हैं, पीढ़ियां होती हैं, उनको तराशा जाता है, उनको बनाया जाता है, ताकि वो देश की बागडोर को संभाल सकें, अपने विकास क्रम को आगे बढ़ा सकें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: शिक्षा
1: कहा।
0: बहुत जरूरी है सरिता
1: बिल्कुल सही
0: बहन।
1: कहा। और गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का सही राह भी दिखाते हैं। और कहते हैं ना कि शिक्षा सिर्फ बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, मेहनत और अच्छे संस्कार भी विकसित करता है।
0: जी
1: शिक्षक ही वही व्यक्ति है जो किसी विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: जी
1: और अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, तो शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गांव के विद्यालयों में शिक्षक जो है, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करते हैं।
0: जी एक शिक्षक का जो क्षेत्र है वो बहुत ही वृद्ध है, बहुत फैला हुआ है। और हमारे गांव में भी अगर हम देखें, तो हमारे जो शिक्षक हैं वो पूरे गांव का केंद्र बिंदु रहते हैं। कोई भी समस्या आई तो गुरुजी के पास चले
1: हाँ
0: गए,
1: हाँ
0: किसी
1: बिल्कुल
0: का जवाब पढ़वाना है, किसी का जवाब देना है, तो गुरुजी के पास चले गए। तो गुरु जो है, टीचर जो है, वो पूरे समाज का एक अभिन्न अंग है।
1: बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छा शिक्षक जो है ना, विद्यार्थी के जीवन में दीपक की तरह काम करते हैं। और वो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जो विद्यार्थी है ना, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
0: जी तो सरिता जी, क्यों ना हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षा का सम्मान करें। और मनसाराम चौहान बहुत पहले ये कह गए हैं, तो सुनवा देते हैं।

अनपढ़ मानस को दुनिया में ना कोई साथ लगावे। अनपढ़ औरों की विनती कर अपने काम करावे। छोटी छोटी संख्या का भी जोड़ लगाना पावे। बिन सोचे

रहे मुसीबत भारी, ना कोई उससे यारी चाहवे, ना कोई रिश्तेदारी। अनपढ़ के संग हेरा फेरी हो जाती गद्दारी, इसलिए तो पढ़ना चाहिए।

फर्ज यही है संतान को सदा पढ़ावे। विद्या धन ऐसा धन है जो काम सभी के आवे, ना कोई इसको छीन सके और ना कोई इसे चुरावे। जितना इसको

कब क्या कहना करना चाहिए इसका भी अनुमान रहे। शिक्षित में व्यवहार कुशलता।

0: साथियों, अभी आप मनसाराम चौहान की आवाज़ में सुन रहे थे शिक्षा से जुड़ा ये एक बहुत ही प्यारा सा उपदेश। और अब सरिता बहन, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु और पाख परिंदे रहते हैं, सब अपने किसी न किसी तरीके के आवास और पर्यावास में ज़रूर रहते हैं, ताकि वो थोड़ा सुकून महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। और इंसान भी अपने घर में जाके ही सबसे ज्यादा सुरक्षित और आनंदित और मतलब जीवन उपयोगी महसूस करता है।
1: और बहुत आपने सही कहा। और ऐसे में मैं बता दूं कि भाई आज जो है, मतलब अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: जी,

0: सरिता बहन, जो इस दिवस को मनाने का औचित्य
1: उद्देश्य।
0: है वो सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं विश्व में, उनके पास एक आवास हो, आश्रय हो, जिसमें वो सुख सुविधाएं जुटाकर अपने जीवन को जी सकें। तो उसी को प्रेरित है ये, और
1: दिवस
0: इसमें बस यही देखा जाता है कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास ये है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और होगा तो कैसे होगा, इसी की व्यवस्था की जाती है।
1: और भाई, और एक है कि अभी हम लोग सेवा संकल्प अभियान भी मना रहे हैं, और ये जो सेवा संकल्प अभियान है ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशव्यापी जो है ना सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। और ये पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मतिथि 17 सितंबर जो है वो सेवा दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई है।
0: जी,
1: तो
0: और
1: जो सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं वीरेन, तो सेवा तो किसी भी क्षेत्र में आप ले करके संकल्प कर सकते हैं, चाहे आप जरूरतमंद या कमजोर वर्ग की सहायता करें, या समाज और सेवा में जन भागीदारी की भावना विकसित करें, या स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे कार्य में लोगों को आप जोड़ सकते हैं।
0: जी, वोकल फॉर लोकल भी एक बहुत ही प्यारी सी योजना है, जिसमें आप कितना भी अपने आप को फैला सकते हैं, अपने जो व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दूर तक भेज सकते हैं, उत्पादों की मूल्यवर्धन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे होगी आत्मनिर्भरता और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा।
1: बहुत सही कहा, क्योंकि जब लोकल मजबूत होगा ना तो तभी देश मजबूत होगा।
0: जी
1: तो वोकल फॉर लोकल, अपने देश की मेहनत को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं, यही इसका
0: जी
1: उद्देश्य है।
0: जी तो इसलिए जब हम अच्छे काम करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उत्पाद बिकेगा, तो हमारे पास पैसे भी आएंगे, और पैसे आएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। यही बता रहे हैं जयवीर भाटी।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जयवीर भाटी को, और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम अब संपन्न हो रहा है। चलते चलते सभी भाई बहनों को राम राम, राम। और इस कार्यक्रम के संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा

0: की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम, राम। जी साथियों, आशा है कि आपके खेत लहला रहे होंगे, आपकी बगिया महक रही होंगी और आंगन में चिड़िया चहक रही होंगी।
0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी जो खेत हमेशा लहलाए और वो सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो भाई हमारा ये जो कार्यक्रम है वीरेंद्र भाई, इसमें बहुत सारी जानकारी लेके आते हैं ताकि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन है, जो हमारे किसान भाई बहन है, इसका पूरा फायदा ले सके।
1: जी
0: तो आज जो कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे वो किसी जानकारी के साथ जरूर करेंगे।
1: जी बहुत जरूरी जानकारी है। और सरिता बहन, ये एल नीनो का जो वर्ष है इसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और पूरे विश्व को भी अभी तक का अगर पूरे वर्ष का लेखा जोखा देखें तो बहुत सारी जगह बहुत सारी आपदाएं आई हैं, उनमें बहुत नुकसान होता है, जनहानि होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ किसानों का होता है, उनकी फसलें, उनका जो आवास और उनके उस पर बहुत सारा कुठाराघात होता है।
0: बहुत सही कहा आपने वीरेन भाई कि जो हमारे किसान भाई बहन है ना, खेत में फसल तैयार करते हैं और अपना ये जो काम है बहुत आसान नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, कभी तेज धूप में खेत तैयार करता है तो कभी बारिश में बुवाई करता है, कभी फसल में खाद और पानी देता है और कभी कीट पतंगों से फसल को बचाता है। लेकिन कभी सोचा है कि किसान की महीनों की मेहनत खेतों में लहलहा रही है और अचानक बाढ़ आया, सूखा आया, ओलावृष्टि हुई, चक्रवात हुआ, तूफान आया, भारी बारिश या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो किसान के सामने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
1: जी तो इसी मतलब दृश्य को सोचकर देखकर हमारे किसानों के वेलफेयर के लिए, उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और इसके तहत आप अपनी फसलों का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा करा सकते हैं। तो भाई पूरी भरपाई तो नहीं की जा सकती, वो तो किसान की मेहनत की भरपाई कौन करेगा, वो तो ये है कि भाई उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाएगी और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं और कैसी कैसी सुरक्षाएं मिलती हैं, सरिता बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं। एक होता है कि भाई मौसम ही खराब हो गया, बुआई ही नहीं हो पाई, तो वो तो जो फसल है उसके प्रथम चरण में ही सारी जो गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए। तो इससे भी प्रतिकूल मौसम या सूखे के कारण यदि बुआई नहीं हो पाती है और बीमित राशि का अधिकतम जो होता है 25% उनको मुआवजा मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि जो किसान जो है उनको बीमा क्यों कराना चाहिए। देखो अगर मौसम खराब हो गया तो नुकसान तो होना ही है, तो बीमा

0: से फायदा जो है वो ये होगा कि आप जो आने वाली संभावित जो खतरा है, जो जोखिम है, उससे आप बच जाते हैं। मान लीजिए कि आपने गेहूं, धान, कपास, दलहन या किसी अन्य अधिसूचित फसल की खेती की,
1: जी
0: और उस खेती में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर आपने पैसा भी लगाया, और अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल को नुकसान हो गया। तो ऐसे समय में किसान को केवल फसल का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके अगले सीजन की खेती, परिवार के खर्चे और पुरानी कृषि जो कर्ज है उसकी
1: जी
0: अदायगी पर भी असर पड़ जाता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: फसल बीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आर्थिक सुरक्षा का एक माध्यम बन जाता है, और हमारे किसान अगर ये बीमा योजना लेते हैं तो उनको काफी हद तक बहुत अच्छी मदद मिल जाती है।
1: जी सरिता बहन, आप जो बता रही हैं ना, उससे मुझे यही पता चला कि किसान के लिए जोखिम हर वक्त रहता है। खेत खेत बोने से पहले खेत बो दिया, तब भी फसल कट गई, तब भी। तो इन सब जोखिमों को समुचित रूप से मतलब प्रबंध किया गया है कि भाई नॉमिनल जो प्रीमियम है वो दीजिए, और कुछ ना कुछ तो आपके लिए किया ही जाएगा।
0: जी हाँ, और अगर आपने बीमा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है तो निकटतम किसी भी बैंक में जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आपकी अगर जो भी बीमित फसल है उसके अंतर्गत जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका आपको मुआवजा मिलेगा, और आपको सिर्फ यही है कि नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा पर देना है, और बैंक शाखा या कृषि विभाग या बीमा कंपनी जो भी अधिकृत माध्यम है उनसे आप संपर्क करें, और फसल बीमा से संबंधित दस्तावेज और जानकारी जरूर सुरक्षित रखें। नुकसान की स्थिति में खेत और फसल से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है वो भी आप उपलब्ध कराएं।
1: जी
0: बीमा कंपनी या संबंधित विभाग द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है ना उसका आप पूरा पालन करें। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि नुकसान की सूचना आप देने में देरी ना करें, तुरंत आप
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: दें।
1: समयबद्ध तरीके से उसको आपको सूचित करना चाहिए, उस संस्था को जहां से आपने बीमा कराया है। और किसानों को सरिता बहन कितना प्रीमियम देना पड़ता है बता देते हैं आपको। खरीफ फसल के लिए जो कि धान, मक्का आदि होती हैं, इसमें 2% का आपको प्रीमियम देना होता है। रबी फसलों के लिए जो कि गेहूं, सरसों, चना आदि होती हैं, इसमें अधिकतम 1.5% का आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और जो बागवानी फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं, इनमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है, और बाकी का जो प्रीमियम होता है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वहन करती है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे किसान भाइयों को। भाई मैं तो यही कहूंगी कि मौसम बदले, परिस्थिति बदले, लेकिन किसान की जो तैयारी है ना वो ना बदले। तो
1: जी
0: भाई आप मेहनत आपकी है, सुरक्षा की तैयारी आपकी होनी चाहिए, और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो फसल बीमा के प्रति आप जरूर जागरूक बने, अपनी खेती और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में आप जरूर अपना ये कदम बढ़ाए।
1: जी और सरिता बहन, जो किसान होता है ना, उसमें बल भी होता है, उसमें बुद्धि भी होती है, उसमें क्षमता भी होती है, उसमें धैर्य भी होता है। यही बता रहे हैं श्रीपाल फौजी।

0: जी हाँ साथियों, मान घटाना ठीक नहीं। श्रीपाल फौजी को सुन रहे थे आप। और हमारे किसान बहन भाइयों को हम हमेशा बताते हैं कि ये दुनिया आपकी है, आपसे है, और आप जैसा कर देंगे वैसा सबको मिलेगा। और जो फसलों की बात करें हम सरिता बहन, तो हमारे किसान बहन भाई है ना, अधिकतर जो परंपरागत कृषि प्रक्रियाएं हैं और फसलें हैं उन्हीं को बोते रहते हैं। उनको और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बोने से उनका जो लाभ है वो बढ़ सकता है, और वहीं जो उनकी जो भूमि है, कृषि है, खेत हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रह सकता है।
1: तो भाई वीरेंद्र भाई, आज क्यों ना हम अपने भाइयों के साथ विविधीकरण, कृषि विविधि, फसल विविधीकरण के बारे में बात करें
0: जी।
1: और ये जो विविधीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये है कि केवल अगर हमारे किसान भाई एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं और अलग तो उसकी बजाय अगर वो अलग अलग मौसम, खेत और उपलब्ध जो संसाधन है उसके अनुसार विभिन्न फसलों को अपनाते हैं, तो इससे उनको फायदा भी होता है और फसल भी अच्छी होती है। यानी कि इसे ही हम विविधीकरण कहते हैं
0: जी।
1: अगर देखा जाए कि एक किसान जो है ना हर साल केवल धान की खेती करता है, तो कुछ क्षेत्र में धान के साथ कुछ टाइम के बाद कुछ क्षेत्र में धान के साथ वो दलहन, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज, सब्जी या अन्य कुछ खास फसलें भी वो ले सकता है
0: जी।
1: तो इस तरह से क्या होता है ना, फसल चक्र अपनाने से कि आपको बहुत सारी फायदे मिल जाते हैं। और कई बार देखा जाए गया है कि एक ही आप फसल अगर लगाते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरता है ना उसमें कमी आ जाती है
0: जी। तो आपको ये प्रयोग करने चाहिए, प्रयोगों से हमें बचना नहीं चाहिए, जबकि हमें पता है कि हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे उसमें, हम कभी अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। किसान जो भी करता है वो अच्छे से ठोक बजा के करता है उस कार्य को, तो इन सब चीज़ों को भी करें। मोटे अनाज आप उगाएं। अब जो अक्टूबर का महीना है ये आपके खेतों की तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रबी के जो फसलें हैं उनको बोने के लिए खेतों की तैयारी करनी पड़ती है, तो बहुत सारे जो जैसे खेल होते हैं ना, खेल की तैयारी हम खेल वाले दिन ही नहीं करते, खेल से पहले हम जितनी तैयारी, भाग दौड़ और वर्जिश कर लेंगे उतना ही फिर हमारे जीतने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे खेत है, खेत को पहले अच्छे से तैयार कर लो और फिर उसमें जब बीज बोया जाएगा तो वो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम सही से पहले तैयारी अगर हम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो खेती है वो अच्छी होगी और मौसम के अनुकूल आपका जो उत्पादन है ना वो बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है मौसम के अनुकूल अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो जो उत्पादन है वो घट भी जाता है
0: जी।
1: और फसल विविधीकरण करने में एक जो महत्वपूर्ण लाभ है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और कुछ फसलों को अधिक पानी की जरूरत तो होती है लेकिन कुछ फसलें जो है ना अपेक्षा जो है कम पानी में भी आप उगा सकते हो
0: जी।
1: मान लीजिए कि कभी आपको पानी की कमी है तो आप इस तरह के फसल को लेकर उसका भी मुनाफा फायदा ले सकते हैं
0: जी।
1: और कई क्षेत्र में ऐसा वीरेंद्र भाई देखा गया है कि पानी की जो उपलब्धता है वो सीमित है और वहाँ स्थानीय कृषि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि आप ऐसे फसलों को अपनाएं जहाँ उस क्षेत्र में उपलब्ध पानी के अनुसार अच्छी आपको मतलब उत्पादन दे सके
0: जी। तो करने का जो फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है और उसका फल भी मिलता है, उसका हमें परिणाम भी मिलता है। तो शीशपाल सिंह भाटी यही बात बता रहे हैं कि करनी का पल फल पड़े भोगना।

0: सारे ऐसे अवसर होते हैं कि हम उनको अपनाकर कुछ नए रास्ते निकाल सकते हैं।
1: भैया आपको पता है गरीबों की गरीब गाय किसे कहते हैं?
0: जी हाँ, मेरे पास, मैं गरीब हूँ और मेरे पास एक
1: मजाक कर रही हूँ। हाँ
0: गाय
1: मतलब आपके पास कम पैसे हैं तो ऐसे भी आप कहाँ से ला सकते हैं ऐसी गाय जो बहुत सस्ती हो।
0: जी, वो तो आप ही
1: ये
0: बता
1: तो मैं
0: सकती
1: कहावत है, ये
0: हैं।
1: बताओ बताओ कोशिश
0: जी
1: करो।
0: जी कोशिश कर ली मैंने, तो मेरी नजर तो गाय पे ही जा रही है।
1: अच्छा, तो मैं बताओ भाई आप बकरी पर भी ध्यान दें, वो भी एक छोटी गाय है जो आपको बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा मुनाफा दे सकती
0: सही
1: है।
0: सही कहा।
1: तो मैं आज बात करूंगी बकरी पालन के लिए कि भाई बकरी जो पालन है ना कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं, और जो हमारे ग्रामीण परिवार है ना ये आय का एक बहुत अच्छा साधन भी बन सकता है।
0: जी जी सही था।
1: तो अगर आपके पास कम बजट है और आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं।
0: जी, लाइव स्टॉक में बहुत सारी अपूर्व संभावनाएं हैं। आप कम बकरियों से भी अपना छोटे से बाड़े में बकरियों का पालन शुरू कर सकते हैं। इसमें जो इसका दूध होता है ना सरिता बहन, वो भी बड़ा उपयोगी होता है और पौष्टिक होता है।
1: बिल्कुल
0: और एक जगह मैंने देखा कि वो एक बच्चों का अस्पताल था, तो बकरी पालन करने वाले उसमें उन बकरियों का दूध सप्लाई करते हैं, तो उनसे भी उन्हें बहुत अच्छी आय होती है। तो ये भी देखो नजरिया है हमारा कि
1: हाँ
0: हम जहाँ चाह वहाँ राह ढूंढ सकते
1: ढूंढ
0: हैं।
1: सकते हैं। तो बात अगर हम बकरी की कर रहे हैं ना, तो अगर आप बकरी लाए, आपने बहुत बोला कि छोटे से बाड़े में आप इनको रख सकते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान भी रखना है क्योंकि जब आप बकरी की शेड आप बकरी को वहां बांध रहे हैं तो साफ सुथरा हवादार भी रखिए,
0: जी
1: फर्श पर पानी जमा ना होने दे, बारिश के बाद बची हुई नमी को आप तुरंत साफ करें, और उनके खाने पीने का भी आप ध्यान रखें, हरा चारा सूखा चारा सब जरूरत के अनुसार आप दाना दें। और वैसे भी बकरी है बहुत कम चारे में आप उसका गुजारा कर सकते हैं, मतलब
0: जी
1: वही मैं बता रही हूँ कि कम आमदनी में आप अच्छा मुनाफा बकरी के माध्यम से ले सकते हैं।
0: जी तो आप बकरी पालिए और हम आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको ब्रजेश की आवाज में ये एक प्रस्तुति।
1: उपदेश हम सुनते हैं ब्रजेश से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी को। और साथियों, हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे परिवेश में बहुत

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश कौर। इसी के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सभी सुनने वाले हमारे किसान बहन भाई और श्रोताओं को राम राम, राम।
1: कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 होने को है। कुछ ही पलों में सुनिए गजल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आई श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

जी हाँ, तन्हाई तन्हाई से ही हर किसी के दिल में वो उम्मीद आती है कि शायद कल का दिन तन्हा ना गुजरे। तन्हाई में किसी ने बहुत खूब कहा है, यूं तो हम भीड़ में चलते रहते हैं, लेकिन जीवन के हर एक मोड़ पर ये सफर तन्हा लगता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:45 होने को है। सुनिए समाचार।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने PG संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की।
10: निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सेंटर पर आने वाले मामलों के रिकॉर्ड और उनके फॉलोअप की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से राजधानी के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों के विस्तृत रिपोर्ट प्रति माह मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक मामले की पुलिस सूचना, FIR की स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पीड़िता को मिली वास्तविक सहायता का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य हो। श्रीमती गुप्ता ने पॉक्सो मामलों में गोपनीयता के साथ पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
9: राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
11: आयोग ने कहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने बताया कि दिशा निर्देश महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें 2013 की JS वर्मा समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और परिवहन सेवाओं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
9: दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस कार्ड को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 38 DTC पिंक पास वितरण केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसके साथ ही कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुलभ बनाने के लिए राजधानी के कई इलाकों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी पात्र महिलाओं को कार्ड बनाने और जारी करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजय

0: राजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण कर लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझने तथा संविधान, विधायी प्रक्रियाओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जाना। दिल्ली सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस सुविधा से बोर्ड को अपनी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी।
1: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस सुविधा से पहले किसी बीमारी या उपचार की आवश्यकता होने पर पेंशनरों को अस्पताल में इलाज का खर्च पहले अपनी जेब से वहन करना पड़ता था। इसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होती थी। इसी प्रक्रिया को और आसान करने की दिशा में यह कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली की सेवा में समर्पित किया है।
2: वो हजारों कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते रहे और उनके जीवन के इस पड़ाव पे जब उन्हें सरकार की सहायता की जरूरत थी, उनके पास अभी तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध थी। आज हमारी सरकार ने इसके लिए सभी पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ी सहायता है।
1: ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज और सम्मानजनक तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए इस महीने की 7 और 8 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर एक और विशेष शिविर 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए हैं। मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ा है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक बार विजिट किया गया है। मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल या मैसेज रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
3: ये पोर्टल लोगों को ये जानने में भी मदद करता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि खोए और चोरी हुए 14 लाख से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नागरिकों की ओर से अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानने से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक जानकारियां प्रदान की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जो नागरिक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए संचार साथी का इस्तेमाल करते हैं, वे एक साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर से 5,000 करोड़ से अधिक की संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोका गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पीजी मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पीजी संचालन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं, चुनौतियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस बैठक से पहले उन्होंने पीजी आवासों में रहने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताहों में दिल्ली सरकार विद्यार्थियों आवासों के लिए अंतिम नियामक ढांचा और दिशा निर्देश लागू करेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
4: बैठक के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसको एक रेगुलेशन बनानी है। दिल्ली के

0: लाखों बच्चों के लिए पढ़ते समय रहने के लिए पीजी भी एक बड़ा साधन है। वो सेफ हो, रेगुलेटेड हो, सुरक्षित हो और सही दाम पर बच्चों को मिले, और जो अप्रिय घटना पिछले दिनों घटी ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और उसी के तहत हमने आज पीजी के ओनर्स के साथ बातचीत की।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने परिसरों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक में वायु संकल्प, पराली और बायोमास जलाने की रोकथाम, ब्राउन पैच की पहचान तथा ग्रीन दिल्ली ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज पूठ गांव स्थित मैत्रीय मध्यान्ह भोजन रसोई यानी मिड डे मील किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने भोजन बनाने के स्थल, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन करने की जांच की। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 7 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दुर्गा पूजा आयोजन के लिए गठित विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने और सभी जिला अधिकारी को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आयोजकों को आवश्यक NOC और अनुमतियों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने को भी कहा। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 31 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही 5 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्तिनगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की के ज्योति जोत दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी में मानवता का कल्याण, उनकी शिक्षाओं में सेवा का संस्कार और उनके जीवन में सभी की भलाई का शाश्वत संदेश है। राजधानी दिल्ली में आज का दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी और दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिकर करना।
4: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
2: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
3: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
5: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम हमारे अतिथि।
7: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत होती हैं, वो असल में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होते हैं अपने आप में। कैसे किस काम की शुरुआत हुई, क्या संघर्ष थे, क्या उपलब्धियां, और आज किस तरह से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं अपना काम करते करते, हम ये सब जानते हैं इस कार्यक्रम में। और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हैं, जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये हैं संजीव श्रीवास्तव जी। आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, और हाल ही में आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
8: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
7: सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की, यह सम्मान प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई।
8: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
7: हम सब जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा ये सम्मान पाते हुए कैसी अनुभूति थी, कैसा लगा आपको?
8: राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान पाकर के ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई नया चमत्कार हो गया
7: जी।
8: अब तक मैं विज्ञान भवन में दूसरे कलाकारों और लेखकों को देखा करता था पुरस्कार प्राप्त करते हुए, उस वक्त मैं तालियां बजाया करता था और उस वक्त मेरी आंखों में भी सपने होते थे कि काश कभी मुझे भी यह पुरस्कार मिलेगा क्या। आज जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैं बताना चाहूंगा नीलम जी की 18 जुलाई को जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और मुझे पता चला कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है, तो घर में बहुत ही भावुक माहौल था और मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ गले से लिपट करके बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा
7: जी।
8: और घर में भी सब लोग बिल्कुल ही बहुत ही भावुक हो गए, मुझे यह बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है इस साल
7: जी।
8: सपनों के सच होने जैसा था जब 22 सितंबर को केवड़िया में राष्ट्रपति जी के हाथों यह अवार्ड मिला। इस बीच पुरस्कार की घोषणा होने से लेकर के पुरस्कार मिलने तक जो धड़कन थी, जो बेताबी थी, वो तो बिल्कुल ही अनकही है, उसे शब्दों में बिल्कुल ही व्यक्त नहीं किया जा सकता
7: जी।
8: ये बहुत ही महसूस करने वाली बात है
7: जी।
8: और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पुरस्कार की बड़ी सफलता है।
7: तो हम ये कामना करते हैं कि स्वर्ण कमल की जो चमक है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में क्या बदला?
8: बहुत कुछ बदला है, नजरिया बदला है नीलम जी। बताऊं मैं आपको कि फिल्में देखना और फिल्मों पर लिखना बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता रहा है और मुझे अपने घर में ही उस नजरिए का शिकार होना पड़ा कई बार
7: जी।
8: जब मैं सुबह सुबह फिल्म देखने चला जाता था तो घर में मुझे ताने सुनने के मिलते थे कि और कोई काम नहीं है क्या, सुबह उठे और फिल्म देखने चले गए। या फिर जो हमारे बहुत सीनियर साथी हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भी एक नजरिया होता था कि यार इतना सीनियर व्यक्ति है और फिल्मों पर लिखता रहता है, उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया नहीं
7: जी।
8: लेकिन जब पुरस्कार का ऐलान हुआ तो मुझे अपने घर में ही सबसे पहले छूट मिल गई, जाइए अब जितनी फिल्में आपको देखनी है देखिए। और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मुझे अभी तक बहुत इग्नोर कर रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये बहुत ही भावुक पक्ष है, उन्होंने अब मुझे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया हो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल की है, आगे बढ़ो
7: जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के किस राज्य में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
8: मेरा जन्म बिहार में हुआ है। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा, उनके शहर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी वहां पर सरकारी नौकरी कर रहे थे
7: जी।
8: तो पिताजी वहां पर पोस्टेड थे, पूरी फैमिली वहीं पर रहती थी। मेरा जन्म वहीं हुआ, लेकिन वैसे मेरा जो

0: एथनिक शहर है वह बिहार का सीतामढ़ी जिला है।
1: जी
0: सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार के बॉर्डर पे है और बहुत ही मशहूर जानकी स्थान मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है
1: जी,
0: जो कि सीता जन्म स्थली के तौर पर वो जगह जानी जाती है। तो वो मेरा पैतृक शहर है। वहाँ का एक गांव है रिखौली, जहाँ मेरा बचपन बीता। पूर्णिया से आने के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शहर छोड़ करके पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई थी कुछ सालों के लिए। तो गांव में कुछ साल हमारे बीते और गांव में जो साल बीते वे साल बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। गांव में तब बिजली नहीं थी, सड़कें बहुत ही कच्ची हुआ करती थी और वहीं रह करके हमने 12वीं तक पढ़ाई की। पैदल जाता था स्कूल, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर भी होता था। पिताजी फिर चूंकि दूसरी जगह पर रहा करते थे, दूसरे शहर में उनकी पोस्टिंग हो गई थी और फैमिली गांव में रहती थी। तो जब पिताजी शहर से जब गांव आते तो पूछते कि कैसे जाते हो, कैसे आते हो, तो फिर मैं उनको बताता। बहुत लोग मेरी उम्र में साइकिल चलाते थे स्कूल जाने के लिए, मैं साइकिल भी नहीं चलाता था। तो कठिनाइयों भरे वर्ष रहे वो
1: जी। तो इन संघर्षों के बीच जब आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या सपना था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिससे आप जुड़ना चाहते थे?
0: बिल्कुल, जो सिनेमा में आज जो सम्मान मिला है इसका बीज उन्हीं दिनों पड़ गया था। सच बताऊं मैं आपको
1: जी,
0: कि उस वक्त रेडियो से गाने बहुत आते थे। रेडियो के कुछ ही चैनल्स होते थे, विविध भारती है या फिर सिलोन है या गुवाहाटी है, ऐसे होते थे। पटना आकाशवाणी केंद्र से गाने बजते थे। फिल्मी गाने खूब सुना करता था मैं, नए पुराने गाने सब खूब सुना करता था और फिल्में देखने का शौक उसी समय से पैदा हो गया था
1: जी।
0: शहर जाकर के फिल्में देखता था और जब शुक्रवार को नए पोस्टर लगते थे हमारे जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो फिल्म तो बाद में देखना है, पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता था और पोस्टर पे जो हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी उनको गौर से देखता था और खास तौर पर देखता था उसमें कौन कौन सितारे हैं, गीतकार है, संगीतकार है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, सब जो लिखा रहता था पोस्टर पर, उन सबको देखा करता था। उसमें से जो सबसे ज्यादा अपील करता था उसको देखने के लिए शनिवार को स्कूल से हाफ टाइम के बाद मैं फरार हो जाता था
1: जी,
0: फिर वो देख कर ही आता था। हमारे शहर में एक बड़ी खास बात थी उस दौर में ये कि स्टूडेंट कंसेशन मिला करता था 50% शनिवार को भी और रविवार को भी
1: जी।
0: तो शनिवार को मॉर्निंग शो में और रविवार को मैटिनी शो। मैटिनी शो कहने का मतलब 2 बजे का शो और मॉर्निंग शो 11 बजे का शो। उसमें 50% का डिस्काउंट मिलता था। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मुझे हफ्ते भर जो पॉकेट खर्च मिला करता था उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता था फिल्म देखने के लिए, लेकिन मैं हर हफ्ते फिल्म देखता ही था।
1: आज पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट था।
0: इन्वेस्टमेंट था
1: जी। संजीव जी, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अब आत्मनिर्भर हुआ जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कमाना शुरू किया जाए। तो जब आप उस पड़ाव पर पहुंचे जीवन के, तब किस तरह के संघर्ष थे, क्या विकल्प सामने थे, कैसा था वो दौर?
0: मेरा जो पहला लक्ष्य था वो प्रोफेसर बनने का था
1: जी,
0: क्योंकि हिंदी साहित्य से मैं एमए कर रहा था। शहर में आकर रहने लगे थे हम सब लोग। मेरी इच्छा थी प्रोफेसर बनने की, क्योंकि मैं प्रोफेसरों की दुनिया देखा करता था। वो बड़े आजाद ख्याल से रहा करते थे और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के होते थे। उनको बहुत सारी जो औपचारिकताएं होती हैं दफ्तर की, उनको शायद मानने में शायद छूट मिला करती थी। अब हो सकता है बहुत सारे प्रतिबंध लग गए होंगे, लेकिन उस दौर में ऐसा ही कुछ था। तो मुझे वो आजादी बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या है कि पत्रकारिता में सबसे पहली एंट्री मुझे मिल गई तो फिर मैं पत्रकारिता में चला गया। उन दिनों प्रोफेसर बनने में बहुत वक्त लगता था
1: जी, यानी कोई प्लानिंग नहीं थी पत्रकार बनने की, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि यही बेहतर विकल्प है।
0: यही बेहतर विकल्प है और शायद दूसरा सबसे बेहतर विकल्प लगा था, क्योंकि लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था
1: जी।
0: फिल्मों पर भी हमने छोटी छोटी टीका टिप्पणियां उन्हीं दिनों शुरू कर ली थी। ये बात भी बहुत उल्लेखनीय इसी जगह पर हो जाती है कि सड़क फिल्म एक आई थी महेश भट्ट की
1: संजय दत्त
0: और पूजा भट्ट। उसका एक गाना था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
1: जी।
0: फिल्म बहुत ही मशहूर थी उस जमाने में और ये गाना भी काफी चर्चित हुआ था। लेकिन इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था, उस पिक्चराइजेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे प्रभावित होकर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और वह टिप्पणी फिल्मों पर लिखी हमारी समझी समीक्षा कह लिए, टिप्पणी कह लिए, वो पहली टिप्पणी थी
1: जी।
0: कि कैसे एक नायक बदनाम बस्ती के कोठे पर रहने वाली लड़की को अपने साथ लेकर जाता है एक दिन के मुचलके पर, और लेकर कहाँ जाता है, तो मंदिर।

0: ये जो नायक के भीतर एक जो क्रांतिकारी चेतना है, एक पतिता को पतित पावन के द्वार पर ले जाने का जो विजन था डायरेक्टर का, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था
1: जी। और एकदम से विरोधाभास पैदा होता है,
0: एकदम से विरोधाभास, दोनों नंगे पांव मंदिर के सामने खड़े हैं। इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, उस पर मैंने छोटी टिप्पणी लिखी थी, वो मेरे जीवन की सबसे पहली टिप्पणी थी।

0: माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, वहाँ के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी और वहाँ मैं पास कर गया। जबलपुर जाके मैंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद भोपाल में मुझे हॉस्टल मिल गया, पर फिर मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया और एक साल मैंने वहाँ कोर्स किया। उसके बाद भोपाल में दैनिक नई दुनिया से जुड़ा उस समय के लिए
1: जी,
0: और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया।
1: जी, आप पत्रकारिता से जुड़े, तो पत्रकारिता जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जटिल दुनिया है और ऐसा लगता है कि सीमाएं भी जो हैं वो अनंत हैं और संभावनाएं भी अनंत हैं। यहाँ से संघर्षों की एक अलग दुनिया शुरू होती है, तो वो दौर कैसा था? आप दिल्ली आए, परिवार कहीं और था या साथ में था परिवार, और घर गृहस्थी जो है तब शुरू हुई नहीं हुई?
0: दिल्ली जब आए तो मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त शादी नहीं हुई थी हमारी
1: जी।
0: मदर फादर अपने शहर में रहते थे, भाई बहन भी वहाँ सब लोग थे, और समझिए कि दिल्ली आकर के उस दौरान नए जीवन की शुरुआत करनी थी। नए जीवन की शुरुआत का मतलब है कि एक रोजगार शुदा जीवन की शुरुआत
1: जी।
0: लेकिन उन दिनों पत्रकारिता की दुनिया में नौकरी मिलना बहुत कठिन था, या तो आप कोई बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हों

0: या तो आप संपादक जी के बहुत ही करीबी हो, या तो वहां पर कोई बड़ी जगह निकली है, तभी ये सिफारिशें भी काम कर रही थी।
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान अखबार में काफी समय तक फ्रीलांस किया,
1: जी,
0: उन्होंने कई सारे लेख हमारे छापे, ये कुछ साल चला। उसके बाद दिल्ली में कुछ नए नए अखबार शुरू हुए, वहां मैंने अप्लाई किया, तो फिर वहां से फिर नौकरी का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो छोटा सा अखबार था, फिर वो अखबार बंद हो गया, फिर बेरोजगार हो गया।
1: जी,
0: फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, टेलीविजन की दुनिया शुरू हुई, फिर उसके बाद मैं टीवी में चला गया साल 2000 से, के बाद से लगातार मैं टीवी में ही रहा, तब से ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से सिलसिला चलता आ रहा है।
1: जी, पहले जो है वो शब्दों की दुनिया में थे, उसके बाद आप स्क्रीन की दुनिया से जुड़े, थोड़ा अलग होता है?
0: बिल्कुल अलग होता है, चूंकि प्रिंट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो हम वहां पर लिखते हैं
1: जी,
0: उसके साथ जो विजुअलाइजेशन की जो एक अपेक्षा होती है टेलीविजन में, वहां तो वो नहीं होती है
1: जी।
0: तो हम लिख देते हैं, चार पैराग्राफ लिख देते हैं, एक पन्ना लिख देते हैं, अखबार का आधा पेज भर देते हैं दो तीन फोटोग्राफ्स के साथ, लिखने की आजादी वहां ज्यादा होती है
1: जी।
0: लेकिन टेलीविजन में लिखने का कौशल थोड़ा बदल जाता है, हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है क्योंकि उसको सुनाना है हमें
1: जी, वो विजुअल को सपोर्ट करे,
0: विजुअल को सपोर्ट करे, साथ में जो दर्शक देख रहे हैं
1: जी,
0: वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड ही हो, अखबार तो एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं
1: जी,
0: पत्रिकाएं भी एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविजन जरूरी नहीं कि शिक्षित लोग देखे सुने। तो वहां पर ऐसी भाषा लिखनी होती है जो बहुत ही आसान हो, बोलचाल के करीब हो, और उस भाषा को सपोर्ट करने वाले विजुअल भी हो, साथ में बाइट्स भी हो, ये सब बहुत अपेक्षित हो जाता है। तो जो एक लेखन कौशल है, लेखन कला है ना, वो अखबार के मुकाबले टेलीविजन की कुछ ज्यादा कठिन है, वो एक अलग क्राफ्ट है, उसको सीखने की जरूरत पड़ती है।
1: तो लगातार इस तरह की चुनौतियां आती गईं, तो कैसे आप फिल्म समीक्षा से जुड़े, क्या ध्यान रखते थे आप कि आपकी समीक्षा में क्या क्या तत्व होने चाहिए, कैसे वो दूसरे समीक्षक से अलग लगे, और किस तरह से वो पाठक के या जो फिल्म प्रेमी हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके वो नजदीक हो?
0: पुस्तक समीक्षाएं मैं उस वक्त बहुत किया करता था
1: जी,
0: तो पुस्तक समीक्षाओं के साथ साथ मैं फिल्मों पर भी टीका टिप्पणियां किया करता था। उस वक्त बहुत सारे फिल्म समीक्षक, दिग्गज फिल्म समीक्षक हुआ करते थे, ब्रजेश्वर मदान, बच्चन श्रीवास्तव, संपत लाल पुरोहित, ऐसे कई सारे हुआ करते थे जिनसे मैं मिलता था, और सिनेमा के बारे में जो बातचीत उन सबसे होती थी, उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि तुम फिल्मों पर भी इसी तरह की समीक्षाएं लिखा करो जैसे पुस्तक समीक्षाएं लिखते हो
1: जी।
0: हमने वहां से सीखा, और शायद मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जो हमने थोड़ी गहराई पकड़ने की कोशिश की, उसकी वजह यही थी कि इससे पहले हमने रंगमंच की और पुस्तकों की समीक्षाएं की
1: जी।
0: तो एक डेप्थ को ढालने का एक प्रैक्टिस हमें हो गया था पहले से। फिल्म समीक्षा वास्तव में डायरेक्टर के विजन कैसा है, डायरेक्टर ने कहानी के जरिए क्या कहना चाहा है, ये बताना फिल्म समीक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है
1: जी।
0: उसे समझना हमें पड़ेगा, फिल्म आखिर कहती क्या है, किस लिए यह फिल्म बनाई गई है। ये जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक हम किसी भी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर सकते। खूबियां और खामियां दोनों बताना बहुत जरूरी है, तभी कोई एक फिल्म समीक्षा बिल्कुल मुकम्मल हो पाती है। लेकिन डेस्क पर कई बार ऐसा होता है कि जो उस फिल्म के बारे में कुछ दूसरे आयाम, कुछ दूसरे तथ्य, दूसरी कहानी
1: जी
0: डेस्क के साथ ही लिखते हैं, वो उसके लिए क्या होता है कि चार जगहों से पढ़ते हैं, या कुछ क्लिप्स आती हैं, गाने आते हैं, टीजर ट्रेलर आता है, और डायरेक्टर का व्यू आ गया, एक्टर का व्यू आ गया, तो उसको पढ़ करके सुन करके रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट अलग चीज है।
1: संजीव जी, इस समय हो सकता है हमारे ऐसे बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, या किस ना किसी डेस्क के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। आपके विचार में सीधे किसी एक डेस्क के साथ जुड़ना सही है, या हम हर तरह का काम करें, अनुभव लें, और उसके बाद ये तय करें कि हम कहां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें एक चीज ये है कि मैं अक्सर ये शिकायत सामने रखता हूँ, अपने दफ्तर में भी रखता हूँ, और अपने दफ्तर के अलावा और भी दूसरे दफ्तर में जो बड़े अधिकारी हैं उनके सामने रखता हूँ
1: जी,
0: कि उनके पास जब भी कोई नया ट्रेनी आता है, नया स्टाफ आता है, तो उनसे यह पूछते हैं कि क्या आपको बिजनेस में दिलचस्पी है, पूछ करके वो बिजनेस डेस्क पर लगाते हैं। फिर दूसरे से पूछते हैं क्या आपको स्पोर्ट्स दिलचस्पी है, तो उससे पूछ करके फिर वो स्पोर्ट्स डेस्क पर लगाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ ऐसा नहीं होता है
1: जी,
0: उनसे सीधे अपेक्षा ये की जाती है कि आप रेस पर जाइए, काम करिए और

0: वहाँ रिव्यू लिखिए और टीका टिप्पणी करिए, मुझसे कभी पूछा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो भी नए लोग आ रहे हैं मीडिया के फील्ड में, एंटरटेनमेंट को संभालना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, क्रिटिक बनना चाहते हैं, फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिनेमा को लेकर के उनके भीतर कैसी जिजीविषा है
1: जी,
0: कैसी जिज्ञासा है, कितना डेप्थ है, कितना ज्ञान है इस बारे में और कितनी रुचि है, ये सब कुछ उनको देखना पहले पड़ेगा और उसके बाद ही वो फैसला करे कि उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अपनी ख्वाहिश और दफ्तर की जरूरत दोनों का तालमेल बिठा पाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है
1: जी।
0: उस इम्तिहान में जो पास कर गया वो पुरस्कार जरूर पाता है
1: जी। संजीव जी, आपने शुरुआत की थी प्रिंट मीडिया से
0: जी।
1: और अब सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और पत्रकारिता से भी इसे जोड़ दिया गया है। जिसके भी हाथ में मोबाइल है या जिसका अपना सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, वो सोचता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी जो है वो कहाँ तक जरूरी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: पहले होता था ना नीलम जी कि हम लोग डायरी मेंटेन करते थे
1: जी,
0: और डायरी बहुत सीक्रेट रखते थे। उस डायरी के पन्ने कोई खोलता नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, यहाँ तक कि धोखे से अगर कोई घर में पन्ना पलट दे तो उस पर नाराज होते थे,
1: झगड़ा हो जाता था,
0: झगड़ा हो जाता
1: जी।
0: था कि हमारी डायरी क्यों पढ़ रहे हैं, हमने अपने मन की बात उसमें लिखी है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो आया है ना, एक तो डायरी को खत्म कर दिया उसने
1: जी,
0: और वो सोशल मीडिया एक तरह से जगजाहिर डायरी हो गई है। यहाँ लोग अपनी मर्जी की बात कुछ उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे कभी डायरी में लिखा करते थे, लेकिन अब उनको इस बात का कोई भय नहीं है कि इसको कोई पढ़ेगा तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या टीका टिप्पणी करेगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को लोकतांत्रिक आजादी दी है कि अपनी बात खुलकर रखने का, तो लोग लिख रहे हैं। और यहाँ भी लेकिन इम्तिहान है कि कौन कैसा लिख रहा है, कौन किस तरह के विचार व्यक्त कर रहा है, उसके भी उसी तरह के फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसको भी उसी तरह से प्रसिद्धि मिल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं
1: जी,
0: सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं। ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो उन्हीं वजहों से बनाई है कि उन्होंने कैसा लिखा है या कैसा अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो वहां पर लोगों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पर अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखे। फिल्मों के संदर्भ में आप खास तौर पे देखिए तो फिल्म देखकर आते हैं, चार लाइन तुरंत एक जजमेंट पास कर देते हैं
1: जी,
0: कि मुझे ये फिल्म खराब लगी है, अच्छी लगी है। और तो ऐसे में मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा और जो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वैसी टिप्पणियों की चपेट में ना आए और खुद भी फिल्म देखें और तय करें यह फिल्म कैसी है। अगर कोई फिल्म बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और चल जाती है तो इसका क्रेडिट डायरेक्टर और एक्टर एक्ट्रेसेस खुद ही अपने ऊपर रखते हैं, फिल्म समीक्षक को, फिल्म आलोचक को वो कभी नहीं देते
1: जी। जबकि व्यावहारिक तौर पर होता यही है कि बहुत सारे लोग वो रेटिंग देखकर फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वो चुनते हैं, तो फिल्म समीक्षक भी एक भूमिका इसमें निभा रहा है।
0: फिल्म समीक्षकों की एक बड़ी भूमिका है, मैं अक्सर कहता हूँ कि फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल विधा है
1: जी।
0: एजुकेशनल इसलिए कि फिल्म समीक्षा पढ़ने के बाद ही हम कोई फिल्म देखने का विचार बनाते हैं, तो फिल्म में जो खूबियां हैं वो समीक्षक अगर नहीं बताएगा तो दर्शकों को मालूम कैसे होगा
1: जी।
0: तो समीक्षक तो एक जरिया है, समीक्षक को कोर्ट का फैसला नहीं सुनाना चाहिए, समीक्षा लिखनी चाहिए, फैसला न सुनाए, मैं अक्सर कहता हूँ
1: जी।
0: माधुरी ने समानांतर फिल्म आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया था
1: जी,
0: जो निशांत और ऐसी फिल्में आई थी, अंकुर वगैरह, श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार सामने आए थे
1: जी।
0: तो माधुरी पत्रिका ने उसको काफी आगे बढ़ाया था। तो समानांतर सिनेमा से जुड़े हुए जितने भी डायरेक्टर्स थे, एक्टर थे, उन्होंने माधुरी पत्रिका को क्रेडिट दिया था कि हमारे आंदोलन को आगे काफी बढ़ाने में मदद की है। लेकिन एक कमर्शियल सिनेमा जो है वहाँ कोई एक्टर एक्ट्रेसेस या डायरेक्टर इस तरह से आपको क्रेडिट नहीं देते
1: जी। तो चलते चलते ये सवाल आपसे कि आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? अब आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो इसके बाद जिम्मेदारी का एहसास है या ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी बस सफल हो गई, अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है?
0: ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिल्मों से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म मैंने भी शुरू किया था और वह प्लेटफॉर्म था पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस नाम से हमने एक फिल्म पत्रिका शुरू की थी और यह पत्रिका कुछ वर्ष चली और यह मासिक पत्रिका थी। हमारी कोशिश थी कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए देश भर में, हिंदी सिनेमा क्या बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए देश भर में जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां वो अपनी बातें खुलकर लिख सकें
1: जी।
0: तो बहुत दिग्गज लेखकों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरविंद कुमार, शरद दत्त, अजय ब्रह्मात्र, मनमोहन चढ़ा

0: तो हमारी ये ख्वाहिश है जो बीच बीच में मैंने रुक रुक कर किया उसको अब इसके आगे मुकम्मल तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई खास सहयोगी मिले तो या फिर मेरे पास संसाधन वैसा हो तो मैं उसको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करके दिखा दूंगा
1: जी।
0: ये मेरा प्रण है, ये मेरी ख्वाहिश है
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपका ये अगला पड़ाव भी आप जल्दी इस तक पहुंचे, इसे अचीव करें और उसके बाद अपने लिए फिर एक नया सपना संजोए और आपकी जो अलग अलग उपलब्धियां होंगी उसमें हम इस तरह से शामिल होंगे संजीव जी कि फिर आपको हम कष्ट देंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपकी किसी नई उपलब्धि पर हम फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, और तमाम श्रोताओं को भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। बस ये पुरस्कार मुझे एक गेटवे की तरह लाइफ में आया है
1: जी।
0: देखते हैं हाईवे पर कब जाते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्द हाईवे तक पहुंचे। तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर के साथ मैं नीलम मलकानिया, हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:35 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

और वाकई में जब पहली बार ऐसा दिल को महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा समझ में आ रहा, कुछ अलग सा एहसास है, तब ये लग जाता है कि हाँ, ये पहले प्यार का एहसास है। और जब पहला प्यार होता है तो कहीं भी दिल नहीं लगता। ऐसे में मोहब्बत करने वाले ये गीत जरूर गुनगुनाते होंगे।

जी हाँ, पहला नशा पहला खुमार और मोहब्बत। मोहब्बत तो बहुत कम लोगों को ही नसीब में मिलता है, तो जिसके नसीब में मोहब्बत है वो खुश नसीब है। तो मोहब्बत को संभाल कर रखिए, गीत गुनगुनाते रहिए। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, लेकिन आखिरी नगमा आपके गुनगुनाने के लिए ये रहा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने

0: परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर DST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति, अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
2: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
3: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
4: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
5: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
6: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
7: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
5: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
8: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India

0: India's journey toward a faster, smarter, and more connected future of India.
1: India's first indigenously designed and manufactured semi-high-speed train Vande Bharat Express has been developed to strengthen intercity rail services by combining modern technology, improved passenger comfort, and reduced journey times. The train is fully air-conditioned, which has been designed for a maximum speed up to 180 km per hour. More than 160 Vande Bharat trains are operational nationwide, enhancing connectivity across major corridors. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: The Election Commission of India has rejected the allegations of Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, that the Chief Election Commissioner, Gyanish Kumar, has changed Form 6 of Special Intensive Revision, SIR, illegally and unilaterally. The Commission clarified that the declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Supreme Court. In a social media post, the Commission also said that the order related to SIR in Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission on the 24th of June last year. The poll body also highlighted that the order has also been upheld by the Supreme Court in its judgment dated 27th of May this year. Earlier, the Apex Court clarified that it has not approved any changes to Form 6 being used by the Election Commission during SIR of electoral rolls. The government has refuted claims circulating on social media that the Election Commission of India has taken down the press release published on the 26th of last month. The fact-check unit of the Press Information Bureau has said that the press release is available and has not been taken down by the commission. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held tomorrow, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Ratanachavadi in Puducherry, and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. President Draupadi Murmu has appointed Chief Justices of 3 High Courts as judges of the Supreme Court of India. In a social media post, Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal informed that the President appointed Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of Delhi High Court, Justice Devendra Kumar Upadhyay, and Chief Justice of Telangana High Court, Justice Aparesh Kumar Singh, as judges of the Supreme Court. American scientist Carl Dieseroth and German scientist Peter Hegemann and Georg Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing a breakthrough technique to decode the inner workings of the brain. This method, known as optogenetics, acts as a light-sensitive switch, allowing scientists to potentially map which cells are responsible for which function in the brain. The Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute made the announcement today. The Nobel Committee said in a statement that the German duo of Hegemann and Nagel discovered a protein in algae known as channel rhodopsin, before American scientist Dieseroth transformed the protein into a light-controlled switch for nerve cells. It added that the work has laid the foundation for a new era in neuroscience. Benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a 4-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम।
4: द
3: भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीयत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पामला के दरमियान दो तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकत दारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निज़ाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और ताउन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
4: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
3: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबे में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तआवुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।
5: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. 1. The MOU on migration and mobility partnership. 2. Agreement on exchange of young professionals. 3. MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. 4. Letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And 5. Implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
3: पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
6: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लिया और तजारत और सरमायाकारी, इख्तिरा और AI, फौजी तबादले और दिफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वजीर आजम के मौकफ, खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि यह जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
3: सदर पामेला भारत के 3 रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तकर्रुर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुत्तला किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जोड़ने के काबिल बनाता है। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबिकत पजीरी के मौजू पर 5वें कौटल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तिजारती साथी और

0: बड़ा दिफाई शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजे किया कि दुनिया कसीर कुतबियत की जानिब गामजन है, जिसका ढांचा और ज्योमेट्री माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले राज्यसभा पोलिंग के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी के मरकजी इंतखाबी कमेटी के जरिए इन नामों की मंजूरी दी गई है। हर 2 साल में एक बार होने वाले चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए, उत्तराखंड में 1 सीट के लिए और मगरी बंगाल से 1 सीट के जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इस माह की 16 तारीख को होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम 6 सीटों के लिए पोलिंग कल होगी, जबकि वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। आसाम के लिए एक तारीखी संग मील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र की आलमी तजारती रास्ते के तौर पर बाजियाबी हुई है। इस इकदाम से शिमाल मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त, माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तिजारती राहदारी फराहम होती है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में आज एक नए बाप का आगाज हुआ, जब मेथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पानगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इससे पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगीबील टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। तवक्को है कि मरकज आइंदा 10 वर्षों में आसाम और शुमाल मशरक के 50,000 नौजवानों को बहरी और जहाजरानी की सनात में रोजगार के मौके के लिए तरबियत दी जाएगी। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा वर्चुअल वसीले से जहाज को रवाना करने की तकरीब में शामिल हुए। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह वंदे भारत ट्रेनों की आमद ने इस विजन को हकीकी शक्ल दी है। पेश एक रिपोर्ट।
2: ऐसे में जब भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है, मोबिलिटी कौमी तरक्की के मरकजी सुतून की हैसियत से उभरी है। वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में भारतीय रेलवेज की तेज, महफूज, ज्यादा काबिल एतबार और मुसाफिर मरकूज रेल खिदमात पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफर की शुरुआत की। गुज़िश्ता साल नवंबर में वाराणसी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबन्ना में मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

0: पति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। भारत मुतहद अरब अमारात मुश्तरका फौजी मश्क माउंटेन गार्डियन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हुई। ये फौजी मश्क पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वजारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसा तादाद में नुमाइंदगी है और इस मश्क में कुल 92 फौजी अहलकार शिरकत कर रहे हैं। वजारत ने मजीद कहा कि मश्क के दौरान फौजी मुश्तरका मनसूबा साजी, फायरिंग प्रैक्टिस, निगरानी के ग्रेड्स कायम करने, ड्रोन कार्रवाइयों, जंगी हिकमत अमली की तरबियती मश्क, जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत, चट्टानों पर चढ़ना, रुकावटों को पार करना और मरबूत फील्ड मश्कें अंजाम दी जाएंगी। ये मश्क 5 से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुमासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने 4G के मामले में दुनिया की पैरवी की, 5G में शाना बशाना चला और अब 6G के मामले में वो दुनिया की क्यादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मुमासलात के आला दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों के खुसूसी नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गियोर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया, जबकि अमरीकी साइंसदान डाइसरोथ ने प्रोटीन को आसाबी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ़ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरीब बंगाल हुकूमत ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरीब बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहां जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम जागरूक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय, जो हमने पहले ही आपको बताया भी है, वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2331081 2371717117 और 2371710 6, और इसके अलावा 2331444 4। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क कर रहे हैं तो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा का सिलसिला। और मैं देख रहा हूं कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।
0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे।
2: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेड जो है, इसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे।
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी
2: जी, जी।
1: देखिए, आप अगर अपना एसी, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किस से बना है? वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एल्युमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है। तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं, हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं उसमें ये मेटल्स, जिस जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए।

नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही

0: रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, और आपके सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
1: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान जी। पासवान जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
2: इकट्ठे प्रणाम सर। हेलो,
1: जी
2: इकट्ठे प्रणाम सर।
1: जी नमस्कार नमस्कार, कहिए।
2: सर, ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर? सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग जैसे कि डिजिटल सामान और कुछ सुई इस प्रकार के जो दिए जाते हैं उससे बचने के लिए क्या करें सर?
1: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है।
0: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जब हम नया खरीदने जाते हैं तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है, लोहा कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत ये है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए और वो इकट्ठा हो के रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है या जो ब्लॉक में है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। सरकार की बहुत पॉलिसीज़ हैं पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय जी। अमित जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका।
3: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको भी और आपके जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा दो सवाल था। ये सवाल था कि जैसे कि जितना भी कचरा वो फैलता है तो इसको मतलब क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाए ताकि जन जन तक लिए पहुंच जाए, पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है, सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे तक व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में तो बहुत सारा वो एक समय 4 साल या 5 साल के बाद वो उपग्रह में हमेशा वो घूमते रहता है, तो वो भी कचरा है, तो बहुत सारा का तो कचरा आकाश में घूम रहा है, तो उसको निपटान के लिए कैसे क्या किया जाए क्या, ताकि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
1: जी तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है, और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की ही बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
0: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है, इस पे थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
1: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी कृपया कहिए क्या प्रश्न है आपका।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

0: नमस्ते।
1: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट मतलब ये जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं वो इस तरह के वेस्ट को लेने से ही इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है, इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वेस्ट को अलग अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं, सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो, ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि नदियां हमारी तमाम जो है वो पर्वतों से आती हैं, और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ, आपसे।
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है इसके तीन रूप में दिखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, ये सबको पता है कि ये अगर पानी में हमारे खेतों में हमारे ग्राउंड में जाएंगे इससे पोल्यूशन होता है, इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक फॉर्मल एक वैज्ञानिक प्लांट में होनी चाहिए ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, महिला भी इन्वॉल्व है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ना कि हमारी हेल्थ पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात यह है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हम इम्पोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल हित के लिए भी हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं। आपने पूछा कि सरकार की क्या पॉलिसी, मुझे खुशी है कि पिछले 4-5 साल में सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है जिसमें जितने रिसाइकलर हैं जो साइंटिफिक पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जितने मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारे ब्रांड हैं जो हमें मोबाइल बेचते हैं, एसी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उन सबको जोड़ा है। और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे तो उन्होंने बोला है भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए, और उस पर उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है जो सारा डेटा ड्रिवन है, और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर, वो ब्रांड अगर नहीं करेगा तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए, रिसाइकल हो जाए, कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने बोला अगर आपका कोटा है मान लीजिए 1 लाख टन, आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ज़रिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छे तरीके से वापस रिसाइकल हो और इससे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुँचें, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिलके जुड़ना है, जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे हम सरकार के साथ, लोकल एनजीओस के साथ मिलें और ये रिसाइकल इंडस्ट्री जो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, वहाँ तक पहुँचें, और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकलर बनिए, तो अपने एरिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी काम करेंगे।
0: बिल्कुल, आप भी अपने मित्रों में इस विषय में चर्चा कीजिए, और जहाँ तक कि हमारे एक पहले श्रोता ने भी कहा था कि क्या इसके बारे में कोई प्रचार अभियान है, तो हम आज जो ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है, जिससे लोगों में जागृति आए, और निसंदेह आपके जो ये सवाल हैं महत्वपूर्ण, वो भी जागृति लाने में सहायक हैं। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी। कहिए जोशी जी, क्या प्रश्न है?
3: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
3: नमस्ते एंकर साहब, आपको भी नमस्कार, और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार।
0: जी प्रणाम, नमस्कार।
3: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं दो तीन छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट लगाती है आपकी जानकारी में पंचायत में?
0: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब हमारे सिन्हा जी जो आम नागरिक हैं शहरों के, गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
2: हाँ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से, या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आप हैं, उनसे डायरेक्टली उठाएं, और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है, आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ दुकान में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है, तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है, और आपको मिलेंगे। और सरकार भी, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से, कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें, बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं, बट पूरा फोकस है, तो ये पहुंचेगा आप तक।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फोन के और खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं, तो एक ऐसा कॉर्नर जरूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
4: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ये कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्पोज किया जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे ही कुछ जो डिस्पोज कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसमें से जो

0: जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं ये भी सुना है कि डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू
1: जी। आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे एप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहाँ आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं खास तौर पर ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
2: देखिए ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें कैडियम है, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक हैं कुछ कम हैं। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है, तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा और हमारे अगर ये लैंड में, पानी में वापस जाएगा।
1: जी, तो अब ये जो अगला प्रश्न है हम ये ले रहे हैं, हमें मिला है व्हाट्सएप के जरिए, और मनोज पान से नागपुर महाराष्ट्र से पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि ई वेस्ट में किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डीकम्पोज होता है क्या, और होता है तो कैसे। जी
2: बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं, वो माँ बाप को बताते हैं और अगले 50-100-80 साल तो उनको जीना है।
1: जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का भी एक अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जी,
2: और देखिए जैसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल, तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा, ना हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा, तो ये धातु, ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके से सोचें, प्लास्टिक का जैसे हमें पता है कि अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे, कांच का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होगा।
1: जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ। जी राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न।
3: जी जी नमस्कार, मैं कोटाई शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीजें रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें प्रावधान सावधानी रखती है, और दूसरी बात ये मेरा, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बाग बगीचे में फर्क न पड़े, तो इस चीजों को जो है रिसाइकल जो है किस तरह से हमें करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को।
2: देखिए जैसे मैंने बोला, आप खुद तो रिसाइकल नहीं कर सकते, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका

0: फाइल हो, तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे आप डालिए। अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी। घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे।
1: जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की जरूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है, यानी मरम्मत है और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में?
0: बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला, रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें। पर इसमें इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं। हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है। हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है, पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल होके नया बने तो शायद सबके लिए अच्छा है। बट बिल्कुल रिपेयर करिए। ये तो हमारे देश में, हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम फेंकते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो रीयूज़ करते रहें। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको अपने जजमेंट से, अपने राय से सोचना है कि आप इसका क्या करें।
1: जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से 3 कदम आप सुझाना चाहेंगे जिनको उठाते हुए, अपनाते हुए आम नागरिक जो है इस समस्या के समाधान में बहुत ही सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो आपको इसको कचड़े में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप कचड़े में डालते हैं तो जो बाकी कचरा है वो भी रिसाइकल नहीं हो पाता, किसी को उसको अलग करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को और खाने को अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझें और वो इस पे आगे ठीक डिसीजन ले पाएं।
1: जी, तो दोस्तों, समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों, इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और

0: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की है। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रो डिप्सन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुश्री सुमिता दत्ता की आवाज में गजलें सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 10:30 में है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री सुनील कांत सक्सेना का राग जोग में सितार वादन। झपताल द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री सुनील कांत सक्सेना का राग जोग में सितार वादन। झपताल द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के

0: महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed

90 के दशक की ये फिल्म है। फिल्म में नवोदित कलाकार और उन कलाकारों के साथ साथ गीतों की अगर बात की जाए तो वो गीत सभी के दिलों पर राज करने वाले। ऐसा ही था ये गीत उदित नारायण की आवाज में जो आपने सुना फिल्म घर से निकलते ही का। और फिल्म की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी फिल्में होती थी जिसमें कि नवोदित कलाकार आते थे लेकिन वो फिल्में कई बार बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाती थी, उतनी चर्चित नहीं रहती थी, लेकिन उनके गीत सभी लोगों को पसंद आते थे। और कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें कलाकार भी बहुत पसंद आए लोगों को और साथ ही साथ वो फिल्म की कहानी, उसका संगीत, उसका डायरेक्शन, सब कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ ऐसी ही फिल्म है जिसका अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस का एक गीत सुनते हैं।

जी हाँ, 90 के दशक की एक और फिल्म जिसका बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपने कुमार सानू की आवाज में सुना है। और जब गीतों की बात आती है तो वाकई जो 90 का दशक है वो दशक ऐसा कहलाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो दिल को हमेशा छू जाते हैं। इसी तरह की अगर एक फिल्म की बात की जाए तो फिल्म है जाबाज, और फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में और साथ में सपना बस्ती, बहुत ही सुंदर सा ये गीत। और इस गीत के जरिए जो शब्द बयां किए गए हैं वो शायद आज भी लोगों को उतने ही उत्सुक और उतने ही प्यारे लगते हैं जितने वो जब लगते थे जब ये गीत आया था। तो जब बात हो रही है उसी गीत की तो चलिए हम भी सुन लेते हैं।

जी हाँ, न तुम जानो ना हम, लकी अली का बहुत ही चर्चित ये गीत रहा। 90 के दशक का ही ये गीत भी है, जिसमें के दो नवोदित कलाकार थे, जिसमें से एक ऋतिक रोशन, दूसरी अमीषा पटेल, और इनकी जोड़ी भी बहुत हिट रही। और गीतों की अगर बात की जाए तो गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए इस फिल्म के, और ये गीत खासकर लकी अली की आवाज़ में आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। ये तो बात रही इस गीत की, तो अब साझा करते हैं आपके साथ कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा गीत फिल्म दिल से हमने सुना। और बात करें अगर इस फिल्म की, तो इस फिल्म में हमें जोड़ी नजर आई आमिर खान और उनके साथ रही माधुरी दीक्षित। ये उस समय की एक बड़ी हॉट जोड़ी मानी जाती थी, लोगों को इनकी जोड़ी पसंद भी आई। शायद उसके बाद कोई और ये इस जोड़ी को लेकर कोई और फिल्म नहीं बन पाई।

लेकिन फिर भी ये जोड़ी आज तक काफी चर्चित रही है। अगर बात करें हम माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित जिस भी अभिनेता के साथ काम करती थी उसके साथ उनका कंपैटिबिलिटी, उनकी जो ट्यूनिंग थी वो इतनी शार्प, इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मानो लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ ऐसी ही फिल्म थी साजन, जिसमें दो हीरो होने के बावजूद भी हीरोइन की केमिस्ट्री ऐसी थी कि दोनों हीरो के साथ लगता था कि जैसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो चलिए, जब बात हो रही है फिल्म साजन की, तो इसका गीत सुन लेते हैं।

0: फिल्म साजन का ये गीत आपने सुना और आवाज़ थी अलका याग्निक की, और बहुत ही सुंदर सा ये गीत। और अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत कहीं संपन्न करने की अब मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमलान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण

निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अंकरा रीसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अगले 4 मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीत में एक पूरा युग संजोता है। आज सुरों का सफरनामा में हम याद कर रहे हैं ऐसे ही बहुआयामी और विलक्षण संगीतकार को, जिनका नाम है SN त्रिपाठी। एक ऐसा नाम जिसने शास्त्रीय संगीत की गंभीरता को लोक धुनों की सहायता से जोड़ा, जिसने पौराणिक कथाओं को सुर दिए, ऐतिहासिक किरदारों को आवाज दी और विरह, प्रेम, भक्ति तथा देशभक्ति हर भावना को अपनी धुनों में जगा दी। वे संगीतकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, लेखक थे और निर्देशक भी थे। आज की यह संगीत यात्रा हमें ले जाएगी वाराणसी की गलियों से लेकर मुंबई की दुनिया तक। तो आइए सुरों के इस सफर में दिल थाम कर शामिल हो जाइए और याद कीजिए SN त्रिपाठी को। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, एक बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो आइए सुनते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत गीत, आओ वन वन डोले हम। सती सावित्री फिल्म से यह शानदार रचना है, प्रीति सागर और महेंद्र कपूर साहब की आवाज है। सती सावित्री फिल्म 1981 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत सुलक्षणा चित्रा और SN त्रिपाठी के संगीत से सजा शानदार बेहतरीन खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, दोहराए देते हैं, आज मैं हूं आपके पास, आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। वही सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुर के सफरनामा की पहली बेहतरीन खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर गीत से शुरुआत की है, वाकई बहुत ही शानदार। या दोस्तों, एसएन त्रिपाठी, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार एसएन त्रिपाठी की। या दोस्तों, और ये एसएन त्रिपाठी का पूरा नाम हम बता देते हैं, पूरा नाम था श्रीनाथ त्रिपाठी। साथियों, उनका जन्म 14 मार्च 1913 को वाराणसी में हुआ था। उनका पारिवारिक वातावरण संस्कृत धर्म और भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें शास्त्रों और संगीत का संस्कार मिला। वाराणसी की सांस्कृतिक मिट्टी ने उनको व्यक्तित्व को गहराई दी। एक और संस्कृत और धार्मिक साहित्य का संसार, दूसरी ओर भारतीय शास्त्रीय संगीत की साधना, और यही दो धाराएं आगे चलकर उनके संगीत में दिखाई दी। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत भी अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बेहद खूबसूरत है। और जैसे जैसे हम जानकारियां बताते रहेंगे और साथ साथ आप सभी साथियों के लिए गीत भी सुनवाते रहेंगे। साथियों, आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल में और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल में सुन सकते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा, जिसमें आप सुन रहे हैं एसएन त्रिपाठी। जी हां, महान संगीतकार एसएन त्रिपाठी को सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है। साथियों, बहुत ही कम आप सभी साथियों ने एस एन त्रिपाठी का नाम सुना होगा, मैक्सिमम साथियों ने, लेकिन वाकई बहुत ही गजब की सोच, गजब की संगीत, गजब की एक्टिंग, या फिर गजब का गीत। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। साथियों बढ़ते हैं, उन्होंने इलाहाबाद से विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और बाद में लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। यहां से उनके जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी। संगीत केवल शौक नहीं था उनका, संगीत उनका जीवन बनने वाला था। या दोस्तों, मुंबई की ओर पहला कदम 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा अपने विकास के दौर में था। बोलती फिल्में आ चुकी थीं और फिल्म संगीत धीरे धीरे भारतीय जनजीवन का अभिन्न हिस्सा बन रहा था। इसी दौर में एस एन त्रिपाठी मुंबई पहुंचे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में संगीत विभाग से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और शुरुआती वर्षों में सहायक रहे, संगीतकार के रूप में काम किया और जवानी की हवा, ममता, अछूत कन्या और वचन जैसी फिल्मों में जुड़े रहे। यह दोस्तों, फिलहाल हम एक और गीत की ओर बढ़ रहे हैं और यह गीत बड़ा ही सुंदर है। आपसे हमको जिंगारो, एक फिल्म है जिंगारो जो 1963 प्रदर्शित फिल्म रही है, मोहम्मद और माफ कीजिएगा महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में शानदार रचना है। संगीत ऑफ कोर्स एस एन त्रिपाठी का। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

जी हाँ, हो गई हो गई हो गई। जी हाँ, आपसे हमको मोहब्बत हो गई। वाकई मोहब्बत एक अलग विधा है इस दुनिया की, है ना। खुली सड़क पर एक बड़ा ही सुंदर गीत आ रहा है और जिक्र चरणवा में लाग ले परनवा, एक अलग बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत है और ये गीत वाकई बहुत ही शानदार है। लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में कुछ जानकारियां बता देते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को आगे चलकर सैकड़ों गीतों की धुनों का सृजन करना था, उसने अपने करियर की शुरुआत पर्दे के पीछे एक सहायक के रूप में की। यही संघर्ष कलाकार को कलाकार बनाता है। बड़ी पहचान अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की साधना, इंतजार और छोटे छोटे अवसर छिपे होते हैं। गायक के रूप में भी पहचान एस एन त्रिपाठी केवल संगीतकार नहीं थे, उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल भी किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जीवन नैया में उन्होंने पर्दे पर दिखाई देते हुए एक गीत भी गाया था। यानी जिस कलाकार को हम आज मुख्यतः संगीतकार के रूप में याद कर रहे हैं, वह आरंभिक दौर में अभिनेता और गायक के रूप में भी सक्रिय थे। सुनते हैं एक और शानदार रचना, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम की आवाज में बेहतरीन रचना, फिल्म खुली सड़क पर।

जी हाँ दोस्तों, चमन चमन ये महंगा। जी हाँ, बहुत ही अलग तरीके की। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या फिर भोजपुरी अंदाज में शानदार बेहतरीन रचना। जी हाँ, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आपने ये सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत सुना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, बड़े ही प्यारे साथी, जी हाँ, संगीत बनने का या फिर उनके व्यक्तित्व की यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने समकालीन अनेक संगीतकारों से अलग करती है। स्वतंत्र संगीतकार बनने का सफर कुछ वर्षों तक सहायक के रूप में काम करने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से संगीत देने का अवसर मिला। चंदन उनके शुरुआती स्वतंत्र संगीत निर्देशन से जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में मानी जाती है। जी हां, चंदन फिल्म की बात कर रहे हैं। इसके बाद चूड़ियां, बनघट, रम्यानी, वीर कुणाल, पनिहारी और अन्य फिल्मों में उनका संगीत सुनाई दिया। यहीं से उनकी अपनी संगीत भाषा विकसित होने लगी। शास्त्रीय संगीत की पकड़, लोक धुनों की सहजता, धार्मिक संगीत का संस्कार और कहानी के अनुरूप वातावरण रचने की क्षमता, इन सब का अद्भुत मेल उनके संगीत में दिखाई देता है। तो साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है। ये गीत भी अपने आप में बहुत ही प्यारा है। गोरी गोरी सिन्हलवा सिन्हल दीप की सुंदरी, एक फिल्म का नाम है सुन्हल दीप की सुंदरी। लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर आवाज में लाजवाब रचना है। ये फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही और संगीत से सजाया है SN त्रिपाठी ने। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, एक से एक सुंदर बेहतरीन हर प्रकार के गीत, जी हाँ संगीत से सजाया है हर प्रकार के गीतों को। बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत, तड़कता भड़कता शानदार बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जैसे कि हम सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं आप सभी साथियों के लिए, और शायद बहुत ही कम साथी नहीं समझ पा रहे होंगे आखिरकार एस एन त्रिपाठी कौन है। जी हाँ दोस्तों, और वाकई साथियों, क्षमता उनके अंदर बहुत ज्यादा रही। इन सब का अद्भुत मेल उनके संगीत में दिखाई देता है। एस एन त्रिपाठी की संगीत शैली, अगर एस एन त्रिपाठी के संगीत की एक विशेषता चुननी हो तो वह होगी भारतीयता। जी हाँ दोस्तों, भारतीयता। उनकी धुनों में रागदारी का प्रभाव था, लेकिन वे धुनों के केवल शास्त्रीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखते थे। उनके संगीत में लोक संगीत की खुशबू भी मिलती थी, विशेषकर पौराणिक, ऐतिहासिक और कॉस्ट्यूम फिल्मों में उन्होंने शहनाई, लोक वाद्यों और भारतीय धुनों का सुंदर इस्तेमाल किया। उनका संगीत दृश्य को केवल सजाता नहीं था, बल्कि वह दृश्य का भाव बन जाता था। जहां विरह था वहां दर्द, जहां भक्ति थी वहां श्रद्धा, जहां प्रेम था वहां कोमलता, और जहां इतिहास था वहां शौर्य और गंभीरता। यह दोस्तों वाकई कितनी सारी विधाओं के साथ मल्टी टैलेंटेड एस एन त्रिपाठी संगीतकार। जी हाँ, वाकई बहुत ही शानदार। सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सुंदर, खूबसूरत, ये भी अपने आप में बहुत ही अनमोल, बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। एस एन त्रिपाठी के संगीत सफर का एक उल्लेखनीय पहलू देशभक्ति से भी जुड़ा है। फिल्म मंसोवर, माफ कीजिएगा, मंसरोवर 1946 प्रदर्शित फिल्म रही है कि एक गीत में जय हिंद का प्रयोग किया गया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उपलब्ध जो हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्हें फिल्मी गीत में जय हिंद नारे के शुरुआती प्रयोग से जोड़ते हैं। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। सोचिए, सिनेमा का पर्दा, संगीत की धुन और उसमें गूंजता हुआ देश का आत्मविश्वास। जी हाँ, जय हिंद, यह केवल शब्द नहीं थे, यह उस समय के भारत की धड़कन थी। जी हाँ दोस्तों, वाकई

जी हाँ दोस्तों, जानकारियाँ बहुत सारी हैं, गीत भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देता है और अभी केवल 8 मिनट बाकी हैं और थोड़ी जानकारी और बता देते हैं। पौराणिक फिल्मों से गहरा रिश्ता, एस एन त्रिपाठी का नाम पौराणिक और धार्मिक फिल्मों के संगीत के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। वे पुराणों और धार्मिक कथाओं से परिचित थे, यही कारण था कि जब उन्होंने पौराणिक फिल्मों के लिए काम किया तो उनके संगीत में केवल धुन नहीं कथा की आत्मा भी सुनाई देती थी। श्री राम भक्त हनुमान में उन्होंने हनुमान की भूमिका भी निभाई है और फिल्म लेखन तथा संगीत से जुड़े फिल्म की सफलता ने उनके बहुआयामी करियर को नई पहचान दी। इसके बाद वे कई पौराणिक और कॉस्ट्यूम फिल्मों में हिस्सा बने। हनुमान, पाताल, विजय, अलादीन और वंडरफुल लैम्प, अलीबाबा एंड 40 थीव्स यानी कि अलीबाबा और 40 चोर, हातिम ताई, लक्ष्मी नारायण, महाबली हनुमान, तमाम ऐसी रचनाएं हैं, उनमें योगदान दिया। अभिनेता एस एन त्रिपाठी, यहाँ उनकी कहानी दिलचस्प हो जाती है। संगीतकार के साथ साथ अभिनेता थे, विशेषकर हनुमान के किरदार में उन्होंने दर्शकों ने खूब पहचाना। उनकी अभिनय यात्रा में पौराणिक और फिल्मों का बड़ा हिस्सा रहा। साथियों, रानी रूपमती एक फिल्म थी, बड़ी ही सुंदर खूबसूरत। जी हाँ, 1950

50 के दशक में एस एन त्रिपाठी ने निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया और रानी रूपमती उनके निर्देशन करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। फिल्म के संगीत ने विशेष लोकप्रियता प्राप्त की और आज भी उनके संगीत एस एन त्रिपाठी की पहचान से जुड़े हुए हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत है। साथियों बस ये लास्ट गीत हम प्ले करेंगे क्योंकि समय हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है और क्या कहें हम, सच में हमें भी थोड़ा सा लगता है कि आखिरकार क्या किया जाए। थोड़ा सा समय अगर बढ़ जाता तो वाकई और भी ज़्यादा हो जाता खूबसूरत, है ना समा। तो साथियों एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है, आइए सुनते हैं ये बेहतरीन खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, सुरों का सफरनामा में हमने जिस संगीत साधक को याद किया, वह केवल संगीतकार नहीं था, वह भारतीय संस्कृति की अनेक धाराओं को सुर देने वाला एक बहु या आयामी कलाकार था। वाराणसी की मिट्टी में से निकला कलाकार मुंबई फिल्मी दुनिया तक पहुंचा, संघर्ष किया, सीखा, संगीत दिया, गाया, अभिनय किया और निर्देशन भी किया, माफ कीजिएगा। उनकी धुनों में कभी प्रेम की आहट थी तो कभी विरह की टीस, कभी भक्ति की रोशनी तो कभी इतिहास की पीड़ा। ऐसे त्रिपाठी शायद आज उतने चर्चित ना हो, लेकिन उनकी धुनें आज भी कहती हैं। जी हाँ, सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस इंतजार कहता करता है किसी एक संवेदनशील दिल का, जो उसे फिर से सुने और फिर महसूस करे, फिर कहे वाह क्या धुन थी। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का सुरों का सफरनामा में फिर मिलेंगे किसी और सुर साधक की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24x7। जी हाँ, चैनल सुनवा रहे हैं एक शानदार खूबसूरत आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ आज का सुरों का सफर नामा अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति, 1 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहरमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहरमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक

सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, काहे को गुमान करे गोरी। जी हाँ, KL सहगल की आवाज में शानदार रच।

ना। एक और बेहतरीन रचना आ रही है, ये रचना है जी हाँ बहुत ही प्यारी फिल्म किस्मत से, जो 1943 प्रदर्शित फिल्म रही है किस्मत। धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे आ, जी हाँ अरुण कुमार और अमीर बाई की आवाज में शानदार रचना, संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा।

0: कुमार जी, महाराज दिलजीत सिंह घोड़े पर सवार अकेले पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
1: शुभ अवसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना रिवाज है।

0: जहालों पे हंसते
1: पति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे अब्लाकुआ के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रिसर्च दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि 1 भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित

0: आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders agreed that close cooperation between India and Switzerland can bring immense benefits to the people of both countries. They expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The Election Commission of India has rejected the allegations of leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, that the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, has changed Form 6 of Special Intensive Revision illegally and unilaterally. The Commission clarified that the declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Supreme Court. In a social media post, the Commission also said that the order related to SIR in Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission on the 24th of June last year. Earlier, the Apex Court clarified that it has not approved any changes to Form 6 being used by the Election Commission during the SIR of electoral rolls. Union Minister for Communications Jyotiraditya Sindhya yesterday visited the India Mobile Congress 2026 venue.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामुलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामुलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामुलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामुलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अक्रा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयात ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील

0: In cricket, after the winning of the three-match ODI series with a scoreline of 2-1, the India men's cricket team will now face the West Indies in a five-match T20 international series. The first 20-over match between the two teams is scheduled to take place at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow today, and the next four matches will be played in Ranchi, Indore, Hyderabad and Bengaluru on October 9, 11, 14 and 17 respectively. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has asked states and union territories to conduct special drive against adulterated and unsafe food during the upcoming festive season. The FSSAI has written to commissioners of all the states and UTs and its regional directors regarding special festive drive to ensure food safety, quality and prevention of adulteration. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 आकाशवाणी के इस चैनल पर. आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गजल. गजल के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती. सबसे पहले आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल. कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कभी किसी बात को लेकर खफा होता है, नाराज होता है, तो हम उसे उसके करीब जाकर थोड़ा सुलझा दें, थोड़ा मना लें, तो शायद चीजें सुलझ जाएं. लेकिन अगर चीजें उलझ रहती हैं तो एक गजल बनता है जिसमें वो शब्द होते हैं जो हमारी दिल की आवाज़ होती है. और गज़लों के इस सिलसिले में जब दिल की आवाज़ को कलमों से कागज़ पर उकेर दिया जाता है तो जो तैयार होता है वो गज़ल के बोल होते हैं. उन्हीं बोलों को लेकर कई ऐसे खूबसूरत लिरिसिस्ट ने सुंदर सुंदर मोतियों जैसे शब्दों को कागज़ पर पिरो दिया. उन्हीं गज़लों को लेकर मैं पूजा भारती आज आपको सबसे पहले चंदन दास की आवाज़ में सुनाती हूँ ये गज़ल.

जब कहीं भी दिल ना लगे और ज़बाँ शांत हो, किसी को दिल लगातार याद कर रहा हो, इसे ही तो बेकरारी कहते हैं।

कभी कभार कितनी भी भीड़ में आप क्यों ना रहें, दिल हमेशा अकेला महसूस करता है। और ये भीड़ तब किसी काम का नहीं होता जब तन्हाइयों से जज्बात खेलता है।

वाकई में भरी दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल अकेला होता है।

एक ऐसी धुन, एक ऐसी लगन, एक ऐसा कशिश जो दिलों को दिलों से जोड़ता हो, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ता हो। और जब दिल में वो लगन हो तो मोहब्बत को कोई दूर नहीं कर सकता। ये तन्हाई कब कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता।

कभी कभार दिल के जज्बात कहते हैं कि ठहरो, रुको, करो या कहो। दिल के जज्बात हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। वक्त चाहे कितना भी रोक ले, लेकिन जीवन के साथ जज्बात भी चलते रहते हैं और सीने में कई ऐसे अरमां सुलगने लगते हैं।

जी हाँ, जब दिल की बात आती है तब दिल की आवाज को, जिसे हम सुनाना चाहते हैं, वो उसे अनसुनी कर देता है और यूं ही गुजरते हुए चला जाता है। तब दिल कहता है, ये दिल के दर्द देने वाले, तू मुसाफिर है तो क्या, यहाँ घर तेरा भी है।

कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर आया और चला गया, लेकिन वो वक्त वहीं थम गया, बहते गए उस वक्त के रेत में, लेकिन बढ़ते हुए वक्त ने मुझे वहीं रोक दिया और मुझे फिर वही याद आया, तेरा वही चेहरा, तेरी वही बातें, मोहब्बत करने से हुई थी जो मुलाकातें, दिल फिर वही तमन्ना कर रहा है।

अगर गजलों का सिलसिला चलता रहे तो लगता है यूं ही चलता रहे, क्योंकि कहते हैं ना जीवन में मोहब्बत तन्हाई और रुसवाई के साथ साथ एक अलग सा एहसास यूं ही चलता रहता है, और कभी कभी यही भाने लग जाता है। ठीक उसी तरह गजलों का सिलसिला इन्हीं के साथ चलता रहता है, लेकिन वक्त कह रहा है गजल का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो जाए। तो मुझे पूजा भारती को दीजिए।

0: माधे। इस कार्यक्रम से नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। अगले कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुनेंगे ठीक 4 बजे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आप जुड़े हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से। आइए श्रोताओं, आगे चलते हैं। 4:20 होने को है, अब सुनिए कार्यक्रम नाद ब्रह्मा, कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना ताल वाद्य कचरी येला। वेंकटेश्वर राव के साथ आपने सुना तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हो चुके हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। ये श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह के 5:10 का वक्त रहेगा, आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे और सीखेंगे अश्वत्थासन और तितली क्रिया। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन कलाकार नदीम अहमद खान। सुबह के 6:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी भाषा पर महान साहित्यकारों के विचार। 6:45 का वक्त रहेगा कार्यक्रम रामचरितमानस, इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 70। 7:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भजन। 7:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। सुबह के 8:45 का वक्त रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम स्वर गंगा, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक और नमर का गायन, राग ललित आप सुनेंगे।

सुबह के 9:15 का वक्त रहेगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:10 का वक्त रहेगा फिल्म संगीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुर मंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार सलीम अहमद। आप सुनेंगे राग गुर्जरी। ये आज प्रसारित होने वाले दोपहर के कार्यक्रमों की रूपरेखा थी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: पांच बजने को है कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मा 2 पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चालक दल में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। वोटों की गिनती शुक्रवार को की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को

प्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आपने सुना अश्वत्थासन और तितली क्रिया। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर, माफ कीजिएगा। श्रोताओं, वक्त हो चला है देशभक्ति गीत का, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 5:30 होने को है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला कार्यक्रम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार नदीम अहमद खान। आप सुनेंगे राग अलहया विलावल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी।